FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 मई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अभी सुबह के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5,000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: दिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं देश वंदना से, समूह स्वर में।

समूह स्वर में देश वंदना भी आपने सुनी। आइए सुनते हैं गायक मुकेश की आवाज में गाया श्री राम भजन।

पंडित कुमार गंधर्व की आवाज में गाया कबीर भजन अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए प्रस्तुत है सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

पंडित हरिओम शरण की आवाज़ में गाया ये गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे निर्दोष। इसी के साथ ही कार्यक्रम आराधना का ये अंक यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फ़ोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा सूकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बीमारियों में PPR बीमारी के लक्षण, उपचार और रोकथाम के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं

0: जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665992। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव में आज का विषय है बैगन की उन्नत खेती। वाचक हैं त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। खेती के बात में आज बात करबो बैगन की खेती। भटक के उन्नत किस्म है पूसा, पर्पल, लांग, पंत ऋतुराज, पंत सम्राट, पंजाब सदाबहार, KS 331, IVVL 09, ARBS 543, ARBS 543, छत्तीसगढ़ बैगन सफ़ेद 1PB 70। भट्टा की खेती पर भुइया के बात करी तो भुइया ला बढ़िया 4 ले 5 पैत नांगर मा, ट्रैक्टर मा गहरा जुताई करके 2 ले 3 पैत पाटा चला के भुइया ला समतल बना लेना चाहिए। भाटा के खेती पर बलुई दोमट कार्बनिक जीवाश्म वाले माटी जैन भुइया में पानी के बढ़िया निथार रहे बढ़िया माने जाते। जुताई के समय प्रयास करना है कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बढ़िया ढंग ले सड़े हुए गोबर के खातु प्रति हेक्टेयर 100 कुंटल जुताई के समय मिला देवे, जेखर ले फसल बहुत अच्छा हो है, उत्पादन में वृद्धि देखे पर मिली। भट्टा के खेती पर बलुई दोमट कार्बनिक जीवाश्म युक्त जो माटी है बढ़िया माने जाते। भुइया के चुनाव करत समय चेत करना है कि खेत में जल निथार के बढ़िया व्यवस्था रहे, पानी के जमाव झन हो पाए। तो उन्नत किस्म के जो बीजा है ओखर प्रति हेक्टेयर 500 और संकर किस्म के है तो 200। नर्सरी में बीजा ला लगाए के पहली बीजोपचार जरूर करना है। एकर बर वीट वैक्स पावर या फिर 22 टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचार करना चाहिए। पौधा ला लगावत खानी चेत रखना है कि पंक्ति ले पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधा ले पौधा की दूरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करी खातु माटी के तो भट्टा के फसल में उन्नत किस्म के जो भट्टा है ओमा नत्रजन की मात्रा 120, स्फुर 80 और पोटास 60 किलोग्राम। उन्हें संकर किस्म के कहीं भट्टा के पौधा है तो नत्रजन 200 किलो, स्फुर 150 किलो और पोटास 120 किलो लगते। नत्रजन के आधा मात्रा स्फुर और पोटास के पूरा मात्रा, नत्रजन के आधा मात्रा और स्फुर और पोटास के पूरा मात्रा रोपाई के समय में दे देना है। बाचे नत्रजन के मात्रा रोपाई के 30 ले 40 दिन और 60 दिन के बाद दे देना चाहिए। भट्टा के फसल रोपाई के बाद शुरू में 30 ले 45 दिन तक बढ़वार के दृष्टि ले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते। ये बीच में खरपतवार मन घलो बाढ़ते तो खरपतवार ला ज़्यादा बाढ़े नहीं देना है। बीच बीच में निंदाई गुड़ाई जरूर करत रहना है। फसल छोटी अवस्था में रहे तो पानी देहे के बाद में जैसे बतर आवे गुड़ाई करना बहुत जरूरी होते। एकर बार शुरू के 45 ले 65 दिन में गुड़ाई जरूर करें। पल्लो पासी के जहाँ तक बात करी भट्टा के फसल में 7 ले 9 पैत सिंचाई की आवश्यकता पड़ते। राम राम, जय जोहार।
0: कार्यक्रम खेती की बात अभी आप सुन रहे थे। सामयिक सुझावों में आज का विषय था बैगन की उन्नत खेती। वाचक थे त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का। आवाज है अनुराधा मराठे और श्रीकांत पारगांवकर की।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए। पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से करते हैं। वृद्धावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

0: आवाजें थी अनुराधा मराठे और श्रीकांत पारगांवकर की। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय है परोपकार। आलेख है डॉक्टर कपिल नारायण श्रीवास्तव का।
1: निस्वार्थ होकर दूसरों का उपकार करना, पर आज हम परोपकार की बात और कार्य तभी करना पसंद करते हैं जब उससे हमें भी कुछ मिले, चाहे केवल प्रशंसा ही क्यों न हो। अभी पिछले वर्ष एक सज्जन से चिकित्सालय भवन के निर्माण के संबंध में कुछ बात हुई। उन्होंने कहा कि पूरा भवन मैं बनवा कर दूंगा, साथ ही 10 मरीजों का खर्च भी मैं आजीवन वहन करूंगा। लेकिन इतना कहकर वे चुप हो गए। उनकी बात से मैं अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। उनके चुप होने पर मैंने ये समझा कि संभवतः वे गुप्त दान करना चाहते हैं। फिर भी मैंने पूछ ही लिया कि लेकिन क्या आपकी कोई शर्त है? वे बोले, शर्त नहीं है, मैं केवल ये चाहता हूं कि चिकित्सालय मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम पर हो, उनकी स्मृति कायम रहे, ऐसा मेरा उद्देश्य है। मैंने पूछा, यदि यह संभव न हुआ तो क्या आप ये परोपकार नहीं करेंगे? वे बोले, देखिए, उस स्थिति में आप मुझसे भी 1,000-2,000 जो दूसरे दे रहे हैं ले लीजिए। जब मेरी इतनी बात आप नहीं रखेंगे तब भला मैं ही क्यों सब कुछ करूं? हमें तो चिकित्सालय चाहिए था, नाम किसी का हो, हमने बात मान ली। वे परोपकार ही करना चाहते थे किंतु निस्वार्थ नहीं। आज की आम धारणा है, लोग समाज के साथ वहीं तक चलना चाहते हैं जहां तक उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है। जो समाज कभी मनुष्य के त्याग, बलिदान, सहयोग और सहनशीलता का प्रतिफल था, वो आज हमारे स्वार्थ साधन की सीढ़ी मात्र बनकर रह गया है। जटिलताओं से भरे हुए इस जीवन में सामाजिक गुणों का महत्व कम होता जा रहा है। हम स्वतः ही दूसरों के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं। उस दिन हम 3-4 मित्र छत पर बैठे वर्तमान युग की सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे थे। एक मित्र संतोष का यह विचार था कि हम चारों मित्र भी केवल अपने अपने स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं। शेष हम तीन कहते थे कि तुम मित्रता को क्यों नहीं मानते, हम घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे के लिए त्याग भी कर सकते हैं। संतोष बोल उठा, देखो भाई, मैं तुम पर अविश्वास नहीं करता, नहीं तुम्हारी सद्भावनाओं की उपेक्षा करना चाहता, किंतु कटु सत्य ये है कि स्वार्थ में टकराव आते ही घर, परिवार, धंधा या अन्य कोई बहाना बनाकर हमें अलग होना ही होगा। संतोष ने कहा, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। उसने जेब से 2 रुपए के चिल्लर निकाले, फिर बच्चों को पुकार कर उसने कहा, बच्चों, तुम बहुत मिलजुल कर बढ़िया खेल रहे हो, मैं खुश होकर तुम्हें इनाम दे रहा हूं, मैं ऊपर से पैसे फेंक रहा हूं, तुम लोग उठा लेना, लड़ना मत, लड़ना अच्छी बात नहीं है। सभी बच्चे सावधान हो गए। संतोष का पैसा फेंकना था कि सब बच्चे झपट पड़े, किसी को मिला किसी को नहीं। एक बड़े लड़के ने धक्का देकर या छीन कर अधिकांश पैसे ले लिए। उनमें आपस में तूतू मैमें शुरू हो गई और उसके बाद मारपीट। अंत में अलग अलग टुकड़ों में बंटकर वहां से चले गए। संतोष ने कहा, देख ये है वास्तविकता। मैंने कहा, ये तो तुमने उनमें फूट डालकर झगड़ा कराया है। वो बोला, समझने की कोशिश करो, यदि इनका स्वार्थ प्रबल न होता तो ये खेलते रहते, पैसे पर ध्यान देते। यही बात हम पर भी लागू है, आज समाज में भी यही हो रहा है। लोग आपस में तभी तक जुड़े हुए हैं जब तक स्वार्थ नहीं टकराता। जीवन को जटिलताओं ने हमारे स्वार्थ को पूर्णतः जागृत कर रखा है। हम तुम सब इन बच्चों के समान स्वार्थ पूर्ति का अवसर पाते ही अपने को रोक नहीं पाते, और समाज के विशिष्ट लोग मेरे समान टुकड़ा फेंक कर हमें लड़ाते और अपना स्वार्थ साधकर प्रसन्न होते हैं। हम यदि अपने स्वार्थ को संयमित करने की सामर्थ्य जुटा लें तभी समाज को दिशा दे पाएंगे, अन्यथा इन तथाकथित बड़ों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे।
0: कार्यक्रम चिंतन अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में आज का विषय था परोपकार। आलेख था डॉक्टर कपिल नारायण श्रीवास्तव का। ये आकाशवाणी का बिलासपुर

केंद्र है एफएम बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी अब आपसे साझा कर लेते हैं कार्यक्रम विवरण में। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह आप सुनेंगे 7:05 पर और फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सदाबहार नगमे

लीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह आप सुनेंगे 7:05 पर, और फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आनंद लेंगे आप 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप आनंद लेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया का, और 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। दोनों ही कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। नए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नए तराने का आनंद लेंगे आप सुबह 10:30 पर, और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनने का समय होगा सुबह 11 बजे। 9:55 और 11:55 पर आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:05 पर सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम साहित्य की, जिसमें आप सुनेंगे परिचर्चा, जिसका विषय होगा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को सहेजती, संवारती और प्रसारित करती आकाशवाणी। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। महिला सभा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:35 पर, जिसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा घरेलू कामकाज के बीच महिलाओं की सेल्फ केयर, और क्रम परिवाद में परिसंवाद में आप सुनेंगे डिजिटल दुनिया के छिपे खतरे। इस विषय पर कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने आप सुनेंगे 6:20 पर, और 7 बजे भी शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोठ का विषय होगा धान फसल भर बीजहा के चुनाव। 7:30 से 8 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आप सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में। आप इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आज सुनेंगे, जिसमें आप ग्राम तेलसरा विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर के कृषकों के मध्य ध्वन्यांकन किया गया कार्यक्रम सुनेंगे। संपादन और रिकॉर्डिंग होगी अभिनव गौराहा की, संयोजन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

आगम कुमार और तुलसी कुमार निगम के गाए गैर फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे आप कार्यक्रम सुगम संगीत में रात्रि 8 बजे। 8:15 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा का। रात्रि 9:15 पर हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। आज रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव अष्टपञ्चाशत् विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम् अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटॉक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नागर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्यरूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कण्ठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमानकर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्साविभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता। विभागेन आगामि द्वित्रिदिनेषु हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्णतरंगस्य पूर्वसूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखण्ड, उत्तराखण्ड राज्येषु अपि भवितुं सम्भाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में

0: ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: संस्कृत और हिंदी में समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: सुबह की नई किरण के साथ आप सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी शांतनु कपूर, और अगले 25 मिनट हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषयों की जो रोज नहीं सुनाई देते, लेकिन सुनने के बाद दिन भर दिमाग में चमकते रहेंगे।

आज की इस खास सुबह में हम जानेंगे एक ऐसे कवि के बारे में जिसने कविता को विद्रोह बना दिया। हम बात करेंगे काजी नजरुल इस्लाम की, लेकिन बस वही नहीं, आज के कार्यक्रम में होंगे साइलेंट टेक्नोलॉजी, वे मशीनें जो आवाज़ नहीं करती लेकिन दुनिया बदल रही हैं, दुनिया की सबसे अजीब लाइब्रेरी के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे मानव दिमाग का एक रहस्य, और आखिर में एक छोटी सी ऐसी कहानी जो आपको सुबह को भीतर तक रोशन कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं बगावत की आवाज़, काजी नजरुल इस्लाम। श्रोताओं, अगर कोई आपसे पूछे कि कविता क्या होती है तो शायद आप कहेंगे भावनाएं, प्रेम, प्रकृति या दर्द। लेकिन एक कवि ऐसा भी था जिसने कविता को हथियार बना दिया। नाम था काजी नजरुल इस्लाम। उन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था क्योंकि उनकी कविताएं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग बनकर बरसती थीं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर ऐसी रचनाएं लिखीं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। उनकी एक मशहूर पंक्ति थी, मैं विद्रोही, मैं सिर उठाकर दुनिया के हर अन्याय को चुनौती देता हूँ। काजी नजरुल इस्लाम सेना में भी रहे, गीतकार भी बने, पत्रकार भी बने और उन्होंने करीब 4000 गीत लिखे। आज बांग्लादेश में उन्हें राष्ट्रीय कवि माना जाता है। लेकिन एक दुखद मोड़ भी आया। जिस इंसान की आवाज़ करोड़ों के लिए प्रेरणा थी, वही इंसान एक दिन मौन हो गया। लेकिन शब्द कभी मौन नहीं होते। आज भी बंगाल की गलियों में, आंदोलनों में, साहित्यिक मंचों पर नजरुल की आवाज़ गूंजती है।

श्रोताओं, किताबें आमतौर पर लकड़ी की अलमारी में रखी जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी लाइब्रेरी के बारे में सुना है जहां किताबों को बर्फ के अंदर रखा जाता है? जी हाँ, फ्यूचर लाइब्रेरी के नाम से एक अनोखी परियोजना नॉर्वे में चल रही है, जहां हर साल एक लेखक अपनी नई किताब जमा करता है, लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये किताबें 100 साल बाद प्रकाशित होंगी, यानी आज जो लेखक लिख रहा है उसे पढ़ेंगे भविष्य के लोग। कल्पना कीजिए कितना विश्वास चाहिए भविष्य पर कि आप अपने शब्द उन लोगों के लिए लिख रहे हैं, उनके लिए संग्रहित कर रहे हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए। और सबसे मज़ेदार बात, इन किताबों के लिए पेड़ भी अभी से लगाए जा रहे हैं, ताकि 100 साल बाद उन्हीं पेड़ों से कागज बनाकर किताबें छापी जाएं। कितना अद्भुत विचार है ना? अब एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई गाना अचानक दिमाग में अटक जाता है? बार बार वही लाइन, वही धुन। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं ईयर वर्म। और हैरानी की बात है कि हमारा दिमाग अधूरी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करता रहता है, यानी अगर कोई धुन अधूरी बीच में अगर छूट जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश करता रहता है, यानी अगर कोई धुन बीच में रुक जाए तो दिमाग उसे भीतर ही भीतर पूरा करने लगता है। इसलिए कई विज्ञापन कंपनियां छोटे और अधूरे संगीत का प्रयोग करती हैं ताकि वह हमारे दिमाग में फंसा रहे, यानी कई बार जो चीज़ें आपको याद रहती हैं वो आपकी पसंद नहीं बल्कि आपके दिमाग की आदत भी हो सकती है। कमाल है ना? अब आइए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल AWARDS यानी awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम

0: हमारे दिमाग में बड़े बड़े रोबोट आते हैं, लेकिन दुनिया बदलने वाली कई मशीनें ऐसी हैं जो चुपचाप काम कर रही हैं, जैसे स्मार्ट ग्लास, ऐसे शीशे जो सूरज की रोशनी देखकर खुद तय करते हैं कि अंधेरा उनसे होकर जाना चाहिए और कितना अंधेरा उनसे होकर जाना चाहिए। अब एयरपोर्ट, अस्पताल और कुछ आधुनिक घरों में ये तकनीक इस्तेमाल हो रही है, और एक नई तकनीक और आ रही है जिसका नाम है साइलेंट ड्रोन। ये ड्रोन इतने शांत होते हैं कि ऊपर उड़ते हुए भी आवाज़ नहीं करते। इनका उपयोग भविष्य में अपराध नियंत्रण और इनकी देखरेख के लिए, जंगलों की निगरानी करने के लिए, देश विरोधी तत्वों को नियंत्रित करने और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी उपयोग में लिया जाएगा। यानी आने वाले समय में तकनीक कम दिखेगी, लेकिन ज़्यादा असर हमें देखने को मिल सकता है। यातायात नियमों और संदेशों के लिए आइए सुनते हैं आज की यातायात पुलिस बिलासपुर की क्या है अपडेट्स।
1: नमस्कार। दैनिक रेडियो कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे, आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सभी सड़कों के साथ ही शहर से बाहर भी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग सहित सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहन दौड़ रहे हैं। जिले का शेष भाग से इन सड़कों के माध्यम से यातायात संपर्क बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, आज के परिवेश में जब सभी सड़कों में विभिन्न प्रकार के वाहनों की कतार लगी हो, ऐसे में सुरक्षित चल पाना एक चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि हमें यातायात के नियमों की जानकारी हो और इस जानकारी के प्रति हम सभी की वफादारी हो। दोस्तों, हमारी नई पीढ़ी अर्थात हमारे बच्चे, इन्हें यातायात नियमों की जानकारी देना या इन्हें इन नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना हम सबका दायित्व है। शासन स्तर पर इन्हें इस दिशा में तैयार करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, किंतु परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है। बच्चा पहले सब कुछ अपने माता-पिता से ही सीखता है। कहने का आशय यही है मित्रों कि आप हमेशा अपने बच्चों के सामने वही करें जिसका बच्चा भी अनुसरण करे, अनुकरण करे। जैसे अधिकांश घरों में लोग दो पहिया वाहन से ही किसी न किसी कार्य से आना जाना करते हैं, अतः घर से दो पहिया वाहन की चाबी उठाने से पहले हेलमेट उठाएं और प्रयास करें इस हेलमेट को अपने बच्चे से ही मंगवाएं। परिवार के सदस्यों या मित्र, दो पहिया में तीन सवारी कभी न चलें। आप कार में हो या दो पहिया में, मोबाइल की घंटी बजते ही वाहन खड़ा करें और बातें करें, ना कि वाहन चलाते हुए। इसे आपके साथ वाहन में आपका बच्चा भी देख रहा है। रेड सिग्नल के दौरान अंतिम सेकंड तक इंतजार करें और रॉन्ग साइड जल्दी के चक्कर में कभी न चलें, यह सोचकर कि सब चलता है, क्योंकि यह भी आपका बच्चा देख रहा है। अपने वाहन की गति हमेशा सीमित रखें, आपका यह प्रदर्शन बाल मन में अमिट छाप होगा। तब होगी आपकी और नई पीढ़ी की हर यात्रा शुभ और सुरक्षित।
0: श्रोताओं, आइए अब दिमाग की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलचस्प बात को जानते हैं। जापान में एक शब्द है इकिगाई, जिसका मतलब होता है जीने की राह। वहां लोग मानते हैं कि हर इंसान के जीवन में कोई एक ऐसा काम होता है जिस

के लिए वो बना है, और जिन लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है वे ज़्यादा खुश रहते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। यही राज है जापानियों को, जो अपना जीवन उद्देश्य पता चल जाता है उसकी वजह से वे खुश भी रहते हैं और उनकी उम्र भी आम देशों के मुकाबले जो लोग हैं उनसे ज़्यादा उनकी उम्र होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उनके अनुसार ये है कि इकिगाई हमेशा बड़ा सपना नहीं होता। किसी के लिए सुबह पौधों को पानी देना इकिगाई हो सकता है, किसी के लिए लोगों को हंसाना और किसी के लिए रोज़ एक अच्छा गीत सुनना भी इकिगाई हो सकता है। तो शायद जिंदगी का अर्थ बहुत बड़ा नहीं, बहुत सच्चा होना चाहिए। आइए अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति रोज समुद्र किनारे जाता था, सुबह रोज नियमित। वहाँ हजारों मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ किनारे पर फंस जाती थी। वो बूढ़ा उन्हें उठाकर वापस पानी में डाल देता। एक दिन एक युवक ने हंसी मजाक में कहा, इतनी सारी मछलियां हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बूढ़े व्यक्ति ने एक मछली उठाई, पानी में डाली और मुस्कुरा कर बोला, इस एक के लिए तो फर्क पड़ गया। कई बार जिंदगी में बड़े बदलाव नहीं, छोटे अच्छे काम दुनिया बदलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस अनोखी सुबह में हमने जाना विद्रोह की कविता, भविष्य की लाइब्रेरी, दिमाग का रहस्य और जिंदगी का इकिगाई। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमें पत्रों के माध्यम से अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों, नई कहानियों और नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए अपने दिन को सिर्फ व्यस्त नहीं, दिलचस्प बनाइए। मैं आपका रेडियो साथी शांतनु कपूर लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।

0: आज सुबह
1: श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए भी विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा शुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बकरियों में PPR बीमारी के लक्षण, उपचार और रोकथाम के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665 92। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का STD कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 28 मई 2026 और

31 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। एक और सूचना है श्रोताओं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल यानी awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म अर्थ से। जगजीत सिंह की आवाज में कैफी आजमी गीतकार हैं, संगीतकार हैं जगजीत सिंह।

फिल्म अर्थ का गीत अभी आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म सदमा से, यसुदास की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं इलिया राजा।

आइए अब सुनते हैं फिल्म मासूम का गीत। भूपेंद्र और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

किशोर कुमार का गाया फिल्म शराबी का गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे प्रकाश मेहरा, संगीतकार थे बप्पी लहरी। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म सागर से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म उमराव जान से आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं शहरयार, संगीतकार हैं खय्याम।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म उमराव जान का गीत अभी आपने सुना। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अंक यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है,

0: सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम

0: ग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षा

0: बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई टू में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में

0: लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनिषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening.

0: मोर भैया के आज के ये अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू को तिले। श्रोता साथी हो, आज के हमर क्रम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। ये क्रम में हमन ऐसे साहित्यकार मल्ला आमंत्रित करथन और उनका विचार जानने के प्रयास करथन कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला बकराए में और हमर जो नई पीढ़ी है एमन तक बात पहुंचाए में कितना एमन योगदान दीन है, एकर बारे में चर्चा करबो। ऐसे ही एक वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी आज आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप ग्राम भोड़िया, जिला राजनांदगांव के रहे वाला, आपको स्वागत करत हैं आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि ये क्रम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार, साहित्यिक योगदान के बारे में हमन जाने के प्रयास करबो आपसे।
1: जी
0: एकर पहली एक छोटा सा परिचय आपके माध्यम से
1: जी
0: हमन श्रोता मल्ला देना चाहत
1: हमर जन्म राजनांदगांव से 7 किलोमीटर दूरिया ग्राम भोड़िया जोन अर्जुंदा मार्ग में है वहाँ हो इस। मोर पिताजी श्री अमरदास साहू, मोर माता श्रीमती ग्वालिन बाई साहू, मोर बड़े पिताजी श्री उभुदास साहू और बड़ी माता जी श्रीमती राजकुमार बाई, वही मन मोला पालिन है। और शिक्षा के बाद जहाँ तक होते तो हमारे गांव में स्कूल नहीं रिसे, प्राइमरी स्कूल पढ़े बर हरदी गेन। अब वो समय माड़ी माड़ी चिखला होए, बरसात के दिन में पानी भरे रहा सड़क में, ओला पार करके जान। मिडिल स्कूल पढ़े बर सिंघोला गेन तो खेत खार मतलब नहाक के जान,
0: जी
1: बरसात में हो चाहे ठंड में हो।
0: हम
1: तो इस तरीके से और 9वीं 10वीं 11वीं नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में पढ़े, कॉलेज के पढ़ाई दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में। और इस तरीके से विज्ञान विषय में हम स्नातक हुए। बाद में प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में हम हिंदी में स्नातकोत्तर करें
0: जी
1: और प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में भी हमारे प्रवीण सूची में शायद चौथा स्थान रही।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक समय रही से एक चलन में रही से कि सेकेंड गुड सेकेंड और फर्स्ट डिवीजन, जब कोई गुड सेकेंड भी आ जाए मतलब 50% ऊपर आ जाए तो लगे कि ये लड़का बहुत होशियार है।
1: बहुत बहुत
0: हाँ, आप तो प्राविड़ सूची में आते रहा तो समय तो देखनी हो जाती रही सोई कि कुबेर सिंह जी कैसे हैं, दिखे में कैसे हैं, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ गए हैं। तो घर परिवार के कैसा माहौल मिले आपने पढ़ाई लिखाई में?
1: नहीं, हमारे परिवार में पूरा पूरा हमला पढ़ाए के कोशिश करें। और ये बात रही कि विज्ञान विषय लेके बायोलॉजी लेके आप लोग डॉक्टर बनना है,
0: अच्छा
1: लेकिन हम डॉक्टर नहीं बन
0: हाँ
1: पाए। एक बात और बताना चाहूँ, मैं अपन साहित्य में मोर नाम खाली कुबेर भर लिखतूँ, एक रो पीछे राज है। हमला बचपन में हमार नाम कुबेरे रही से, हमारे दाई दादा मन सब कुबेरे कहा है, संगे सहुरिया मन भी उसने कहा है। और मोर 8वीं तक के अंक सूची में केवल कुबेर लिखा है। ये जो कुबेर सिंह साहू है, जब मैं 9वीं पढ़े हो तो हमारे जो क्लास टीचर रही से वो बोली कि ये अकेला नाम अच्छा नहीं लगता है जी, इसमें ये जोड़ देते हैं। अब वो सब हम कुछ नहीं कहें, जोड़ दो सर। इस तरीके से हम कुबेर सिंह साहू बन गए।
0: अच्छा, आप शिक्षा विभाग से जुड़ गया
1: हाँ जी,
0: तो कैसे जुड़ा हो इस आपके शिक्षा विभाग से?
1: हमारे पिताजी मन के बंटवारा हो, एक बाद में स्थिति डावाडोल हो गए, वही हमारे पढ़ाई भी छूट गए। तो अब रोजगार के सख्त आवश्यकता रही से हमारे बिहाव भी कर दिन। यही समय रोजगार कार्यालय से शिक्षक भर्ती के लिए आ गए तो हमारे सिलेक्शन हो गए, चल दे।
0: आप BSc करा,
1: हाँ जी,
0: उसके बाद में आप हिंदी साहित्य में
1: एमए
0: स्नातकोत्तर,
1: है जी।
0: है ना, MA की डिग्री आप लोग मिली से। एकर कुछ राज है हिंदी से MA करना है फिर ऐसे लेखन में आगे बढ़ना है, कैसे आपके यात्रा शुरू हुई साहित्यिक
1: नहीं सर, हम
0: यात्रा?
1: जब हाई स्कूल की पढ़ाई करें, हमारे समय में 11वीं मैट्रिक तक हुए, वो 10+2 नहीं रही
0: जी
1: से।
0: जी जी
1: तो उस समय हमार जयशंकर प्रसाद ल पढ़न, मैथिली शरण गुप्त ल पढ़न और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार मन ल पढ़न। तो हमार मन में ये बात आए कि शायद हमू इसने कहीं लिख पाते हैं, हम खबरों ना हो जाती, ऐसे मन में बात
0: जी
1: रहा है। तो
0: हाँ।
1: जब BSc के बाद हमारे पढ़ाई छूट गए तो अब स्कूल में गए, तो स्कूल में भी बहुत सारा किताब लाइब्रेरी में मिली, उनमें रचना साहित्यकार मन के भी किताब रही, चाहे वो दोस्तोवेस्की को हो, चाहे वो टॉलस्टॉय के हो, और चेखव और ये जो मैगजीन गोरकी वगैरह किताब बहुत सारा हम ही पढ़े हैं। भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत लेखक मन की किताब भी पढ़े हैं। तो हमारे मन में है कि हमला साहित्य में ही

0: इस नात को तर्क लेना चाहिए।
1: अच्छा, एक प्रेरणा के काम करी सो लाइब्रेरी है
0: जी,
1: आपला
0: जी,
1: है ना, वहाँ बहुत सारा किताब पढ़े पर मिली, फिर आप लेखन शुरू करा।
0: हाँ लेखन तो खैर वो हम 11वीं पढ़ाते रहें तभी थोड़ा बहुत लिखत रहे, लेकिन मुख्य धारा में हम 1992 के बाद ही हैं।
1: अच्छा,
0: जब थोड़ा देर से हम स्नातकोत्तर करें, ट्राइबल में हो एक बात एक के कारण से हमला होती कि अवसर नहीं मिले। वो समय मोटर गाड़ी का है ना हमला, तो मानपुर भी जाए पर मोटर नहीं मिले, वहां से साइकिल से हम लोग कभी 40 किलोमीटर चले पड़े, कभी 25 किलोमीटर पर, तब हम अपन पोस्टिंग वाले स्थान में जा पाए। तो ऐसा विषम स्थिति में पढ़ाई है तो संभव नहीं। से
1: शुरुआत आप करा लिखे के तो का का विषय में लिखत रहा?
0: कोई भी लेखक साहित्यकार होए, लेखन की शुरुआत जहां तक होए मोर समझ के अनुसार कविता से ही होते, भले वो कविता बाद में ओकर कचड़म जल दे तो ही ओकर प्रकाशन नहीं हो तो ही वो बात अलग है, लेकिन शुरू में वो कविता से ही शुरू होते। तो हम लोग कविता से ही शुरू हुई, अब वो जो कविता हम वो समय लिखे रहे वो अब नहीं है।
1: तो समय जैसे आप कविता लिखा तो आप कहीं ऐसा कोशिश करे कि जो मैं कविता लिखे हूँ कोई पढ़ के सुनाओ, या कोई ऐसे गुरुजी या कोई ऐसा साहित्यकार जिला मैं कविता सुना तो वो सुने और कुछ अपन विचार दे, ऐसा कुछ है?
0: नहीं, जब वो कविता जब लिखत रहे तो उस समय पढ़ाई तो छूट गई से।
1: हाँ।
0: लेकिन नौकरी मांग रहे तो हमारे साथी शिक्षक मन रहा है वो मतलब सुना ना। हाँ, तो
1: चर्चा हो कविता के बारे
0: चर्चा
1: में।
0: हाँ।
1: शुरुआत हिंदी भाषा में करा कि छत्तीसगढ़ी में?
0: सर हमार पहली कविता संग्रह है भूख मापी यंत्र, तो छत्तीसगढ़ी के मोर 6-7 किताब आ चुके हैं अभी तक। तो छत्तीसगढ़ी में गद्य में लिखता हूँ, तो छत्तीसगढ़ी में मैं 3 अनुवाद भी करे हूँ। पहला जो अनुवाद की किताब है मोर 2.5 अक्षर प्रेम के, वो दुनिया के प्रसिद्ध साहित्यकार मन के कहानी मन के जो उन कोर्स में भी है।
1: हाँ।
0: जैसे ऑस्कर वाइल्ड है उनका 2 कहानी बुलबुल और गुलाब और द मॉडल मिलियनेयर, फिर ओ हेनरी के है द लास्ट लीप और द गिफ्ट ऑफ मिजाई, खुशवंत सिंह के है और ऐसे बड़े बड़े लेखक बन के एक किताब है। दूसरा अंतोन चेखव जो रूस के महान साहित्यकार है उकर लगभग 16 या 17 कहानी मन के अनुवाद है, और एक मैगजीन गुरकी के कहानी मन के अनुवाद है। ये 3 अनुवाद के वो पूरा छत्तीसगढ़ी में है। लेकिन वो अनुवाद की विशेषता ये है कि अगर पात्र मन के और स्थान के नाम रूसी भाषा में नहीं होती थी ना तो आप नहीं लगती इसके रूसी कहानी है, वो छत्तीसगढ़ी कहानी ही है ऐसे लगती थी, ये उकर विशेषता है
1: जी। तो ये आपके मन में कैसे विचार है कि जो प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं विदेशी साहित्यकार हैं या हमारे देश के जो नामी गिरामी साहित्यकार हैं ये मन के रचनाला छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करना है, कैसे मन में ऐसा का उद्देश्य रही से कर छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे के?
0: सर उद्देश्य भी बताऊं लेकिन मन में कैसे ऐसे पहली बता हूँ
1: जी।
0: हम हिंदी के लेक्चरर रहे हायर सेकेंडरी कन्हारपुरी में, तो वहाँ एक अंग्रेजी के लेक्चरर रही से मैडम रही से ओकर संग ऐसे ने चर्चा हुई, तो हम बोले भैया वो गिफ्ट आप में जाई बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जी और इतना भावपूर्ण है कि वो कुछ कहे नहीं जा सके, एक बार बोल के फिर से बोलो द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, ये मेजाई क्या होता है? मेजाई मेजाई होता है भैया, मेजाई के बारे में मैं क्या बताऊं, आप अंग्रेजी के लेक्चरर हो आपको ज्यादा पता होना चाहिए, मेजाई शब्द नहीं होता वो मैजिक होगा, मैं बोला मैजिक नहीं है मेजाई है। फिर वो कोर्स में तो रही से बोला बुला के देखा हूं, मैं बोलो कि ये मन मूला अंग्रेजी में अति हीन काबर समझते है भाई, अंग्रेजी थोड़ा बहुत हम मूला थे, तो मैं कह अब एक मन के मैं छत्तीसगढ़ी में ही अनुवाद करूँ। ओकर से 2 फायदा हो ही, एक तो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा समृद्ध हो ही, दूसरा दुनिया के महान साहित्यकार मन के महान रचना हम छत्तीसगढ़ी में पढ़बो तो ओकर प्रभाव अलग पड़ी, ये उद्देश्य लेके मैं है ना ये काम करे भाई। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार अंतोन चेखव जो मुंशी प्रेमचंद भी मानते वो सबसे बड़े साहित्यकार मानते
1: जी, जी।
0: और गुरकी अपन जगह में ही है और ओ हेनरी वो ऐसे अद्भुत कहानीकार है ना मन
1: जी, जी जी जी।
0: तो एक मन के सब रचना मन का अनुवाद करें,
1: आप उद्देश्य बताया बहुत अच्छा उद्देश्य है ये, और हमारे जो नई पीढ़ी के जो युवा साथी हैं ये मतलब अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भाषा में पढ़े

0: तो उनके और ज़्यादा एक
1: हाँ
0: क्षमता, बौद्धिक क्षमता बढ़ी
1: जी,
0: और आप अपन उद्देश्य में और सफल हो पाई। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है आपके।
1: एक हुए सर अनुवाद करे से एक भाषा के सामर्थ्य भी सिद्ध होते हैं,
0: जी जी जी जी
1: कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में एक सामर्थ्य है कि हम दूसरा भाषा के भी अनुवाद कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: सामर्थ्य भी
0: बिल्कुल
1: साबित होते हैं।
0: जी। कुछ ऐसे ही कुछ छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह भी है आपके,
1: जी
0: थोड़ी सी चर्चा कर बारे में भी कर लेते हैं। जैसे कि भोलापुर के कहानी, इनमें
1: हाँ
0: कुछ
1: जी
0: कहानी आपके शामिल है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: तो ऐसे कुछ कहानी है, कुछ चर्चा करना चाहा था अपन। जैसे
1: जी
0: मैं एक देखा था कि डेरहा बाबा एक कहानी है आपके, अब है तो थोड़ी लंबी कहानी,
1: नहीं, छोटे छोटे
0: छोटी
1: कहानी
0: कहानी
1: है।
0: है,
1: ये
0: तो थोड़ा सा कर सारांश आप सुना सका था का?
1: जो किताब आपके हाथ में है भोलापुर के कहानी,
0: हाँ
1: तो एकर भूमिका में डॉक्टर जीवन यदु राही है। ये किताब ला उपन्यास के स्वाद वाला कहानी संग्रह बोले हैं,
0: अच्छा।
1: मतलब ये कहानी मन आपस में सब जुड़े हुए हैं, पात्र मन के नाम वही है, स्थान के
0: अच्छा।
1: नाम वही है, लेकिन कहानी के रूप में है, तो
0: जी
1: सब ला जोड़ दू आप तो ऐसे लगे जैसे
0: ये
1: उपन्यास पढ़ा था।
0: उपन्यास
1: तो
0: है।
1: ये डेढ़ा
0: अच्छा।
1: बाबा जो है
0: हाँ
1: प्रारंभिक पहली कहानी है रे,
0: हाँ
1: तो एकर दो उद्देश्य है। एक तो गांव गोढ़ा में जो हम रतन, तो कहानी भी सुनाया के काम तो डोकरा मन करते, डोकरा दाई डोकरा बाबा या
0: हाँ
1: गांव
0: जी,
1: के किसी
0: डोकरा
1: हाल में
0: डोकरा
1: रहे।
0: बाबा डोकरी दाई, ये
1: हाँ
0: मन हाओ
1: तो
0: हाओ।
1: हम सोचे नेकरे से शुरू करे जाए,
0: हाँ हाँ हाँ
1: और शायद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने ज्यादा समय भी नहीं हो रही से उस
0: 25 साल
1: समय।
0: होगी सब तो, आज आज की तारीख
1: हाँ,
0: में।
1: आज के तारीख में बहुत दिन हो
0: हाँ
1: गए,
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: किताब जब छपी तो 8-10 साल हो रही से,
0: हाँ
1: और वो
0: हाँ
1: कहानी
0: हाँ
1: लिखे हैं तो 2-3 साल हो रही सो ही। तो एक ग्रामीण सियान है या गांव के रहने वाला व्यक्ति है, वो नवा राज्य बने के पीछे ओकर का अवधारणा, ओकर इच्छा या ओकर आकांक्षा का रही से, वो कैसे ढंग के वो अपन दृष्टि से देखते,
0: जी
1: वो में कहानी में दर्शाए गए हैं। वो डोकरा बाबा कहते कि कल बर हम हर 20वीं सदी में रहन, आज 21वीं सदी में आ गए हैं।
0: जी।
1: अब एक रात में का बदल गए, कुछ नहीं बदली, तो
0: हाँ
1: कुछ नहीं बदले है, ये सदी बदले से का हो जाते, बस
0: अच्छा
1: यही होकर कथा न करे।
0: जी। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रयास है कि है ये कहानी, लेकिन जब पूरा कहानी मिला दे वो तो एक उपन्यास के रूप
1: बिल्कुल
0: में है
1: बिल्कुल।
0: ना, एक तारतम्य है उनमें।
1: और अभी जो
0: जी
1: मोर उपन्यास आने वाला है सर, अपुरकंथा नाम के, वो
0: हाँ
1: एक जस्ट विपरीत है।
0: अच्छा।
1: वो बोला पढ़ू आप तो उपन्यास के नाम से पढ़ू, लेकिन उपन्यास में आप लग कहानी भी बहुत सारा मिली, तो ऐसे लगी कि कहानी के स्वाद वाला उपन्यास है।
0: थोड़ा सा विषयांतर करत हैं ना आप, छत्तीसगढ़ी में कुछ कविता भी लिखे, हालांकि कम लिखे हैं, लेकिन कुछ कविता आप लिखे
1: हाँ जी
0: हवा,
1: जी
0: और
1: जी
0: बातचीत से पता चले कि वो जो आप गीत लिखे हैं वो मतलब स्वरबद्ध भी कलाकार मन करे हैं,
1: हाँ
0: है ना, तो कुछ
1: जी।
0: ऐसा गीत आप ला सुरता आत है?
1: अब एक वो सर भोलापुर के कहानी में
0: हाँ
1: 12 मासी आल्हा दे है,
0: हाँ
1: वो यही किताब के अंश है, वो हर छत्तीसगढ़ी कथा कंथली में, मोर एक ठनू कहानी से
0: हाँ
1: वो लोक कथा के संग्रह है रे, वो में 16 ठन लोक कथा के संग्रह है, वो भी थोड़ा अलग शैली में है। तो अंत में वो कर 12 मासी आल्हा है, वो आल्हा ला हमार लोक कलाकार श्री राकेश तिवारी हर गाय है, वो बहुत अभी वायरल भी हुई सोहा, छत्तीसगढ़िया होटल करके कविता है। वो जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं बने रही से, हाँ,
0: अच्छा।
1: तो छत्तीसगढ़ राज्य तो 2019-16 1998 के आसपास लिखे रहे हो, और
0: आप
1: मूल
0: अंदाज लग गए इसकी जल्दी राज्य बने वाला है।
1: तो छत्तीसगढ़ राज बने के बाद में हमारे राज के जो स्वरूप है वो कहाँ होना चाहिए, नहीं हमारे राज एक तो ऐसे भी सब दुनिया भर के आदमी यहाँ आके समाविष्ट हो जाते, और छत्तीसगढ़िया पन में वो रंग भी जाते, एक दूसर के भाषा संस्कृति का आदान प्रदान होते,
0: जी।
1: तो वो हमारे जो मूल भाव है वो जारी रहे, और हम अपन तरफ से जो बाहर से यही वो मलका दे सकते, ये भाव लेके वो कविता है, आप कहो तो सुना हूं।
0: हाँ सुना देवा सुना देवा। हाँ
1: छत्तीसगढ़ राज में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है, चाह के बदला ग्राहक मल्ला पसिया पेज पिलाना है, सेव के बदला ठेठरी खुरमी, इडली के बदला मुठिया फरा।

0: डोसा के बदला चीला रोटी और तंदूरी के बदला ग्राहक मल्ला अंग आकर रोटी खवाना।
1: क्या बात, क्या बात है।
0: मंझनिया तात पे संग में अमारी भाजी, रात में दार भात संग में इढ़र कढ़ी, बिहनिया नाश्ता में आमा के अथान संग दही बरा के बदला दही बासी खवाना है। छत्तीसगढ़ राज में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है।
1: जी जी।
0: और आखिर में है, कुर्सी के बदला मचोली, टेबल के बदला पीढ़ा, प्लेट के बदला बटकी, कप के बदला कटोरी, बेरा मल्ला बस्तर ले लाके बस्तरिया पगड़ी पहनाना है। छत्तीसगढ़ राज में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है।
1: जी जी जी, जी।
0: ना कोई कपाट मेड़ी, ना कोई छेका रोका, छकत ले खाओ संगी और छकत ले खवाओ, जनता के होटल जनता के द्वारा जनता पर, होटल के आगू ऐसने साइन बोर्ड लगाना है, छत्तीसगढ़ राज में ठन छत्तीसगढ़िया होटल
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता आपके। एक आध और कविता है आपके?
0: वो छत्तीसगढ़ी में एक ठन है।
1: हाँ,
0: ये
1: आप इतना बढ़िया कविता सुनाया कि एक और सुने के मन करत है।
0: अच्छा
1: जी, ओकरे वो मैं आपसे फरमाइश कर
0: एक
1: दे।
0: माया गीत है ने।
1: जी जी, ये भी जरूरी है जीवन में माया के भी
0: के बीच के जब माया होते
1: जी
0: तो उकर मन के बीच में का संवाद होते।
1: हाँ,
0: ये गीत आपके आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग भी हो चुके है। महादेव हिरवानी और खापरडे मैडम है वो गाय है।
1: अच्छा।
0: आत्माराम कोसाकर संगीत दे है।
1: हाँ।
0: वो मन है कुछ में फिर बदल भी करे है, लेकिन जो मैं मूल रूप से लिखे हैं वो मैं सुनाता हूँ।

0: तेना मयाम जग उजरावै, मयाम जग दुलरावै, बिन मयाम या रुक जल बिन जैसे मछरी होते ना, माया के गोट बड़ लम्हरी होते ना। माया डोरी के बंधना में बंध के मन एके हो जाते, माया डोरी के बंधना में बंध के मन एके हो जाते, कहे कबीरा प्रेम गली बड़ सकरी होते ना, माया के गोट बरल उमरी होते ना, ले ले रहन टूरी लबरी माया अखरी होते ना। ऐसे है सर, एक बार दाऊ है
1: जी, बहुत
0: रहन।
1: बहुत बढ़िया गीत आप सुनाया। बात ला आगे बढ़ा थन कुबेर जी, और आप छत्तीसगढ़ बने के बाद में
0: जी
1: जो हमारा पाठ्यक्रम है छत्तीसगढ़ी भाषा के भी अब शुरुआत हो गए हैं, और बच्चा मतलब सिखाए के भी प्रयास चलत है, तो ये पाठ्यक्रम जो तैयार करें मैं, आपके भी कुछ योगदान हावे?
0: नहीं, हम रिटायर हो पहले, अब वो सरकारी काम में, तो अब सरकारी सेवक रहें तभी हमारा योगदान हो
1: जी
0: सकते हैं।
1: जी जी
0: तो खैरागढ़ बीटीआई में कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी विषय के किताब मन से 5 पाठ हिंदी के हटाना रहिस है, और वो में छत्तीसगढ़ी के 5 पाठ जोड़ना रहिस है। वो में हम शामिल रहें समिति में, और डॉक्टर जीवन यदु, डॉक्टर पीसी लाल यादव और मैं, ये तीनों मिल के बहुत प्रयास करके 5 पाठ जोड़े रहें। बाद में हम SCERT से भी जुड़े हैं, रायपुर से, राज्य शैक्षिक अनुसंधान
1: जी
0: एवं प्रशिक्षण परिषद से, और वहाँ भी हिंदी विषय के मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करें। तो जब 9वीं के पाठ्यक्रम बदली, हायर सेकेंडरी स्कूल के पहले
1: जी
0: 9वीं के बदली, फिर 10वीं के, फिर 11वीं 12वीं के, तो 11वीं 12वीं और 10वीं में तो सीधा सीधा वो केंद्र लेवल के हैं, वो लोग एडॉप्ट कर लें। बाकी 9वीं के पाठ्यक्रम जब बनाएं तो विषय समिति में रहे हों,
1: जी
0: लेकिन वो विषय समिति में ज़्यादा दिन तक के नहीं रहे हों। अब सर ये काम जो है एक बैठक में भी नहीं हो, तीन
1: हाँ
0: तीन चार चार दिन के, 5 5 दिन के बैठक होते,
1: जी
0: और 10ों बैठक करे के बाद में ये सब काम होते। तो इस तरीके से ये, अब जिसे कि आजकल चला थे कि पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी लाया जाए, तो मोरो मानना है कि प्राथमिक स्तर में कम से कम तीसरी चौथी पांचवी

तक के बच्चा मतलब मातृभाषा में पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा एक बात हुई सर, हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाया जाए अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल करे जाए, बहुत तो वो करत हैं, लेकिन हमर जो कमी है वो हम नहीं देखत हैं भाई। हम अतिक साहित्य लिखत हैं, कविता कहानी उपन्यास सब लिखत हैं, लेकिन हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम मन है एकोठन विषय है छत्तीसगढ़ी में, क्या विज्ञान के विषय हो, इतिहास के विषय हो, अर्थशास्त्र के

0: पाठ्यक्रम मन ह एकोठन विषय है छत्तीसगढ़ी में का विज्ञान के विषय हो इतिहास के विषय हो अर्थशास्त्र के विषय कोनो भी विषय हमारे एकोठन है हम लिखे पाएं छत्तीसगढ़ी में ओकर बिना नहीं हो सके ना ये सब
1: बहुत सारी बात है जेकर ऊपर अभी काम करना है तभी जाके मोर लगते कि छत्तीसगढ़ ही जो भाषा है वो ज्यादा समृद्ध हो पाई।
0: जी जी
1: कुबेर जी आप तो काफी लंबे समय से आप जुड़े हैं साहित्य लेखन से जे मैं आपके दोनों भाषा पे समान अधिकार के साथ आप लिखा था चाहे हिंदी है या छत्तीसगढ़ी है आप कहानी भी लिखे हैं कविता आप ज्यादातर हिंदी में लिखे हैं और बाकी तो योगदान आपके है ही। कितना सारा समय आप निकाले शिक्षा जगत के साथ साथ साहित्य जगत में भी इतना सारा कुछ करे के बाद में लगते कि कुछ सम्मान भी आप कई जगह मिली सो ही आप ला। तो उकर बारे में बतावा।
0: तो सर 2012 में अपन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से डॉक्टर रमन सिंह जी है और ये छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के सब शुरू हो चुके रही से तो हमारे नांदगांव जिला में एक आदेश दिन हुई कि नांदगांव जिला में जो साहित्यकार है और कलाकार है तीन आदमी के चयन करो और बोला शिक्षक दिवस के दिन हम सम्मानित करब तो उकर लिए प्रविष्टि मंगाए गई और विद्वान मन चयन समिति में बैठे डॉक्टर गोरेलाल भी रिसो में डॉक्टर जीवन यदु भी रिसे ऐसे मन है और तीन व्यक्ति के नाम में तीन महान पुरुष के नाम में एक तो गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम में एक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम में तो मूला गजानन माधव मुक्तिबोध सम्मान से सम्मानित करेगी रिसे ये 2012 की बात है और डॉक्टर रमन सिंह है नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में ये शिक्षक दिवस के दिन
1: जी
0: उकर पहली साहित्य समिति वाले मन तो करते रहते अभी 25 के शायद 25 या 24 के बाद है यार रायपुर में एशियन न्यूज वाले हैं वो मन है अनुवाद के क्षेत्र में काम करे पर मुला अनुवाद के लिए वो मन पुरस्कृत कर रही है और छत्तीसगढ़ राजभाषा वाले भी दिसंबर 25 में मुला सम्मानित कर रही है साहित्य के क्षेत्र में और कोई बड़े पुरस्कार नहीं मिले बस यही
1: जी ये है कि जो काम आप समर्पित होके छत्तीसगढ़ ही भाषा और छत्तीसगढ़ की सेवा आप करा था आप लोग कुछ सम्मान भी मिली कुछ आप अपन आत्मसंतुष्टि के लिए भी आप रचना करा था कुछ गीत आप लिखे जिला कलाकार मन स्वरबद्ध भी करीन है ना
0: जी।
1: अब जो आए वाला समय खातिर आप का सोचे और का करना है आपला सम्मान पाना पुरस्कार पाना वो अलग चीज है
0: अलग
1: लेकिन चीज़ आप अपन इच्छा से और का कुछ लेखन
0: तो
1: करना चाहते
0: सर वो जो लिखा था तो लिखे कर बन छत्तीसगढ़ी में ही हम ज्यादा ध्यान देते लिखे पढ़े गए काबर की हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा ला समृद्ध करना है ये हम मान के चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ आप लोग मोर शैली जो है व्यंगात्मक है ये कहानी मल्ला कविता मल्ला पढ़ू ना तो व्यंगात्मक शैली ही मिली व्यंग के मोर दो किताब आ चुके है हिंदी में वो उकरो भी चर्चित वो मन चर्चित हो चुके हैं एक तो माइक्रो कविता और दसवा रस और दूसरा व्यंग संग्रह है कुत्तों के भूत ये दोनों व्यंग संग्रह है मोर और ये जैसे ये भोलापुर की कहानी रखे हो ये पढ़ू तो मैं व्यंग के ही एहसास हो ही आप ला तो
1: जी।
0: एक तो व्यंग के क्षेत्र में हम काम करत रहोन दूसरा छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं एक बाल उपन्यास लिखना चाहता हूँ छोटे से लेखा मन के लिए वो हर शिक्षण के भी काम करे वो में गणित भी हो वो में इतिहास भी हो और वो में नैतिक शिक्षक बात भी हो उपदेशात्मक आजकल उपदेशात्मक चीज नहीं चल रही तो मैं हर ये ध्यान रखूं कि वो उपदेशात्मक ना हो बच्चा मन खेल खेल में सीख जाए
1: जी जी
0: ऐसे एक बाल उपन्यास लिखे के मोर योजना है और तो लिखते रहो
1: जी जी आप तो इतना लंबा समय बिताया है साहित्य के क्षेत्र में आपसे कहना चाहिए कि नई पीढ़ी के साहित्यकार मन भी जुड़त जात है मैं तो ऐसे साहित्यकार मन खातिर आप मन के कुछ मार्गदर्शन जैसे जगह जगह में गोष्ठी आयोजित होते थे हर जिला में हर मौके में ऐसे आपके राजनांदगांव जिला में भी काफी सक्रिय है आपके साथी मन तो जो नई पीढ़ी के साहित्यकार है वो मतलब भी मांझे के प्रयास करता आप मन।
0: हाँ हमारे संगवारी मन कुछ लिखते कहानी संग्रह या कविता संग्रह या कुछ भी लिखते तो मूर्ति भी जरूर लाते दिखाए बार तो मैं बोलता हूँ यार मैं कुछ मैं

0: उधार कर दूं तो बने कि नहीं। तो बोले हाय केरे बार तो लाए आंसर ऐसे। तो मैं हर मूर्ति मैं
1: जी
0: कंप्यूटर चलाए बार जानता हूँ, ये सब मैं कंप्यूटर में खुद ही
1: जी
0: टाइप करता हूँ।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: मैं
1: जी
0: हर उकर संपादन के काम भी कर देता हूँ।
1: हाँ
0: और हमारे साकेत साहित्य परिषद सुरगी में हम लगातार साल में स्मारिका निकालता हैं। तो स्मारिका में हमारे संगवारी मन के सब रचना मर रहे थे। मोर कहना यह है कि देखो जी, हम छत्तीसगढ़िया आदमी और छत्तीसगढ़ी में लिंग की बड़ा प्रॉब्लम होते कि
1: हाँ,
0: कते शब्द हम स्त्रीलिंग मानन कते शब्द
1: हाँ,
0: पुल्लिंग मानन।
1: हाँ,
0: तो जब हम हिंदी बोलते हैं तो यही में बड़ा गलती होते है। और दूसरा लिखा समय जो हमारे वर्तनी है वो बड़ा गलती होते है। तो हिंदी ले छोड़ो, तुम छत्तीसगढ़ी में लिखो ना, हमारी मातृभाषा है, बड़ा सहज रूप से लिखो। तो ये मोर प्रयास रहते। तो संगवारी मन बात मानते भी।
1: बहुत अच्छा प्रयास है आपके कुबेर सिंह साहू जी। और हम तो ये उम्मीद करबो कि नई पीढ़ी ला आपके मार्गदर्शन मिलत रहे साहित्य सेवा के क्षेत्र में। और आप लंबा समय अपन बिता हुआ साहित्य में, आज आप स्टूडियो में आया और एक साहित्यिक यात्रा आपके बारे में चर्चा हुई, शेखर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देता ना आपला। आप स्वस्थ रहा और साहित्य सेवा में जुड़े रहा। श्रोता साथी हो, आज हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये क्रम में हमन ग्राम भोड़िया पोस्ट ढोंढिया जिला राजनांदगांव के वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी से चर्चा करत रहे। और ये चर्चा के साथ ही मोर भुइया कार्यक्रम से यही विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: मोर भुइयां छत्तीसगढ़ी में ये समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें क्रम हमर संस्कृति हमर साहित्यकार में आज आपने सुनी वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहूले कोटपाद। मोर भुइयां के संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
1: छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

0: सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

गजनी फिल्म से आप सुन रहे थे ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ ये बेहतरीन म्यूजिक। आइए अगला गाना सुनते हैं उन्हीं की।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं टशन फिल्म से, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में, कौसर मुनीर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: पैशन फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनवाएंगे हम आपको टशन फिल्म से वो गाना, लेकिन बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना, जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतजार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतजार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतजार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं तुम्हारी सुलुफ। इस फिल्म से रोंकिनी गुप्ता की आवाज में शांतनु घाटक का म्यूजिक और लिरिक्स।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं जब हैरी मेट सेजल। इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: यस, हु इज इट?
2: डॉन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारती आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
2: श्रोताओं नमस्कार। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।
3: कोई

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

करण के पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इस फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को माँ हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

खुद फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

0: करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर,
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करेगी। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को होगा मतदान। और मुख्यमंत्री ने किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का समग्र विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों से जुताई और सिंचाई पंपों के लिए किसानों को आवश्यकतानुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि खेती किसानी के कार्य प्रभावित न हो। गौरतलब है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रम और जेरिकेन में ईंधन वितरण पर लगे प्रतिबंध में किसानों को आवश्यक छूट दी गई है, जिससे खरीफ कार्य प्रभावित न हो। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी हो गई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी

में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। भारत सहित दुनिया भर से लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 दिवसीय हज यात्रा के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। हज यात्री आज पूरा दिन अराफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 6 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आगामी मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और आपदाओं से निपटने के लिए राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया कि 1 जून से प्रतिदिन वर्षा की स्थिति और संभावित क्षति की रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने प्रत्येक जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में नौतपा के पहले दिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, राजनांदगांव समेत 10 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में पहली बार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोडबोले दंपति को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करेगी। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत 1 जून को होगा मतदान। और मुख्यमंत्री ने किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।

0: शासन इन दिनों पूरे प्रदेश में मना रहा है सुशासन बिहार। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है सुशासन। सुशासन यानी जनता और सरकार का सीधा संवाद। संवाद समस्याओं के निराकरण के लिए, संवाद खुशहाली और तरक्की के लिए। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर छत्तीसगढ़ सरकार 1 मई से 10 जून तक मना रही है सुशासन तिहार। इसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है जो किसी न किसी रूप में अभावग्रस्त है। अब सुशासन तिहार बन गया है गुड गवर्नेंस फेस्टिवल। ये त्योहार राज्य में जन समस्याओं के त्वरित समाधान और योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। संवाद से संपूर्ण समाधान ही सुशासन तिहार का मुख्य लक्ष्य है। इसके तहत गांवों और शहरों में शिविर लगाए जा रहे हैं और प्रमुख शासकीय सेवाओं को सबके लिए मुहैया कराया जा रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं कबीरधाम जिले की महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी सुश्री रीना ठाकुर।
1: कबीरधाम जिले में सुशासन शिविर आयोजन किया जा रहा है जिसमें हितग्राहियों की विभिन्न प्रकार की जो मांग है या शिकायतें हैं उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। यह राज्य स्तर से संचालित एक अभियान है जिसमें सभी विभागों को एक ही क्षेत्र में एक ही छत के नीचे जो हमारे हितग्राही हैं उन्हें किसी प्रकार की योजनाओं की जानकारी चाहिए या उनका कोई समस्या है, कोई मांग है, कोई शिकायत है, उसके त्वरित निराकरण के लिए इसका आयोजन 10 जून तक किया जा रहा है। इसमें कबीरधाम जिले में भी जो 4 ब्लॉक हैं सभी में विभिन्न तिथियों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है जहाँ पर जिला स्तर अधिकारी, विभाग के अन्य कर्मचारी, साथ ही विकासखंड के जो प्रमुख हैं अधिकारी कर्मचारी वे सभी भी उपस्थित हैं। इसी कड़ी में महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी सुशासन शिविर में उपस्थित हैं, उनका स्टॉल लगाया जा रहा है, विभिन्न योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को दी जा रही है, उनके द्वारा कोई मांग की जा रही है या कोई शिकायत है या किसी प्रकार की समस्या होने पर उपस्थित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उनके समस्या का निराकरण किया जा रहा है। 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक विभिन्न ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर के माध्यम से आवेदन भी प्राप्त किए गए थे उसका निराकरण भी आयोजित शिविर के दिन से पूर्व तक किया जा रहा है। कबीरधाम जिले में आज दिनांक तक लगभग 263 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं या जो ऑफलाइन प्राप्त हुए थे विभिन्न शिविरों के माध्यम से उसे ऑनलाइन किया गया है और लगातार इसका निराकरण भी किया जा रहा है। यदि वो संबंधित विभाग से संबंधित न होकर किसी और से है तो तत्काल दूसरे विभाग फॉरवर्ड किया जा रहा है। यदि कोई छोटी मांग है तत्काल निवारण वाली समस्या कोई आ रही है तो तत्काल निवारण कर रहे हैं। यदि कोई मांग है जो बजट संबंधित हो, ऐसी कोई नई मांग जो राज्य स्तर से संभावित सुलझाने के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो सुशासन शिविर का आयोजन किया जा रहा है उसमें विभाग के पोषण अभियान के तहत विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसमें रेडी टू ईट के बने व्यंजनों, साथ ही हमारे जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है उनका और जितने मिलेट्स हैं उनका भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम ये जो अपने घर में उपलब्ध छोटी छोटी सी चीजें हैं इनका पर्याप्त सेवन करेंगे तो एनीमिया, कुपोषण जैसी चीजों से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा विभागीय योजनाओं के विभिन्न बैनर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं मंच के माध्यम से प्रभारी अधिकारी के द्वारा, विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है जैसे जन सामान्य तक जितना भी विभाग का छोटी से छोटी योजना है वो हमारे अंतिम छोर में जो खड़े हितग्राही हैं वहां तक इस पर पहुंच सके। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका 6 माह पूर्ण हो गया है वहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा अन्न प्राशन कराया जा रहा है, गर्भवती माताओं की गोद भराई की जा रही है और उन्हें पोषण और स्वास्थ्य के संबंधित जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का भी वितरण किया जा रहा है, साथ ही उसे इन सब क्षेत्रों के इन सब विषयों के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है जिससे अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें और स्वस्थ रहें। इस प्रकार एक ही छत के नीचे सभी हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक साथ मिल रहा है।

विभाग की भी ओर से जितनी भी अन्य योजनाएं हैं या कोई हितग्राही आ रहे हैं उनसे पूरा ही जानकारी दी जा रही है, और जितने भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं या वहाँ तत्काल शिविर में आ रहे हैं उनका भी निराकरण तुरंत किया जा रहा है।

0: छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन तिहार के माध्यम से आम जन तक अपनी पहुंच बना ली है। इससे समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो रहा है और शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं सीधे तौर पर आम आदमी तक पहुंच रही है। सुशासन तिहार में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है और विकास कार्यों में गति लाने के लिए आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है समाज की खुशहाली और विकास के लिए।
1: मैं नगर पालिका अध्यक्ष अहिवारा विद्यानंद कुशवाहा। हम लोग अभी सुशासन त्योहार में अभी हम लोग जन जागरूकता अभियान छेड़े हैं। 1 से लेकर 15 वार्ड पड़ते हैं हमारे वार्ड में। हम लोग एक नुक्कड़ माध्यम से लोगों को मसोक्ता पीठ के बारे में बता रहे हैं कि आप नालियां में कचरा नहीं फेंके, ये सब चीज के बारे में बता रहे हैं। पहले 1 से लेकर 8 वार्ड तक के हम लोग शिविर जो लगाए थे वो मतलब अहिवारा के लिए लगाए थे, मंगल भवन 3 में लगाए थे। और अभी हमारी जो शिविर इधर और लोगों का ज्यादातर जो आवेदन आ रहा है ना, पट्टे के लिए आ रहा है और आवास के लिए आ रहा है। कोई इतना ज्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोग मतलब मतारी वंदन के बारे में कि जैसे कुछ कुछ महिलाएं छूट गई थी उनके बारे बता रहे, और ऐसे कोई ज्यादा विशेष कि मात्र पट्टा का है, आवास का है और ये मतलब मतारी वंदन का है। नहीं, नाली ओग्रा में नालियों की ज्यादा कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं आजकल क्या होता है कि लोग जो डिस्पोजल ओग्रा फेंकते हैं ना, उसी के चलते क्या नालियां कहीं कहीं चोक होती है, लेकिन उसको हम लोग ना पूरी तरह साफ करवा दिए हैं। आज अगर आप प्रदेश में अगर पूरे जगह की नगर पालिकाओं में अगर देखें और हमारी नगर पालिकाओं को देखें, आपको रोड रोड किनारे कहीं कहीं ही बड़ा मुश्किल से डिस्पोजल चाहे झिल्ली मिलेगा। हम लोग बिल्कुल झिल्ली पन्नी बिल्कुल मतलब मुक्त कर दिए हैं। समझिए कि 90% हमारे यहाँ से झिल्ली खत्म हो गया। साल भर से मैं उसी अभियान में भिड़ा हुआ। हमारे यहाँ आपको नहीं मिलेगा मतलब उतना ज्यादा देखने के। और मंगल भवन है उसमें भी हम लोग डिस्पोजल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कोई मंगल भवन अगर किसी को चाहिए, अगर आप डिस्पोजल का उपयोग करेंगे तो आपको मतलब हम लोग नहीं मतलब नहीं देंगे मंगल भवन। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोग अगर पहले नहीं करेंगे तो उनको भी मकान का निर्माण करने नहीं दे रहे हैं। अभी सभी विभाग के कर्मचारी बैठ रहे हैं और बिल्कुल मतलब बड़ी तादाद में आ रहे हैं लोग। हम लोग जो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं ये वार्ड 1 से लेकर 15 वार्ड तक के कर रहे हैं। और इसमें मतलब जैसी जैसी जो परिस्थितियां निर्मित होती है, जिस टाइप के लोग हैं मतलब वार्ड में, उसके अनुसार मतलब नुक्कड़ नाटक का हम लोग उसके माध्यम से बता रहे हैं। स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं, झिल्ली नहीं फेंके उसके बारे में बता रहे हैं, और स्वच्छता पीठ के बारे में बता रहे हैं कि भाई इसे आप अगर अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे तो ये मान के चलिए कि आप ही स्वस्थ रहेंगे। नालियों में कचरा नहीं फेंकेंगे तो मच्छर उत्पन्न नहीं होगा और अन्य प्रकार की बीमारियां नहीं होगा। चाहे कहीं पर जो पाइपलाइन है उसमें आप अवैध नल कनेक्शन नहीं ले, उस चीज को भी बता रहे हैं हम लोग सभी प्रकार का। क्योंकि अगर हम सरकार का नुकसान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। ये सब चीज के बारे में भी मतलब बताया जा रहा है।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: सुशासन तिहार के पहले चरण में शहरों के वार्डों और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर आम जनों से आवेदन प्राप्त किए गए। इसके बाद 1 मई से प्रदेश भर में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 जून तक जारी रहेगा। इन शिविरों में प्राथमिकता के आधार पर आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, साथ ही जनता को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक नागरिक योजनाओं का लाभ ले सकें।
2: मैं नगर पंचायत शिक्षण से मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुजीत चा बोल रहा हूँ। और अभी छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना छाया सरकार की सुशासन तिहार, जो कि मेरे यहाँ मेरे निकाय में 2 दिन आयोजित हुआ, 8 तारीख और 15 तारीख, सभी में अधिकांश आवेदन पट्टे का आया है। लोगों को पट्टा नहीं होने के कारण से उनका आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और पट्टा लेने में भी मतलब उच्च अधिकारियों से जो बात हुई, तो ये छत्तीसगढ़ जो शहर है वो 95% नजूल भूमि, इस कारण से उसमें पट्टा दिया जाना संभव नहीं है ऐसा। और मुख्यतः यहाँ समस्या मतलब केवल पट्टे का है, और पट्टा नहीं होने के कारण से बहुत से लोग आवास से वंचित। नॉर्मली ऐसे आवेदन है सफाई और पेयजल वगैरह को लेकर, तो उसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का थोड़ा ऊपर और बसावट होने के कारण से कुछ कुछ एरिया ड्राई एरिया हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग शासन तिहार के पहले ही यहाँ पर 7 बोर का हुआ है, और बोर के माध्यम से ही यहाँ सप्लाई होता है, ताकि भविष्य में जल संकट बढ़ सके। यहाँ पास में 6 किलोमीटर आगे छिदारी डैम है, जो कि बहुत अच्छा मतलब पर्यटन स्थल भी है, और उससे यदि छत्तीसगढ़ को पानी मिल जाती है तो यहाँ की पेयजल की मांग के लिए आप कम से कम 99% समस्या खत्म हो जाएगी।

0: सुशासन बिहार आयोजित कर सरकार ये चाहती है कि आम नागरिक इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं और शासन की योजनाओं का लाभ लें। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समस्याओं और योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद कहा है कि सुशासन और विश्वास का उत्सव है सुशासन तिहार। वास्तव में यही नजारा आज पूरे प्रदेश में देखा जा सकता है। सरकार हर द्वार पर दस्तक दे रही है।
1: मेरा नाम पारस मलिक साहू जी, ग्राम पंचायत गंजी से सरपंच प्रतिनिधि एवं पंच। हमारे एरिया में सुशासन त्योहार ग्राम पंचायत सक्रिय में रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन का त्योहार है, समझ लो एक प्रकार से, जो त्वरित हितग्राहियों का समाधान हो रहा है। हर विभाग का स्टॉल लगा हुआ है और विभागों द्वारा कई ऐसे विलम्ब जो केसेस है, समझ लो जो बहुत पहले से कई प्रकार के उलझे हुए हैं अपने ग्रामीण एरिया के, जितने भी जैसे राजस्व विभाग में बंदोबस्त त्रुटि है हमारे गांव के कम 20 से 25 लोगों की, उसका आवेदन यहां स्वीकृत किया गया है और माननीय तहसीलदार महोदय को बोला गया है कि इसका गांव में समाधान शिविर लगा करके इन लोगों का समस्या हल करें। और ऐसे ये पेंशन, जैसे पेंशन है और अपना कई फॉर्म आए हैं, सब दिए हैं और समाधान हो रहा है। और जैसे हमारे विष्णुदेव साय जी के सरकार जो सुशासन गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, उससे क्षेत्र में बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो समस्या है खाद को लेकर, हम लोगों द्वारा समझाया भी जा रहा है कि रासायनिक खाद को, रासायनिक जो कृषि है उसे कम करके ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ाने की सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। हमारे खाद बाहर से जो आते हैं, पब्लिकों को समझाया जा रहा है, उनकी शिकायत यही है। और सबसे ज्यादा शिकायत राजस्व विभाग में है, जो पट्टा अपना पट्टा का निराकरण है, ग्रामीणों का एक दूसरे में नामनीकरण है, जो

हो चुका है, एक दूसरे के नाम पर जमीन जा चुका है, उसमें परेशान है। और जल जीवन मिशन के तहत कुछ समस्याएं हैं जो कि हमारे ग्राम पंचायत गंजी में टंकी बन चुका है, सभी घरों में नलकूप पहुंच चुका है, लेकिन पानी की समस्या है। हमारे यहाँ बोर में पानी ही नहीं है, तो हमारे ग्राम पंचायत गंजी में ही समस्या है जो बाहर से पानी लाना पड़ेगा। इसमें कम से कम 20 से 30 बोर हो चुका है अलग अलग विभाग से, अलग अलग मद से, लेकिन पानी टंकी चला सके, जैसे गांव में पानी पेयजल की व्यवस्था कर सके, उस टाइप का पानी नहीं है। हाफ इंची पाइप, हाफ इंची कहीं पर एक दूसरे जगह निकला हुआ है जिसमें समस्या का निराकरण होता है, कुआं में डाल करके पानी का समस्या निपटाते हैं।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके हों या शहरी क्षेत्र, सभी जगह बड़े पैमाने पर जन समस्या निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण ही सुशासन की आधारशिला है। आम जन को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना ही राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रकरण राजस्व के हों या मनरेगा की लंबित मजदूरी के, समस्या बिजली पानी की हो या फिर आवश्यक प्रमाण पत्रों को बनवाने की, सुशासन तिहार में ये सब हो रहा है बिल्कुल आसानी से।

छत्तीसगढ़ में जो भी समाधान शिविर लगाए गए हैं, वे सब एक निर्धारित प्रक्रिया का कुशलता के साथ पालन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह में शिविर लगाए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में वार्ड क्लस्टर आधारित शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनका उद्देश्य है मौके पर ही आवेदन स्वीकार कर लाभ का वितरण करना। अन्य आवेदनों के निराकरण की समय सीमा 1 माह रखी गई है। इन शिविरों में शासन की योजनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

सुशासन बिहार अब बन गया है जन आंदोलन। इसकी एक वजह ये भी है कि सुशासन बिहार को पूरा का पूरा समाज एक साथ मिलकर मना रहा है। समस्या निवारण शिविरों में पहुंचकर लोग खुश हैं, क्योंकि उनकी बात सरकार सुन रही है और उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई भी कर रही है। इन दिनों लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। सरकार पहुंच जो गई है उनके द्वार तक। अब दूरियां मिट गई है, समाप्त हो रहा है शोषण और बढ़ रहा

का सुशासन त्योहार पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। इस त्योहार में पूरी हो रही है जन अपेक्षाएं। जनता बिना किसी भय और दबाव के सीधे तौर पर कर रही है सरकार से बात। लोकतंत्र में यही तो है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का राज। छत्तीसगढ़ की ये राज प्रणाली सुशासन त्योहार के रूप में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। अपने द्वार सरकार के आने की बात जोती जनता को अब मिल रहा है योजनाओं का लाभ, समस्याओं का समाधान और पूरा पूरा सम्मान। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलने वाले इस सुशासन त्योहार को समूचा राजतंत्र और सभी नागरिक मिलकर मना रहे हैं। सुशासन त्योहार पूरी पारदर्शिता, स्वाभिमान और शक्तिशाली व्यवस्था के साथ बढ़ रहा है उजाले की।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म रफ्ता रफ्ता द स्पीड से। आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की हैं। गीत लिखा है नवाब आरजू ने, संगीत सेन ब्रदर्स का है।

प्रादेशिक समाचार और प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हो रहे हैं, प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म आई हेट लव स्टोरीज से शफाकत अमानत अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। विशाल ददलानी गीतकार हैं, संगीतकार हैं विशाल और शेखर।

फिल्म आई हेट लव स्टोरी का गीत अभी आपने सुना शफ़ाक़त अमानत अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म आलू चाट से। जुल्फी गीतकार हैं, संगीतकार हैं और आवाज़ भी है जुल्फी की।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: फिल्म यारियां का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। इरशाद कामिल गीतकार थे, संगीतकार थे प्रीतम। आइए अब सुनते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर की ट्रैफिक अपडेट्स।
1: नमस्कार, दैनिक रेडियो कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर के साथ, मैं हूं उमाशंकर पांडे, आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सभी सड़कों के साथ ही शहर से बाहर भी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग सहित सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहन दौड़ रहे हैं। जिले का शेष भाग से इन सड़कों के माध्यम से यातायात संपर्क बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, आज के परिवेश में जब सभी सड़कों में विभिन्न प्रकार के वाहनों की कतार लगी हो, ऐसे में सुरक्षित चल पाना एक चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि हमें यातायात के नियमों की जानकारी हो और इस जानकारी के प्रति हम सभी की वफादारी हो। दोस्तों, हमारी नई पीढ़ी अर्थात हमारे बच्चे, इन्हें यातायात नियमों की जानकारी देना या इन्हें इन नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना हम सबका दायित्व है। शासन स्तर पर इन्हें इस दिशा में तैयार करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, किंतु परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है। बच्चा पहले सब कुछ अपने माता पिता से ही सीखता है। कहने का आशय यही है मित्रों कि आप हमेशा अपने बच्चों के सामने वही करें जिसका बच्चा भी अनुकरण करे। जैसे अधिकांश घरों में लोग दो पहिया वाहन से ही किसी न किसी कार्य से आना जाना करते हैं, अतः घर से दो पहिया वाहन की चाबी उठाने से पहले हेलमेट उठाएं और प्रयास करें इस हेलमेट को अपने बच्चे से ही मंगवाएं। परिवार के सदस्यों या मित्र, दो पहिया में तीन सवारी कभी न चलें। आप कार में हो या दो पहिया में, मोबाइल की घंटी बजते ही वाहन खड़ा करें और बातें करें, न कि वाहन चलाते हुए। इसे आपके साथ वाहन में आपका बच्चा भी देख रहा है। रेड सिग्नल के दौरान अंतिम सेकंड तक इंतजार करें और रॉन्ग साइड जल्दी के चक्कर में कभी न चलें, यह सोचकर कि सब चलता है, क्योंकि यह भी आपका बच्चा देख रहा है। अपने वाहन की गति हमेशा सीमित रखें, आपका यह प्रदर्शन बाल मन में अमिट छाप होगा, तब होगी आपकी और नई पीढ़ी की हर यात्रा।

0: मुनासिब और सुरक्षित।
1: श्रोताओं, कृपया एक सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल यानी awards.gov.in, awards की स्पेलिंग होगी awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म हीरो से, अरमान मलिक की आवाज में। गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं अमाल मलिक।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म एक मैं और एक तू से ऐश किंग की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य गीतकार हैं, संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

फिल्म एक मैं और एक तू का गीत अभी आपने सुना ऐश किंग की आवाज़ में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने का ये अंक यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

0: हूँ।
1: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
0: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
0: जी।
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
1: जी।
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: जय जेरापुर जय भारत।
2: जय जेरापुर जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह।
4: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
5: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
5: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
6: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
6: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
6: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
6: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
6: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
7: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
8: जोरावर सिंह राजा रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
9: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
0: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
9: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
0: देखिए निजाम साहब।
9: जी फरमाइए।
0: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
9: जी।
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
9: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
9: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
10: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम

0: यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
3: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
3: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
3: जो हुकुम सरकार।

0: ओम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
0: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 11:30 होने वाले हैं। अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

हाल क्या है जनाब जी। हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, अनोखी अदा। फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी, ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अ वेडनेसडे फिल्म से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजॉय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रालय में लेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इबोला को लेकर जारी एसओपी के बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ की ओर से भी इबोला संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे, जिसके बाद शाम को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का समग्र विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी हो गई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन को 9,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों ने कनेक्शन लगाने के नाम पर प्रार्थी से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। वहीं बेमेतरा में एसीबी ने जमीन के बटांकन और खाता विभाजन कर ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी को गिरफ्तार किया है। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कोलकाता हरियाणा में दबिश देकर आईपीएल में सट्टा लगवाने वाले 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों के पास से 17 लाख नकदी, 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान जब्त किए गए हैं। अकलतरा पुलिस ने पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक डाकपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर खाताधारकों के खातों में फर्जी तरीके से रकम निकालकर 19,21,000 रुपये के गबन और धोखाधड़ी का आरोप है। गौरतलब है कि पीड़ित खाताधारकों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला को आतंकवादी संगठन से संलिप्तता का डर दिखाकर अलग अलग खातों में 1,04,80,000 रुपये जमा करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों द्वारा ठगी के लिए प्रयुक्त 900 अलग अलग बैंक खातों का पता चला है। इन सभी खातों में कुल मिलाकर अलग अलग अमाउंट की राशि

0: कुल 30 लाख रुपए जमा है, जिसे होल्ड करवाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में नौतपा के पहले दिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, राजनांदगांव समेत 10 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में पहली बार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा, यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी, स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रालय में लेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।
2: विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं, जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया, जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और

0: युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज वो गीत जिनमें इंतजार, याद, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है।

आशा भोसले भूपेंद्र की आवाजों में ऐतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा जगजीत सिंह की आवाज में।

होठों सु छू लू तुम, मेरा गीत अमर कर दो। प्रेम गीत फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह की आवाज में इंदी वर्णी से लिखा था।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यह है विविध भारती, सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुरीला सफर। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफी सारे शब्द, काफी सारे गीत आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है, जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है। तुम पास हो या ना हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात। एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है। वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है। सपना बनकर तुम ही तो आए थे दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में। ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना।

मुझको ये जाने वफा तुम याद आए, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायनी ने इसे लिखा और रवि का संगीत था। और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप सब ने एक दूसरे का अभिवादन किया, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और उसके अलावा एक श्रोता हमें लिखते हैं, इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहां प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां है। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेमी युगल दिल को सहला देते हैं, तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कंपकपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती, बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सार जरूर अब तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की तीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है, जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक

बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा, कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी टीस उभरती है। ऐसे में जब खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है तो सिर्फ हवा नहीं होती, वो सिर्फ आती है पुरानी यादों का कारवां लेकर, अधूरे सपने और थोड़ा सा दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खूबसूरत संदेशों के लिए। फिलहाल इस गीत के साथ ही मैं आपको एक काम भी दे रही हूँ। जी हाँ, आपके लिए एक पहेली है, पहेली नहीं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं मुझसे, और वो ये है कि जब हम ये गीत सुन रहे थे, जब चली ठंडी हवा, तो तन को ठंडक देने के लिए इस झुलसाती गर्मी में बहुत से उपाय हैं, फ्रिज है, एसी है, पंखा है, बहुत कुछ है, लेकिन दिल की ठंडक और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए आप क्या करते हैं इस गर्मी में, आप मुझे बताएं। तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की ओर।

सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफर में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आजाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हम सफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं, और कुछ नया चीज देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत है जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंकी की तरह आता है।

और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियां पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं। ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल, और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान रखना, ध्यान करना बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफी लंबा मैसेजेस और काफी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, मेंटली इमोशनली, तो जरूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहां आप तक पहुंचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था, उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसे ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है। प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है। बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहां आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना रवि कवि माफ कीजिए कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत

बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में जो गीत हमने आपको सुनवाया उसमें जो नजर आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी, पिंकी कपूर, जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए, और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि खो जाएं हम, तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो जरूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन है, ये जरूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की जो सब बातें आज है वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मजा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आंखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आंखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में खयाम का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं ना। फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना। ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ

गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं, साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो, इंट्रो म्यूजिक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं, और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूं मैं अक्सर। वहां चीड़ के ऊंचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियां साए साए करती है, वो आवाज सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता, और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं। खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है, और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे, और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है, मुझे बताएं।

रात कल ये ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुड्ढा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर ये फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना? साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफर, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ, और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आज की त्रिवेणी में चलने की बातें। साथियों, चलती हुई हवा बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ चलना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है और सक्रियता की पहचान है।
1: बाजू।

चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वहीं जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन अबाध चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी जिंदगी चलती रहती है।

चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता, कई बार मन ही मन हम कहां कहां पहुंच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है, मन पर काई नहीं जमने देती बल्कि

मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से सवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार व्यवहार और विचारों को लगातार खंगालती रहती है। तभी तो कई बार लोग साथ ना मिलने पर भी अकेले ही चल पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यही तो जीवंतता है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों

0: लोग आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
2: आज 26 मई है ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई

0: लेता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है, मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफाई

0: वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साथी नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ अच्छा। जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: हाँ, ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी तो
1: क्या बात करने वाली है, आज
2: क्या बोलने वाली है।
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
2: देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया है तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी है खरीद के, राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर।
1: मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: नागनी मैम, देखिए नागनी जी, क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना, ये हर घर में होती हैं। कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीज।
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है कि भाई हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
2: बिल्कुल।
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें, क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं। और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है,
2: आनंद भी आता है, और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना,
1: भागदौड़
2: मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने को
1: अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी।
2: मतलब कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
2: तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने

0: बनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो
1: ओहो,
0: इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
1: हाँ,
0: कि
1: लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही हैं।
0: आप बता सकते हैं कि फलाना भी कान का कच्चा है।
1: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है। हमारे अपने घर में कुछ लोग, हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं, अरे भाई माँ, आपको पापा ने और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची हो, उसका मतलब।
0: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए, जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी है, और हमें भी पढ़ के अच्छा
1: अच्छा लगे।
0: लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: सुनते हैं
0: चलिए
1: ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा हाँ। खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत
0: खत
1: सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं, और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह

0: शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना
1: बिल्कुल
0: चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर
1: दी
0: जरूर दें, उसको
1: बिल्कुल
0: देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
1: बिल्कुल ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी
0: जी
1: है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है? आत्म
0: आत्म
1: सुधार।
0: सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी
1: हाँ,
0: कर
1: अपने
0: सकते
1: घर
0: हैं।
1: में हम पानी और बिजली को बचाएं। कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से
0: जी
1: लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहरों में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम
0: बिल्कुल
1: पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं, या कार
0: जी
1: चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी
0: बिल्कुल
1: लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखें। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं।
0: जी
1: और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूँ, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो
1: बिल्कुल
0: आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
1: बिल्कुल कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: वही
0: है?
1: बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
0: बहुत
1: है
0: सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने।
1: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए एक संदेश है, मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती ही वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल, तो सही कहा। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, मोबाइल और बच्चे। तो
1: बच्चे
0: हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं।
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं, मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा। तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
1: बिल्कुल
0: लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आचरही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना
1: बिल्कुल
0: अंदाजी जी हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना। तो ये
1: बिल्कुल
0: सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात, है ना।
1: है। और ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
0: जी
1: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती
0: बिल्कुल।
1: है
0: तो
1: ना।
0: चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉपक्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।
0: जी, और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं।
1: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
0: जी, और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल

0: क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉप क्लूज की स्थापना की और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉप क्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया।
0: जी, और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉप क्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉप क्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
1: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था, लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, CMO एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और CEO इंडिया अवार्ड 2016 में CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ।

0: कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं, वो ऐसा
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत
1: बिल्कुल,
0: बात
1: वो
0: है।
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते हैं।
0: विश्वास कर लेता
1: तो
0: है। तो
1: ऐसा
0: ऐसे,
1: नहीं होना
0: हाँ ऐसे
1: चाहिए।
0: कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं
1: बिल्कुल
0: कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है।
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए ना, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना।
0: सबसे बड़ी
1: कोई
0: बात,
1: दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पर
0: हाँ
1: जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं,
1: जी
0: लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो
1: जी
0: दमगम
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: आप
1: बात
0: खुद अच्छे बने, है ना, खरा
1: बिल्कुल
0: सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब
1: बिल्कुल
0: आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो

0: आपकी पना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है।
1: जी, और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई भी जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता
1: है। सबसे पहले तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं
0: दिगा
1: नहीं सकते, जिसे कहते हैं।
0: अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं, ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वहीं एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए।
0: मतलब गोपनीयता जो बातों की होती है दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं।
1: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना मतलब निकालने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है, ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी, सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजें। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुन
1: अच्छा, क्या बात है।
0: करके। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे के इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल,
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में।
0: बहुत अच्छा माहौल होता था
1: और छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है, तो कंघा और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है।
1: सादगी से वो जनवासा होता था, दिखावटी
0: नहीं होता। मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे। और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह के भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना, वो लड़की वालों को
1: वाले ही करते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल, आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ जनवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें।

0: होती हैं, लेकिन
1: बिल्कुल
0: जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी कई
1: बिल्कुल, वो
0: बार।
1: अपने हिसाब से देखिए सब
0: हाँ
1: लोग अच्छा ही करते थे,
0: बिल्कुल, और मन से
1: मन
0: व्यवस्था
1: से
0: होती
1: करते
0: थी।
1: थे, और
0: हाँ
1: जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और
0: हाँ
1: भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस
0: बिल्कुल,
1: तरह के भी उनको
0: रूठने
1: सुविधाएं।
0: मनाने की जो
1: हाँ
0: बातें भी बहुत होती थी,
1: बहुत
0: कोई नाराज हो
1: होती
0: जाता था
1: थी
0: उसको मनाया
1: बिल्कुल।
0: जाता था।
1: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
0: बिल्कुल सही कहा, इसलिए
1: तो
0: फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था, क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते
1: जी।
0: थे ना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे, समधी, दूल्हे के पिता, फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता है जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा
0: हाँ,
1: मजा आता था, लेकिन वो गाने
0: लेकिन
1: बहुत अच्छे
0: हाँ
1: थे,
0: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
1: जान होते थे। सही
0: एक
1: बात
0: श्रोता
1: है।
0: लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है, बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं, तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग, बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत
0: कर
1: करवाते
0: देते
1: थे।
0: थे।
1: बिल्कुल।
0: और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी, उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था, जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे, जिसे आज भी वो याद करते हैं।
1: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहां पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी दूर है, और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा,
0: नहीं
1: ये
0: खड़ा
1: सब
0: है,
1: भी चीजें
0: बिल्कुल
1: होती थी।
0: बिल्कुल,
1: और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
0: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना,
1: हाँ
0: हर चीज प्रोवाइड कराना,
1: बिल्कुल।
0: हर पूरा एक
1: और
0: जिम्मेदारी
1: बड़ा
0: बन
1: मजा भी
0: जाती थी।
1: आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूड़ी गरम क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं
0: मिल
1: परसा
0: रहा
1: जा रहा है।
0: है,
1: तो इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे
0: चूहलबाजी भी होती
1: चूहलबाजी
0: थी।
1: टाइप की भी
0: हाँ
1: होती थी, तो
0: बिल्कुल
1: बड़ा यादगार दिन है वो।
0: बिल्कुल।
1: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
0: हाँ अब
1: सब,
0: वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है,
1: हाँ
0: क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं
1: बिल्कुल
0: और अभी कई चीजें बदल गई हैं ना,
1: बदल गई।
0: वो
1: होटल में एक
0: चीज
1: साथ खाना खा
0: शादियां भी
1: रहे
0: होटल
1: हैं
0: में हो गई हैं,
1: जी
0: घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहां बैठकर गीत गाए जाते थे,
1: बिल्कुल,
0: पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए
1: सारे
0: जाते थे,
1: कार्यक्रम।
0: तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं
1: लेकिन मुझे
0: जिसका।
1: तो वो जनवासे वाले दिन बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल याद
1: तो
0: आते हैं।
1: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर
0: हाँ फिर
1: बाकी
0: बात
1: संदेश
0: करते हैं।
1: लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासी में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ। तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी। तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही
1: सही
0: कहा।
1: बात
0: हाँ,
1: है।
0: मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान शौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए।
1: बिल्कुल।
0: और
1: जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है। अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते जा रहे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक अलग
0: मजा था।
1: मजा था।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुराने दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा यह जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही
1: जी
0: निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी या आम के

0: बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी ये,
0: हाँ
1: तो वो तो किसी और का बगीचा है,
0: हाँ
1: अब
0: हाँ
1: आम लगे हैं,
0: हाँ
1: अब बराती लगे तोड़ने में, अब
0: हाँ
1: वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से
1: रोचक
0: जनवासी
1: किस्से
0: की
1: हो
0: दुनिया
1: जाते
0: से
1: थे।
0: जुड़े हुए हैं। बिल्कुल,
1: जी
0: आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं।
1: जी
0: और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: शबू महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा।
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज फिर से ताजा हो गए। ताजा तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने

0: क्या बात है बांसुरी की, इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती तो हम, आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक वो जो है, एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: अलग है, बांसुरी वादक
0: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत

0: अक्षोभ राग भी हैं। अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। अब बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है,
1: जी
0: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है।
1: और इन
0: उन
1: रागों में
0: पे
1: वाद्य वृंद
0: वाद्य
1: बनाना
0: वृंद बनाना, वो भी
1: और
0: उनके
1: भी बड़ा
0: चलन के
1: काम है।
0: आधार पे।
1: जी
0: अब सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
1: 80 लोग,
0: हाँ,
1: ये मायने रखता
0: अस्सी
1: है।
0: आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
1: नगीने हैं,
0: नगीने हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नी सा और SRGM, सारे गामा
1: अच्छा,
0: पा धा,
1: दोनों नोटेशन कर देते वो।
0: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे, वो हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे।
1: जी,
0: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे 3 भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम 3 भाई हैं और 2 म्यूजिक में हैं, 1 म्यूजिक में नहीं है। तो
1: जी
0: मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मुंबई इंडस्ट्री में
1: बुनियाद पक्की हुई है।
0: बुनियाद पक्की हुई एक तरीके से, बोल लीजिए वो एक ट्रेनिंग भी थी
1: जी,
0: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
1: मैं ये देख पा रहा हूं कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
0: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना
1: हाँ।
0: कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता
1: कौन कौन
0: आदमी।
1: सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है,
1: हाँ
0: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो तो
1: जी,
0: और भी बदमाश
1: और भी।
0: होता
1: तो
0: था।
1: आप क्या कारनामे करते थे?
0: हम लोग करते थे बचपन में काफी।
1: शर्मा रहे बता
0: हाँ, थोड़ा सा
1: रहे
0: शर्मार हो गया, बट हाँ, बदमाशी करते थे।
1: थे। बगीचों से आम चुराए, चोरी से
0: बहुत
1: फिल्में
0: चुराए,
1: देखी है।
0: बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल
1: ओ हो,
0: को भी थोड़ा परेशान किया है।
1: थोड़ा
0: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी।
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
1: अरे बाप रे। फिर
0: फिर पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो
0: आपने
1: खतरनाक
0: पकड़
1: वाला किया
0: लिया,
1: होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
1: जी जी
0: मैं
1: जी
0: बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने। इसको कर्मा बोलते।
1: अच्छा। वापस आ गया।
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम में। हाँ,
1: जी
0: तो बदमाशी की है सर।
1: हाँ।
0: हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको
1: जी
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था,
1: अच्छा।
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहां के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: जी,
0: बहुत स्ट्रिक्ट
1: और जमाना भी सख्ती का
0: थे,
1: था।
0: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे
1: कहीं और पहुंच
0: नहीं।
1: गए।
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए,
1: जी
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं बचपन में।
1: हाँ।
0: और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चला।

0: गया
1: तो क्या
0: तो
1: हाल
0: बाप
1: होगा?
0: रे, दुनिया अलग और मैं
1: कितना
0: अलग।
1: सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था,
1: जी
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ।
1: जी ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी
0: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी।

अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था

0: आया, बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है,
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: ये मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए उनकी एज थी 104 साल।
1: ओ हो, गजब
0: ही वॉज अ मिलिट्री गाय,
1: जी
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और
1: जी
0: इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके,
1: ओके
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के। और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको उसने छुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, ही सीरियसली इंजर्ड,
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने।
1: फौज में होते हुए भी।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह,
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी,
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में,
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है,
1: जी
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ माउथ होल के पास,
1: जी बिल्कुल,
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से,
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और
1: जी
0: यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में, हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है
1: जी
0: नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं,
1: जी
0: पंचम हम
1: बिल्कुल
0: होल यूज नहीं
1: यूज
0: करते।
1: नहीं करते हैं।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: अद्भुत बांसुरी,
1: अद्भुत
0: उनका
1: बांसुरी
0: आशीर्वाद
1: है
0: है,
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी,
1: वाह,
0: हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था, 4 बजे हम तीनों को उठाते थे वो, हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के, सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है वो, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है, ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था,
1: जी।
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुरों से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह,
0: तो सा स रे गा मा पा धा नी सा नी रा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: वाह वाह वाह वाह,
1: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
0: बिल्कुल
1: और
0: बचपन
1: वो
0: की
1: चार
0: नींद,
1: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
0: बिल्कुल
1: उस वक्त जगा दिया जाता था, दिल्ली, आई बॉर्न बॉटम इन दिल्ली,
0: जी,
1: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
0: खतरनाक जी।
1: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है, और फिर

0: बाहर निकलना है घर से एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम वट एवर. ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ.
1: जी जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया. 7:30-8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए. 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके. उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे.
1: अच्छा
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे.
1: अरे गजब.

0: नहीं, फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल वैसा था।
1: वाह वाह,
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके, दिन भर आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से, और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, वो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा,
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से ही डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12, 1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आ रही, नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4, 5 बजे तक,
1: ओहो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी रात जाग गए,
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल थे। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज करते
0: अनुशासन से,
1: हुए,
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी जिंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली, मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए, कई बार ऐसा होता है प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो, जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल।
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है
1: बिल्कुल।
0: ये, और मैं एक ही हैं। मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ, और एक साज की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के साज की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस साज से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं, और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुनें आपकी पसंद
0: जी
1: का।
0: मैं

0: दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूं
1: जी
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी जी
0: इसको ऐसे बजाते हैं।
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ
0: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं।
1: जी जी जी।
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
1: जी।
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का होल है
1: जी
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरीके,
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग
1: जी।
0: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूं
1: जी, बिल्कुल।
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का
1: हाँ,
0: नोट है,
1: बिल्कुल है,
0: ठीक है
1: आखिर में,
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हमने तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है। तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए,
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान है
1: जी,
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले। जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही।
0: तो हमने तो बचपन से देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, मैं जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता।
1: कोई बात नहीं, तो आप
0: इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता
1: जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
0: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर मेरे हमारे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात।
0: हाँ ये मेरे फ्लूट किट में रहता है
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है
1: जी,
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है,
1: हाँ है,
0: है ना
1: जी।
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का
1: जी जी, जी।
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं बेटे भी हैं शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं समझ में नहीं आता है।
1: तो वो बिल्कुल सही,
0: वो
1: है।
0: देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ हाँ।
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ,
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं।
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए?
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी,
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है,

0: अर्जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है।

0: खाता
1: शिशु
0: रहता है,
1: होता है जब वो।
0: शिशु होता है वो। तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
1: जी
0: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
1: वाह वाह वाह,
0: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
1: बाप रे, इतनी कम उम्र में
0: हाँ, वही
1: परफॉर्मेंस।
0: राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया। तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
1: जी,
0: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ
1: वो
0: बजाया,
1: उम्र भी बहुत छोटी थी
0: हाँ काफी छोटी थी। फिर
1: जब
0: उसके
1: आप।
0: बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
1: अरे बाप रे,
0: हाँ
1: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक
0: सर,
1: गजब।
0: वो ये आशीर्वाद है।
1: जी,
0: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या करते हैं उनके
1: जब
0: सवाल भी
1: पीने
0: वैसे
1: जाई
0: जी
1: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
0: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
1: जी
0: उस वक्त। म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
1: जी
0: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं आई मीन रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं। मेरे माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक
1: बिल्कुल
0: पारे, गुजिया, घर के में मिठाई। तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
1: और वो ठेठ बनारसी।
0: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे, और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
1: गजब।
0: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता था, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
1: जी,
0: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता,
1: हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
0: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना,
1: जी
0: वो तब
1: जी
0: का सुना हुआ है।
1: गजब।
0: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक वो,
1: हुली आई रे कन्हाई।
0: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
1: जी
0: वैसा था। तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
0: हाँ,
1: फिल्म
0: रजिया
1: का
0: सुल्तान,
1: गाना।
0: तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल
0: ओ हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम,
1: जी
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा,
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है।
0: एंड आई वॉज दी बेस्ट प्लेयर
1: अरे
0: इन द
1: वाह,
0: टीम।
1: तो
0: यस,
1: आप बॉलर थे या आप
0: मैं बॉलर ज़्यादा
1: ऑलराउंडर
0: बेहतर
1: थे?
0: था,
1: अच्छा,
0: ऑलराउंडर ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
1: क्या बात है,
0: था
1: तो फास्ट बॉलर थे।
0: फास्ट बॉलर लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सर बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट

0: में दिख जाता है और कुछ
1: जी, लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूं ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर बस
0: फिर खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं।
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो,
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जग गया कहाँ।
1: हाँ
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले
1: बस
0: ही गए बस।
1: जुनून के तहत खेल
0: हाँ,
1: रहे हैं।
0: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: उनके
0: जैसे
1: मुकाबले।
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है और उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो
1: ये
0: मजाक।
1: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती
0: हाँ,
1: होगी।
0: वो महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
1: इशारा
0: दिया था,
1: किया।
0: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे,
1: अच्छा, ये कोर्स से बाहर का सवाल है।
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस,
1: फिर वापस ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं।
0: हाँ, स्टूडियो चलते हैं ना
1: स्टूडियो
0: तो
1: चलते
0: मजा
1: हैं। आकाशवाणी
0: आता
1: के गलियारों से जुड़ी यादें बताई। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: हाँ, वहां पे
1: उनके
0: क्या
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो।
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ
0: जब हम उनके साथ जाते थे, तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था तो उनके साथ पूरा, अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए, तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे, तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है,
1: हाँ, कंपोजिशन।
0: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर, कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ, तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे, उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था, वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी,
1: जी
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें हैं, ये आप घर पे नहीं सीख सकते,
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना, और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर में, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो,
1: जी,
0: तो पूरे एक हमारा चक्र घूम
1: चक्कर
0: जाता
1: लगता
0: तो वहां फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने, जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो, और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप

0: सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए।
1: इतने सारे लोगों
0: के बीच में तो उनकी वो एनर्जी और वो इंप्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत।
0: वही था वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का।

0: जयपुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 20 है। ये पूर्णपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, बरवाली, बरडांड, दातीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूरचुंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 135 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभयारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा,

सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्यिकी में आकाशवाणी बिलासपुर में आयोजित हिंदी कार्यशाला में हुई विशेष परिचर्चा के संपादित अंश। परिचर्चा का विषय है भारत की सांस्कृतिक साहित्यिक और लोक विरासत को सहेजती संवारती और प्रसारित करती आकाशवाणी। प्रतिभागी हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा। रिकॉर्डिंग सहयोग गौरी शंकर कौशिक का और संपादन और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

साहित्यिकी के आज के इस अंक में शामिल सभी श्रोताओं को सुप्रिया का नमस्कार। श्रोताओं, भारत की वाचिक और ज्ञान परंपरा को सहेजने, संवारने और उसे जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी का योगदान अतुलनीय रहा है। हमारे साहित्यिक सांस्कृतिक

0: और लोक विरासत का संप्रेषण और संरक्षण जिस खूबसूरती से आकाशवाणी ने किया है, उसी का परिणाम है कि आज इन 90 वर्षों की अपनी यात्रा में आकाशवाणी भूत, भविष्य और वर्तमान को बड़े ही संस्कारित ढंग से जोड़े हुए है। आकाशवाणी बिलासपुर में आज इसी विषय पर हिंदी कार्यशाला में हमने प्रबुद्ध वक्ताओं को आमंत्रित किया और उनके सारगर्भित विचारों के संपादित अंश आज साहित्यिकी में आप तक पहुंचा रहे हैं। लीजिए पहले सुनिए भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजती, संवारती और संप्रेषित करती आकाशवाणी, इस विषय पर थावे विश्वविद्यालय के कुलपति और छत्तीसगढ़ के राज्यभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने साहित्यकार डॉक्टर विनय कुमार पाठक के विचार।
1: आकाशवाणी के स्थापना का ये 90 वर्ष हो रहा है और बिलासपुर आकाशवाणी केंद्र लगभग 35 वर्षों की यात्रा को हम देख पा रहे हैं। मैं लगभग 6 दशक से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। आकाशवाणी से जुड़कर 1966 में अपनी वार्ता और कविता पाठ कर चुका हूँ रायपुर से, और मुझे ख्याल है हम लोग बस से जाते थे और 8-10 किलोमीटर पहले रायपुर के बिल्कुल किनारे पे, शायद खमतराई पे हम लोग उतरते थे, वहीं रिले केंद्र था और वहीं पे हम लोगों का ध्वन्यांकन का कार्यक्रम होता था और फिर हम लोग किसी बस से बिलासपुर आ जाते थे, चेक हमको मिल जाता था। तो कहने का आशय यह है कि एक ओर मैं छत्तीसगढ़ी पत्रिका भोजली, धान का कटोरा, पाक्षिक के संपादन में निरत था, प्रयास प्रकाशन के कार्यक्रमों में, और दूसरी ओर मुझको आकाशवाणी से कविता पाठ और वार्ता का जो कार्यक्रम मिलता था, तो मुझको आकाशवाणी ने पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया, या कहे कि लिखना और पढ़ना ये दोनों का परिष्कार करने का जो काम है वो आकाशवाणी ने किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक विधा पर लिख सकता है, दो विधा पर लिख सकता है, लेकिन चूंकि मैं उस समय छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता और साहित्य से जुड़ा था, इसलिए मुझको रूपक लिखने के लिए, संपादन करने के लिए, चिंतन के लिए और विविध हिंदी और छत्तीसगढ़ी कार्यक्रमों के संचालन के लिए, संपादन के लिए मुझको विषय दिए जाते थे, तो उसके लिए मैं तैयारी करता था। मैंने सीखा कि रूपक कैसे बनाते हैं, मैंने सीखा कि लोक मंजरी कार्यक्रम की उद्घोषणा किस तरह की जाती है, किस तरह के कार्यक्रम संयोजन किए जाते हैं, ये सब कुछ मैंने जो सीखा वो आकाशवाणी की ही देन मैं कह सकता हूँ। जिस समय हम लोग लिख रहे थे, आकाशवाणी में जा रहे थे, बहुत कम लोग थे और आकाशवाणी की एक मर्यादा थी कि यदि गलती है हमारी कुछ तो वहाँ पर जो विशेषज्ञ होते थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव या कोई भी व्यक्ति, वो उसको सुधारते थे। और कुछ पंक्तियाँ ऐसी थी जो धर्म पर या शासन पर कोई कमेंट हो, उस तरह की बात हो, तो उसको वो चिन्हित करते थे, विलोपित कर देते थे और हमको बताते थे कि भाई आप बैठ के आप एक पेज में ये 3 पेज में लिखे उसको लिखिए। तो वही हमारी तैयारी होती थी। इस तरह एक साहित्यकार के नाते, एक रिसर्चर के नाते भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आप देखिए साहित्य में गुरु परंपरा नहीं है, वही आदमी लिख लिया वही सुनाता है, 10 गलतियां हैं, सुधारता नहीं और वो गलतियां होती हैं और इस तरह वो अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाता। लेकिन वो काम बिना गुरु के हुए प्रकारांतर में वो काम आकाशवाणी में होता था। तो ये संस्कार हम लोगों को बचपन में लगभग 6वें दशक पे सीखने को मिला और हमारी हिंदी हो या छत्तीसगढ़ी हो, ये जो अच्छी हुई तो हम उसमें सारा श्रेय आकाशवाणी को देते हैं। दूसरी बात आपको बताऊं कि उस समय जब हम आकाशवाणी में आते थे और उसके बाद यदि हम बिलासपुर में कहीं घूमने निकल गए तो 10 लोग हमको बोलते थे कि हम आपको सुने हैं, और कोई कविता की एक पंक्ति कोई गुनगुनाता था तो लगता था कि आकाशवाणी में जाना हमारे प्रतिभा का सही मूल्यांकन है। तो जन जन तक पहुंचने का जो काम है ये आकाशवाणी से हमने देखा। चूंकि संस्कृति से भी मेरा जुड़ाव रहा, चंदेनी गोंदा में बिलासपुर के 3 साहित्यकारों के गीत थे जब प्रारंभ हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम था दाऊराम चंद देशमुख जी का, तो उस समय बिलासपुर में विप्र

जी प्यारलाल गुप्त और मेरी तीन लोगों की कविताएं उस समय प्रसारित हुई थी। मेरी कविताओं का जब आकाशवाणी में प्रसारण हुआ चौपाल में, और उस समय सुर सिंगार ये दोपहर को आता था और उसमें फरमाइशी कार्यक्रम, तो बिलासपुर के भी कई कलाकारों ने मुझसे संपर्क किया। अमर ज्योति वर्मा बहुत पुरानी गायिका थी, लखन देवांगन ये सब अब शांत हो गए हैं, त्रिवेणी बाई ठाकुर, इन लोगों ने कहा कि भैया आप वहाँ जाते हैं तो हमारा भी कार्यक्रम होना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ आकाशवाणी डायरेक्टर से बात किया तो उन्होंने ये कहा कि बिना उन लोगों के ऑडिशन के हम लोग नहीं ले सकते, हाँ यदि अच्छे हैं तो हम वहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसे मैंने कई कार्यक्रम किए लोकमंजरी के और ऐसे कलाकारों को मैंने लिया, लेकिन डायरेक्टर साहब में इतनी पहचान थी कलाकारों की, जो अच्छे कार्यक्रम थे उसको लोकमंजरी या चौपाल के कार्यक्रम में सुनाते थे, और इस तरह वो कलाकार भी बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि रेडियो ने उस समय यहाँ के साहित्यकारों को, यहाँ के संस्कृति धर्मियों को, यहाँ के विचारकों को तलाशा, एक मंच दिया। तो ये आकाशवाणी में हमने जो देखा, एक परिवार के तरह प्रेम जो है उमड़ता था। रायपुर में शुरू से ही मैं काफ़ी समय से जुड़ा रहा, बाद में बिलासपुर आया तो यहाँ भी हमने देखा कि भले ये छोटा रेडियो स्टेशन है लेकिन यहाँ के लोग भी समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो सचमुच आकाशवाणी की दुनिया में जाने पहचाने हैं उनको भी बुलाते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, और जो नए लोग हैं प्रतिभाशाली लोग हैं उनको भी प्रोन्नत करते हैं। तो एक अच्छी परंपरा हमने बिलासपुर में भी देखी, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में हो, हिंदी या छत्तीसगढ़ी भाषा के क्षेत्र में हो। तो ये काम जो आकाशवाणी का हो रहा है ये अपने आप में अनोखा है। चौपाल का मैं आपको एक उदाहरण दूं, उस समय जब जीवन प्रसारण चौपाल पे शुरू हुआ तो मुझको बुलाया गया था, उन्होंने कहा था कि आप डरिएगा मत, बीच में कहीं चूक भी होगी तो चलेगा। तो हमने बहुत तैयारी की और तैयारी करके हम गए आकाशवाणी में जाना, इसका मतलब है कि 10 बार जब तक हम तैयारी ना करें, हम उसको पढ़ें या देखें लेकिन हमको तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो ये आकाशवाणी ने हम लोगों को सिखाया कि कहीं आप प्रोग्राम देते हैं तो आप अप टू डेट रहिए, और यदि कोई प्रश्न पूछता है तो आपको उत्तर भी देना है, उसके लिए भी आप तैयारी करिए। इसलिए पढ़ के तैयारी करके ही हम लोग वार्ता में जाते थे और इसीलिए हम सफल भी होते थे, हमको लोग पूछते थे। तो ये मैं आकाशवाणी की बात बताया। चौपाल में जब छत्तीसगढ़ी की शुरुआत हुई तो आपको बताऊं कि हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर विमल पाठक, ये उस समय के बहुत पहले जो एक दो अनाउंसर थे उस समय के रायपुर के उद्घोषक थे, और बरसाती लाल जो केशव प्रसाद वाजपेयी बरसाती भैया के नाम से चौपाल में छत्तीसगढ़ी बोलते थे, और उनकी छत्तीसगढ़ी का जो उच्चारण है, लहजा है, उससे ही लोग उनको पहचानते थे, इतने प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने बड़े भाई साहब को कहा कि भाई तुम भी तो छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार हो तो चलो हम दोनों मिल के चौपाल को छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम में दें। तो सुगंधी भैया के नाम से बड़े भाई साहब ने भी साल डेढ़ साल दो साल जब तक वो रहे आकाशवाणी में उन्होंने उस दायित्व को संभाला। बाद में फिर आकाशवाणी से हमारा कुछ इस तरह का संपर्क हुआ कि वहाँ पे लोक संगीत में जो ध्वन्यांकन होता है तो मैं कई सालों तक उसमें निर्णायक के रूप में, आकाशवाणी के सलाहकार के रूप में भी गया, लेकिन मैंने ये पाया कि आकाशवाणी का एक जो मॉडल है, एक प्रारूप है, एक प्रादर्श है, तो यह आकाशवाणी की अपनी एक विशेषता है, और इस विशेषता को चाहे वो कलाकारों के चयन प्रक्रिया में हो, चाहे साहित्यकारों को बुलाना हो। अब जैसे मैं आपको बताया कि हमने चिंतन जब मैं शुरू में लिखा तो उनको भेजा तो मुझको फोन आया कि भाई इस तरह के विषय आप मत लिखिए, चिंतन में जो समसामयिक संदर्भ है, भले पुराने विषय को आप जोड़िए तो समसामयिक संदर्भों को लेकर आप नहीं लिखेंगे,
तो हमने उनको बताया कि भाई स्वामी आत्मानंद

0: जी और इनके तो उसी तरह के चिंतन आते हैं। तो बोले देखिए उनसे तुलना मत करिए, उनको तो हम उसी ढंग से बुलाते हैं, उनका एक अलग माप है, लेकिन आप एक साहित्यकार हैं तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपकी चिंतन जो है वो परंपरा भी है तो प्रगति के साथ उसका सामंजस्य होना चाहिए। पुरानी चीजें हैं तो आज के संदर्भ में उसको समीकृत करके मूल्यांकन करें तभी ठीक होगा। तो इस तरह हमको प्रेरणा मिली कि पुरानी बातों को हम उठा के कैसे आज के संदर्भ में प्रस्तुत करें। तो ये चिंतन की नई जो प्रवृत्ति है वो विकसित हुई, तो इसमें भी उन लोगों ने हमको बहुत कुछ सिखाया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आज बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं, बात भी करते हैं कि अब टीवी आ गया और दृश्य काव्य के सामने श्रव्य काव्य या श्रव्य शैली का क्या महत्व है। ठीक है, अपने ढंग से वो उनकी बात ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए 5 साल 10 साल तक उसकी लोकप्रियता बढ़ी, आज क्या हंस रहे हैं। आज उस तरह की जो उबाल जब आता है तो वो बहुत जल्दी नीचे भी गिरता है उफान, तो वही स्थिति है। इसलिए आज भी श्रव्य शैली का महत्व अधिक है दृश्य शैली से, क्योंकि दृश्य शैली आपको जो दिखाएगी फिर आपकी कल्पनाशीलता को वहीं विराम कर देगी, फिर आप चिंतन नहीं कर सकेंगे, बस जो देख रहे हैं वही राम है वही सीता है। लेकिन जब आप आकाशवाणी में राम सीता की बात करते हैं तो जो आप कल्पना करेंगे, जो आपकी कल्पना शक्ति है उसी के आधार पर राम, तो जितने श्रोता हैं उसके आधार पर राम और सीता होंगे, उसके आधार पर वो कल्पना बनेंगे। तो कल्पनाशीलता बनना, मौलिकता की रक्षा करना, सृजनात्मकता की ओर उन्मुख होना, ये आकाशवाणी की जो श्रवण जो शैली है उससे हमको मिलती है। अब देखिए पहले के लोग कथा सुनाते थे, तो एक आदमी बैठा है और सुन रहे हैं सब लोग, तो वही शैली श्रवण शैली जो लोक कथात्मकता की है उसी को आकाशवाणी ने भी लिया। मैंने कहा ना चौपाल नाम कितना सार्थक है कि चौपाल में एक आदमी बैठता है और सब लोग सुनते हैं ध्यान से, उनके ही मन की बात कहता है, उनके ही मन की उत्सुकता को जगाता है। तो ये आकाशवाणी ने जो संस्कृति साहित्य कला के क्षेत्र में जिस ढंग से उसने एक वातावरण बनाया और आम जनता को जोड़ा, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आकाशवाणी ने एक संस्कारी श्रोता भी दिए, एक परिवार का वातावरण भी दिया, और वो सब दिया जो मनुष्य अपनी रुचि प्रवृत्ति के अनुसार चाहता है। आप देख लीजिए बालकों के लिए अलग कार्यक्रम, महिलाओं के लिए अलग कार्यक्रम, सामान्य कार्यक्रम तो होते ही हैं, इस तरह सभी समुदाय को लोग को पूरा स्पर्श करते हुए विविध कार्यक्रम। और मैं ये मान के चलता हूँ कि वो हम लोगों के बीच एक वैचारिकी एक संवाद स्थापित करने का कार्यक्रम है, और वह जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो आदिम स्थिति है उसी का ही एक विकसित और प्रयोगवादी या प्रगतिशील रूप आकाशवाणी है। और हम आज 90 वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, पूरा कर रहे हैं, 8 जून को पूरा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आकाशवाणी की जो अपनी सर्वकालिकता सर्वव्यापकता है इससे हम कोई इनकार नहीं कर सकते, और हम चाहते हैं कि आकाशवाणी के इस आयोजन में हम सब मिलकर श्रोताओं का जो इससे जुड़े हुए कलाकार हैं साहित्यकार हैं और जितने भी तकनीशियन हैं इन सब के एक पारिवारिक माहौल को स्वरूप दे सकें, एक नया स्वरूप दे सकें, और नए समाज के निर्माण में जो भारतीय ज्ञान परंपरा की अस्मिता सुरक्षित रहे उस ढंग का प्रयास यदि हम उसको आगे बढ़ा सकें तो ये जो हमारा 90 वर्ष का कार्यक्रम है वो सफल होगा।
1: साहित्य और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण में आकाशवाणी के योगदान के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे डॉक्टर विनय कुमार पाठक। और आइए अब सुनते हैं लोक साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में आकाशवाणी के योगदान पर प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा के विचार।
2: आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने जा रही है, ये 9 दशक उपलब्धियों एवं रचनात्मकता से परिपूर्ण रहे हैं। इन 9 दशकों में आकाशवाणी की जो उपलब्धियां और प्रदेय हैं वे अतुलनीय

अनुपेय है। आकाशवाणी मात्र समाचार, संवाद और मनोरंजन प्राप्त करने का साधन नहीं है, वरन राष्ट्र के निर्माण, विकास एवं व्यवस्थापन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। जहाँ तक प्रश्न लोक साहित्य का है, लोक साहित्य को स्थापित करने में, सहेजने में और संवारने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज से 100 साल पहले हमारे देश में लॉर्ड मैकाले की नीतियों के कारण लोक साहित्य को गंवारों, ग्रामवासियों का अनगढ़ अशिष्ट साहित्य माना जाता था। विद्वानों द्वारा इसकी घोर उपेक्षा की जाती थी। यहाँ तक कि कई लोक गीतों को अश्लील कहकर उसे सार्वजनिक रूप से गाने की अनुमति भी नहीं थी। आज जिन कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो रही है, आज से कुछ साल पहले तक तो उनका नाम भी कोई नहीं जानता था। यह आकाशवाणी का प्रदेय है कि उसने सुदूर ग्रामीण वनवासी इलाकों के कलाकारों को न सिर्फ खोज कर निकाला, वरन उन्हें परिष्कृत कर देश दुनिया को उनकी अद्भुत कलाओं से परिचित कराया। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी की स्थापना संभवतः सन 60 के दशक में हुई। यद्यपि इस अंचल में लोक साहित्य का प्रचलन आकाशवाणी की स्थापना से बहुत पहले से था, तथापि आकाशवाणी की स्थापना के बाद उसने उत्कर्ष और परिपक्वता के नए सोपानों का स्पर्श किया। इस शताब्दी के पूर्वार्ध तक इस अंचल के लोक साहित्य एवं संस्कृति की यात्रा की पृष्ठभूमि में जो प्रवृत्तियां अंतर्निहित रूप में विद्यमान रही थीं, वे आकाशवाणी की स्थापना के बाद एक व्यापक धरातल पर उभरने में समर्थ होती गईं। सांस्कृतिक परिदृश्य से जुड़ी लोक साहित्य एवं संस्कृति के विकास का पथ प्रशस्त होता गया। परिवर्तित परिवेश का एक लाभ यह हुआ कि अंचल का लोक साहित्य और संस्कृति ने अपने मौलिक स्वरूप को कायम रखते हुए अपनी स्तरीय गुणवत्ता को नए आयामों से विभूषित किया। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी की स्थापना के बाद से लोक साहित्य का दायरा बढ़ता गया है। छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह नगरीय एवं पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से मुक्त है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ के आदिवासी एवं ग्रामवासी अपनी संस्कृति और साहित्य के प्रति जागरूक और प्राचीन तथा परंपरागत मान्यताओं के प्रति अत्यधिक श्रद्धा की भावना रखते हैं। आकाशवाणी की स्थापना के पूर्व अर्थात सन 60 के दशक के पूर्व छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य ग्रामीण अंचलों तक सीमित था। कभी कभी गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव के अवसर पर लोक नाट्य गम्मत एवं लोक गीतों की प्रस्तुति हो जाती थी, किंतु वह सीमित थी। आकाशवाणी की स्थापना के बाद लोक कलाकारों द्वारा लोक गीतों एवं लोक नाट्य गम्मत की प्रस्तुति ने जन सामान्य एवं प्रबुद्ध जनों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। लोक साहित्य के 6 प्रमुख तत्व माने गए हैं: लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक वार्ता एवं लोक सुभाषित या मुहावरे। लोक गीतों को लोक साहित्य का प्राण तत्व कहा जा सकता है। विश्व का जितना भी साहित्य उपलब्ध है उसमें आपको गीत तत्व की ही प्रधानता प्राप्त होगी। वन प्रांतरों में झरझर करती निर्झरणी की कलकल निनाद, कोयल की मधुर कूक, पक्षियों की कलरव, वृक्षों की टहनियों एवं झाड़ियों के झुरमुट से बहती संगीतमय हवाएं आदि मानव को राग एवं लय की प्रेरणा से सदैव संपृक्त करती रही हैं। शहरों से दूर वन प्रांतर में सरिता की कलकल और मस्ती भरी चाल से को निरख कर लोक गीतकार गायक प्रकृति के उसी स्वरूप में तदाकार तन्मय होकर संगीत की तद्वत स्वर लहरी उच्चारित करता है। वातावरण मादक हो जाता है। लोकगीत और लोक संगीत प्रकृति से सामिप्य और जनजीवन से जुड़ने का सूत्र है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि ईंट पत्थर के प्रेमी विद्वान यदि धृष्टता न समझें तो जोर देकर कहा जा सकता है कि ग्राम गीत का महत्व मोहन जोदड़ों से भी कहीं अधिक है। मोहन जोदड़ों, सरीखे, भग्न स्तूप ग्राम गीतों के भाष्य का काम दे सकते हैं। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना काल से ही इस तथ्य से भली भांति परिचित था। यही कारण है कि आकाशवाणी रायपुर ने संध्याकालीन कार्यक्रम चौपाल ने छत्तीसगढ़ी लोक गीतों को प्राथमिकता प्रदान की। परिणाम स्वरूप न सिर्फ जन जन में लोक गीतों की लोकप्रियता बढ़ी, वरन अनेक राष्ट्रीय स्तर के लोक गीतों के गायक जैसे डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर, धरमलाल कश्यप आदि ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की।
मुझे भली भांति याद है कि आकाशवाणी के प्रसारण

के बाद मात्र ग्राम वासियों के कुछ कंठों तक सीमित रहने वाला लोकगीत बच्चों तक की जुबान में चढ़ गए। उदाहरण स्वरूप 60-70 के दशक में आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाली छत्तीसगढ़ी लोकगीत ददरिया की ये पंक्तियां देखिए। चनाकेदार राजा, चनाकेदार रानी, चनाकेदार गोंधली कड़कत है वो, टुराहे पर बुधिया, होटल में भजिया झड़कत है ना। इसके पहले नहीं जानते थे, पर ये गीत के बाद से जो है बच्चे बच्चे की जुबान में यह ददरिया गीत जो है चढ़ गया। इसी प्रकार बाद के दिनों में अपनी स्थापना के उपरांत छत्तीसगढ़ की अन्य आकाशवाणियों ने भी लोक गीतों को प्रमुखता प्रदान की। इसके अंतर्गत मनोरंजनात्मक गीतों के सिवाय छत्तीसगढ़ी भजन, धार्मिक गीत, संस्कार संबंधी गीत, सुआ, कर्मा, भोजली, गौरा, बांस, देवार, जवारा, बारामासी की प्रस्तुतियां समय समय पर आकाशवाणी के केंद्रों द्वारा अनवरत प्रसारित होते रहे हैं। लोक साहित्य की दूसरी महत्वपूर्ण विधा है लोक कथा। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से ही लोक कथाएं भी अस्तित्व में हैं, क्योंकि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की मनुष्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कथा के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला। एक तरह से मनुष्य का संपूर्ण जीवन कथाओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। बचपन में दादी नानी की कहानियां, किशोरावस्था में स्कूल की पुस्तकों, सहपाठियों और गुरुजी से सुनी कहानियां, बड़े होने पर मनोरंजनात्मक कहानियां और वृद्धावस्था में आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियां। आकाशवाणी ने लोक गीतों की भांति ही लोक कथाओं को भी वही महत्ता प्रदान की। परिणाम स्वरूप अनेक लोक कथाएं जो पहले कुछ लोगों तक सीमित थी का विस्तार हुआ और व्यापक स्तर पर जनमानस में इसका प्रचार प्रसार हुआ। लोक साहित्य का अगला प्रमुख स्तंभ है लोक गाथा। लोक गाथा में गीत और कथा तत्व दोनों का समावेश होता है। इसे हम कथात्मक गीत अथवा गीतात्मक कथा भी कह सकते हैं। लोक गीत यदि हिंदी गीति काव्य के समान लघु आकार के होते हैं तो लोक गाथा प्रलंब गीत या प्रबंध काव्य या महाकाव्य की भांति दीर्घाकार होते हैं। लोक गाथाएं चूंकि लंबी होती हैं अतः सामान्य जनों द्वारा इसे याद रख पाना कठिन होता है, किंतु इसमें कहानी एवं गीत संगीत का समावेश होने के कारण काफी रोचक होती हैं एवं श्रोताओं द्वारा काफी तन्मयता से सुनी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ जातियों एवं परिवार द्वारा लोक गाथा गायन का कार्य वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा है। यह उनके जीविकोपार्जन एवं आय का प्रमुख साधन भी है। इसमें देवार, पठारी एवं गोसाई बाबा समुदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ी में लगभग 40 से अधिक लोक गाथाएं प्रचलित है, जिनमें ढोला मारू, लोरिक, अहिमन रानी, सरवन, पंडवानी, भरथरी, गोपी चंदा, काम कंदला, लीलागर, दसमत कैना, बिलासा केवटिन, फूल वासन, देवी गाथा, जयदेव का पवाड़ा, मोहरी के मोल, राजा कल्याण साय की गाथा, रसालू, गोपल्ला गीत, फूल कुंवर आदि की गाथाएं अत्यंत लोकप्रिय और प्रचलित हैं। लोक साहित्य की अन्य विधाओं की भांति लोक नाट्य भी अनादिकाल से अस्तित्व में है। शिशु प्रायः अपने से बड़ों की नकल करके ही अच्छी बुरी आदतों को अपने व्यवहार एवं जीवन में उतारता है। अतएव नाट्य के प्रति मनुष्य में जन्म से ही स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व अधिक है, क्योंकि यह सामूहिक कला है। इसमें लोक साहित्य एवं लोक कला के सभी तत्व यथा कथा, गीत, संगीत, संवाद, अभिनय, नृत्य एवं मंच सज्जा का समावेश होता है। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य की परंपरा भी अत्यधिक प्राचीन है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्यों में नाचा गम्मत, रहस, रामलीला, रतनपुरिया गम्मत आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय विधा नाचा गम्मत है। इसमें प्रस्तुत किए जाने वाले प्रहसन में हास्य व्यंग और मनोरंजन के सिवाय सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को भी आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज, साहूकारी आदि। नाचा में ग्रामीण जीवन, संस्कृति एवं आचार विचार को भी कथा एवं गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कालांतर में फिल्मों के प्रभाव के कारण नाचा गम्मत में अश्लीलता और फुहड़ता बढ़ने लगी। तब कुछ जागरूक विद्वानों ने उसमें परिष्कार की जिम्मेदारी उठाई। सर्वप्रथम रतनपुर के राजकवि बाबू रेवा राम ने कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण काव्य संकलन गुटका का निर्माण किया, जिसके आधार पर रतनपुरिया गम्मत की संरचना हुई। इसी क्रम में दुर्ग बघेरा के दाऊ रामचंद जी देशमुख का नाम भी उल्लेखनीय है,

0: जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अनेक गांवों की यात्रा कर उस समय प्रसिद्ध गम्मत कलाकारों को एकत्र कर छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल विकास मंडल नामक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने लोकनाट नाचा गम्मत में आई विकृतियों को दूर कर उसे एक नए परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया। इस संस्था द्वारा प्रदर्शित नाटकों में काली माटी, बंगाल का अकाल, सरग और नरक, जन्म और मरण, मिसमयों का डांस, बेगुनाह को फांसी, राय साहब मिस्टर भोंदू को अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त हुई। दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नाटकों में सर्वाधिक चर्चित एवं लोकप्रिय नाटक था चंदैनी गोंदा। न सिर्फ छत्तीसगढ़ वर्ण छत्तीसगढ़ के बाहर दिल्ली एवं संपूर्ण देश में इसका शानदार प्रदर्शन हुआ। इस लोक नाट्य ने मानो छत्तीसगढ़ी लोक मंच के क्षेत्र में क्रांति ही ला दी। इतनी लोकप्रियता और वाहवाही आज तक किसी भी सांस्कृतिक समारोह को नहीं प्राप्त हुई जितनी चंदैनी गोंदा को। श्री देशमुख ने इन आयोजनों से प्रभावित होकर अनेक प्रतिष्ठित युवा कलाकारों ने अनेक नाट्य संस्थाओं का गठन किया, जिनमें सोना बिहान, नवा बिहान, दौना पान, बेल पान, लहर, नव जागृति कला परिवार, नवरंग कला केंद्र इत्यादि प्रमुख नाट्य संस्थाएं हैं। आकाशवाणी लोक नाट्य के महत्व और लोकप्रियता से भरी भांति परिचित थी, अतएव अपने कार्यक्रमों में लोक नाट्यों को विशेष महत्व दिया। आकाशवाणी द्वारा रात्रिकालीन कार्यक्रमों में नाटक के प्रसारण की जन सामान्य में प्रतीक्षा रहती थी। छत्तीसगढ़ी काव्य के पुरोधा स्वर्गीय द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र ने लिखा है कि चंदैनी गोंदा का प्रथम भाग का प्रसारण आकाशवाणी रायपुर से सुना, सचमुच एक स्थायी निधि का निर्माण कर दिया गया है। आकाशवाणी को प्रसारण के लिए बधाई। अतः यह स्पष्ट है कि आकाशवाणी ने लोक नाट्यों की स्थापना एवं प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जहाँ तक प्रश्न लोक साहित्य के शेष दो अंगों लोक वार्ता एवं सुभाषित का है, लोक वार्ता के अंतर्गत लोक साहित्य, लोक अनुष्ठान, लोक विश्वास, लोक धर्म एवं लोक संस्कृति सभी का समावेश है। इसी प्रकार लोक सुभाषित लोक की उक्ति है जो पारंपरिक ज्ञान अनुभव के प्रतीकार्थ प्रचलित होती है। लोकोक्तियाँ लोक भाषा का अलंकरण है। लोकोक्तियों के माध्यम से महत्वपूर्ण बातों को सूत्र रूप में कहा जाता है। आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों में विशेषकर चौपाल में लोक वार्ता एवं लोक सुभाषितों का भरपूर प्रयोग करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ अंचल में स्थापित आकाशवाणियों ने विभिन्न केंद्रों में ही नहीं वरन भारत वर्ष के विभिन्न प्रांतों की आकाशवाणी केंद्रों ने विगत 90 सालों से अनवरत अपने अपने क्षेत्रों के लोक साहित्य को संवारने सहेजने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज भारत ही नहीं वरन विश्व में लोक साहित्य के प्रति जो जागरूकता आई है उसमें आकाशवाणी की महती भूमिका रही है। आकाशवाणी और लोक साहित्य का घनिष्ठ संबंध इसलिए भी है क्योंकि दोनों का संबंध साहित्य एवं संस्कृति की वाचिक परंपरा से है। धन्यवाद।
1: भारत में लोक साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में आकाशवाणी के योगदान पर चर्चा कर रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा। और इसी के साथ आज की साहित्यिकी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुप्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: कार्यक्रम साहित्यिकी में हमने सुनी आकाशवाणी बिलासपुर में आयोजित हिंदी कार्यशाला में हुई विशेष परिचर्चा के संपादित अंश। परिचर्चा का विषय था भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक और लोक विरासत को सहेजती, संवारती और प्रसारित करती आकाशवाणी। प्रतिभागी रहे डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा। रिकॉर्डिंग सहयोग गौरी शंकर कौशिक का था और संपादन और प्रस्तुति रही डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। वक्त है कार्यक्रम महिला सभा का।
3: नमस्कार सखियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा और मैं हूं आपकी सखी गीता। बहनों, हम बात करने जा रहे हैं जीवन से जुड़े उन विषयों की जो हमारे समाज और परिवार को मजबूत बनाते हैं। जी हाँ बहनों, विषय है घरेलू कामकाज के बीच महिलाओं का सेल्फ केयर। घर को संभाल

0: सुबह से रात तक अनेक जिम्मेदारियां निभाती हैं। रसोई में, बच्चों की देखभाल में, बुजुर्गों का ध्यान, परिवार की जरूरतें और कई बार नौकरी की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है, क्या महिलाएं स्वयं का ख्याल रख पाती हैं? बहनों कहते हैं जो दीपक सबको रोशनी देता है उसे भी समय समय पर तेल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह परिवार की खुशियों का आधार बनने वाली महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य और मन की देखभाल की जरूरत होती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं परिवार की हर जरूरत का ध्यान रखती हैं लेकिन अपनी थकान, दर्द और तनाव को नज़रअंदाज कर देती हैं। तो ऐसा ना करें, स्वयं का ख्याल भी रखें। उसके लिए आपको स्वयं का ध्यान देना होगा और इसका अर्थ ये नहीं कि आराम करना ही है। समय से खाना, समय से सोना और साथ ही व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करें। पर्याप्त मात्रा में पानी लें, नींद पूरी करना, मानसिक शांति बनाए रखना। बहनों जब हम समय से खाने की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम सही समय पे सही आहार लें, जैसे संतुलित आहार लें। कभी कभी हम महिलाएं ये भी सोचती हैं कि घर के सारे सदस्य खाना खा लेंगे तो हम खाएंगे और उस बीच पर्याप्त भोजन भी नहीं बच पाता है। तब क्या हम सोचते हैं कि चलो अपने लिए क्या बनाएं, कुछ भी है खा लेंगे। तो ये मानसिकता हम सबको हटाना होगा और अपने भोजन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम पौष्टिक आहार तो ले रहे हैं या नहीं। बहनों हमें खुश रहना है तो सप्ताह में कम से कम एक बार हमें सहेलियों से बात करनी ही चाहिए। इससे हमारा तनाव दूर होता है और हम खुश रहते हैं, जिससे सेहत भी अच्छी होती है। तो आज से आज संकल्प लीजिए कि आप अपने भोजन और सेहत पर ध्यान देंगे। जब हम अपनी नींद, पसंद और खुशी के लिए थोड़ा सा समय निकालें तो जब हम स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे तब परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल रहता है। तो बहनों स्वयं की देखभाल कोई विलासिता नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यदि आप स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार और समाज को बेहतर दिशा दे पाएंगी। तो बहनों अब चलिए चलते हैं आज का हमारा क्रम फोन करेंगी सुने में। हाँ हेलो, फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं समस्तीपुर से बोल रही हूँ, संतोषी ठाकुर
0: जी। संतोषी जी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। नमस्कार मैम।
0: नमस्ते संतोषी जी, बहुत दिनों बाद आपका कॉल आया है, लगता है आज फुर्सत से हैं आप। संतोषी जी आज का हमारा चर्चा का विषय है नई पीढ़ी की माँ, तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: मैम नई पीढ़ी की माँ तो यही है कि अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल जैसे जिस प्रकार से अभी का माहौल बिगड़ते जा रहा है उस प्रकार माँ जो होती है वही अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकती है, सही राह दिखा सकती है। मोबाइल से बच्चों को दूर रखकर अपना समय बच्चों को ज्यादा देना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनको अच्छी संस्कार देने चाहिए
0: जी
1: के कैरियर के बारे में।
0: एक माँ को अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए अपने आप को अपडेट भी करना चाहिए, क्योंकि आधुनिक जीवन हम जी रहे हैं जिसमें AI की बात हो रही है। तो हम जो माँ है अपने घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ साथ अपने को भी हम अपडेट रखना बहुत जरूरी है जी। संतोषी जी और कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैम आज बहुत दिन बाद फोन लगा, मैं बहुत खुश हूँ कि बात हो रहा है।
0: जी जी जी संतोषी जी, हमें भी आपके फोन कॉल्स का हमेशा इंतजार रहा है, लेकिन अब काफी दिनों बाद आपने कॉल किया इसके लिए धन्यवाद। तो आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: चक दे इंडिया
0: जी। तो चलिए संतोषी जी आप तक हम पहुंचाते हैं चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत। हेलो
2: हेलो,
0: फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रही है?
2: मैं गोकुल धाम से बोल रही हूँ।
0: गोकुल धाम से बोल रही हो, क्या नाम है?
2: आराध्या कश्यप।
0: तो आराध्या जी अभी कौन से क्लास में हो आप?
2: 9th में
0: जी। तो पढ़ाई अच्छी चल रही है? और अभी गर्मी की छुट्टियां हो गई होगी ना?
2: छुट्टी चल रही है
0: जी।
2: पहली बार मेरा फोन लगा।
0: पहली बार फोन लगा है, चलो हम अभी अच्छा लग रहा है राध्या जी आपसे बात करके। और गर्मी की छुट्टियां हैं, आप गर्मी के एंजॉय कीजिए लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा और आप तरल पदार्थ भी लेते रहिएगा, पानी लेते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और धूप में नहीं निकलिएगा, ठीक है? तो आराध्या जी आपको कौन सी फिल्म का गीत सुनवा दे?
2: चक दे इंडिया।
0: चलिए आराध्या जी आप तक हम पहुँचाते हैं चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ, फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं?
0: जी मैं सुमन उपाध्याय बोल रही हूँ
1: जी,
0: बिलासपुर से।
1: जी जी सुमन जी, फोन करेगी सुने में आपका स्वागत करते हैं हम। और आपको जी, और आपको पता ही होगा कि आज का हमारा चर्चा का विषय है नई पीढ़ी की माँ। तो इस विषय पे आप अपना कुछ विचार रखना चाहेंगी?
0: जी मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे नई पीढ़ी की जो माँ है
1: जी,
0: उसी कैटेगरी में मैं अपने आप को भी अभी समझती हूँ।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि आज के समय की जो माएं हैं वो केवल बच्चों की देखभाल नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके साथ एक दोस्त बनकर चल रही हैं, उनकी मार्गदर्शक हैं और उनके लिए प्रेरणा भी बन रही हैं।
1: जी
0: आपने देखा होगा कि जो अभी के समय की माँ है वो केवल बच्चों को पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ा रही है, लेकिन उनमें एक अच्छे संस्कार और जिम्मेदारी भी उनको निभाना सिखा रही हैं। जैसे अभी मोबाइल इंटरनेट और नई तकनीक का जमाना है मैम, तो बच्चों की चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो या डिजिटल दुनिया के बारे में जानकारी हो, वो उनपे भी ध्यान देती हैं।
1: जी
0: और मैम आजकल मैंने ये भी देखा है कि चाहे वो बेटा हो या जो बेटियां हैं, दोनों को ही समान अवसर वो देने का प्रयास करती हैं अपने पैरों पर, ताकि बच्चे खड़े हो सके।
1: बिल्कुल सुमन जी, और माँ यह शब्द अपने आप में ममता, त्याग और स्नेह और सुरक्षा प्रतीक भी है। समय बदलता है, समाज बदलता है और उसके साथ बदलती जिम्मेदारियां भी हैं। और जो आपने जैसे कहा कि आज माँ केवल घर नहीं संभालती है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज की माँ केवल घर संभालने वाली नहीं है बल्कि बच्चों की शिक्षक, मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा भी है। बिल्कुल सुमन जी, आपने सही कहा। तो सुमन जी और कुछ कहना चाहेंगी?
0: जी मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि जो नई पीढ़ी की माँ है वो केवल परिवार संभालने महिला नहीं रह गई है,
1: जी,
0: बल्कि आने वाले समाज के निर्माता भी हैं। उनका प्यार, समझदारी और मार्गदर्शन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काफी जरूरी है।
1: जी बिल्कुल सुमन जी, आपने सही कहा है। सुमन जी आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
0: जी मैम मुझे रंग दे बसंती फिल्म का गीत सुना दीजिए।
1: जी चलिए सुमन जी, हम आप तक पहुंचाते हैं रंग दे बसंती फिल्म का ये गीत।
0: शुक्रिया मैम।
1: जी धन्यवाद।

0: एआई का जमाना है, तो पहले तो हम इन सब चीजों को नहीं सीखे थे गीता जी, लेकिन अब लगा है कि बच्चों के रिक्वायरमेंट में है, तो इन सबको भी हमको अभी अब इस सब का ज्ञान अर्जन करना पड़ रहा है, अब इनको सीख रहे हैं, क्योंकि इससे हम अपने बच्चों को इस बारे में बता सके। अब
1: जी
0: मैं तो नाती पोते वाली हो गई हूँ, तो मैं तो अपने नाती पोतों को भी

0: अभी भी सीख रही हूँ, उनको
1: जी
0: कुछ सिखाना है ऐसा समझकर।
1: जी जी
0: लेकिन गीता जी, एक और भी मेरा कहना है कि मैं सोचती हूँ इस आधुनिकता के दौर में गीता जी हमको अपनी पुरानी सभ्यता, संस्कृति और अपनी मान्यताओं का भी ज्ञान अपने बच्चों को देना चाहिए। तो हम
1: बिल्कुल
0: नई पीढ़ी की जो माएं होती हैं, तो उनको इन सब का भी ज्ञान हो, और अपने बच्चों को इसको हमको देना है।
1: जी
0: ये हमेशा अपने दिमाग में हमको रहना चाहिए।
1: जी जी निमिषा जी, आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कह दी है कि हम महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिकता में हम अपनी सभ्यता को ना खो दें, और
0: जी
1: वैसे भी नई पीढ़ी की माँ परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सुंदर संतुलन बनाकर भी चल रही हैं, और वह
0: जी
1: बच्चों को संस्कार भी देती हैं और सपनों को उड़ान भी देती हैं। तो
0: जी
1: निमिषा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। निमिषा जी, हम आपको कौन सी फिल्म का गीत सुनवा दें?
0: जी आप मुझे ये आर्य सुना दीजिए कोई सा भी।
1: जी, तो चलिए निमिषा जी, हम आप तक पहुंचाते हैं यारियां फिल्म का ये गीत।
0: जी धन्यवाद गीता जी।

0: आशिता जी, करती क्या है आप?
1: अभी तो कुछ नहीं करती
0: जी,
1: गर्मी बहुत तेज है
0: जी।
1: फिलहाल हम लोग तो बिलासपुर में ही रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा जी, तो आपको कौन सी फिल्म का गीत सुनवा दे? तो चलिए आशिता जी, हम आप तक पहुंचाते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का ये गीत। हाँ, फोन करें, गीत सुने में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं?
2: बिलासपुर गुरु से बोल रही हूँ
0: जी। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम स्नेहा है
0: जी। स्नेहा जी, आप क्या करती हैं?
2: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो स्नेहा

0: बहुत जरूरी है कि माँ भी अब पहले से शिक्षा का बहुत माध्यम बदला है, शिक्षा को बहुत मानते हैं, तो माएं भी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, तो एक अलग प्रकार की माँ की छवि बन गई है अभी
1: जी।
0: माँ बच्चों के दोस्त बनती है, उनके साथ पढ़ाई में, खेल कूद में, हर वक्त उनका साथ देती है।
1: जी जी, क्या बात है स्नेहा जी, आपने सही कहा है। और आज की जो माँ है आधुनिकता के साथ साथ अपने आप को अपडेट भी करती जा रही है,
0: पहनावा हो चाहे घर का फारिग हो, कुकिंग हो, और चाहे उनके विचार हो, सब कुछ अब आधुनिकता से जुड़ चुकी है और आगे बिल्कुल माएं बच्चों के साथ आगे बढ़ रही हैं, वो भी समझ लीजिए बच्चों के साथ एक नया जीवन जी रही हैं।
1: जी बिल्कुल स्नेहा जी, तो स्नेहा जी आपको हम कौन सी फिल्म का गीत सुना दे?
0: फटा पोस्टर निकला हीरो।
1: जी तो चलिए स्नेहा जी, हम आप तक पहुंचाते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का ये गीत।

0: पापा बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ, अपने 1000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: बहनों अपने सेहत का ख्याल रखें, संतुलित आहार लें और समय समय पर अपनी सहेलियों से मिलें और बातें करें, और हमें पत्र के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा कि अब आपको कैसा फील हो रहा है। और हमारा पता है कार्यक्रम महिला सभा द्वारा के निर्देशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, पिन कोड है 495001, आकाशवाणी बिलासपुर नूतन चौक। तो बहनों आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति गीता होता को नमस्कार।

0: बहनों, अभी आप सुन रहे थे आज का हमारा क्रम फोन करेगी सुने में, और इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया है गौरी शंकर कौशिक जी ने। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: पापा, लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा।

कार्यक्रम महिला सभा भी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 28 मई को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा शुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बकरियों में पीपीआर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण 28 मई और 29 मई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

आज शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। शाम 7:20 पर होगी ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोठ में हम सुनेंगे धान फसल पर बीजहा के चुनाव विषय पर चर्चा। साथ ही किसानवाणी गांव में हम लेकर आएंगे शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी में।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा सुगम संगीत, जिसमें आज के कलाकार होंगे आगम कुमार और तुलसी कुमार। रात्रि 8:15 पर खुशबू बिखरेगी रजनीगंधा की। रात्रि 9:15 से लेकर 11 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। ये तो थी आज के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

कल प्रातः 6:30 पर सुनेगा खेती के बाद सामयिक सुझाव होगा ग्रीष्मकालीन ज्वार चारा की खेती विषय पर। वाचन स्वर होंगे त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय के।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान सुनिएगा प्रातः 6:45 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई, जिसमें हम सुनेंगे शेख हुसैन, परसराम यदु, एलिस जान और साथियों के गाए गीतों को। कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद का आनंद लीजिएगा। सुबह 10:00 प्रस्तुति होगी संज्ञा टंडन की। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी को सुनेगा सुबह 11:00 और शाम 5:00 सुनेगा हमर हाथी हमर कोट। शाम 5:35 पर सुनिएगा युवा जगत, जिसमें आज की बात होगी देश के विकास में युवाओं का योगदान विषय पर। साथ ही होगा क्रम समसामयिकी और सवाल जवाब।

शाम 7:20 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोठ में सुनिएगा प्रेम और सद्भावना राष्ट्रीय एकता की पहचान विषय पर चर्चा, साथ ही सुनिएगा सफल कृषक से भेंट। अली हैदर के गाए गीतों को सुनिएगा रात्रि 8:00, कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा, और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 बच्चर पूरा हो गए। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है प्रधानमंत्री ला दिन बधाई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए और राज्य शासन है ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। 27 के जगह अब 28 मई की रही छुट्टी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 बच्चर पूरा हो गए है। ये मौका में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है प्रधानमंत्री ला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में बधाई दीन है। मुख्यमंत्री कहने की प्रधानमंत्री के दूरदर्शी निर्णायक और जन केंद्रित अगुवाई में भारत है सेवा सुरक्षा आत्मविश्वास और विकास के नवा युग में पहुंचा थे। श्री शाह कहने की पाछू 12 बच्चर में प्रधानमंत्री है सेवा सुशासन और अंत्योदय के भावना ला केंद्र में राखत ये सुनिश्चित करे है कि विकास के फायदा समाज के आखिरी मनके तक पहुंचाए। ओमन कहने की गरीब किसान माइलोगिन युवा और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए के जौन संकल्प प्रधानमंत्री लीन है वो है आज देश के हर एक जगह दिखाई देवा थे। राज्य सरकार है नगर पालिका और नगर पंचायत के समग्र विकास पर आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करे के घोषणा करे है। योजना के पहली चरण में प्रदेश के 32 नगरी निकाय के चयन करेगी है। एमा बस्तर सरगुजा और रायपुर संभाग के 6-6 और बिलासपुर संभाग के 9 और दुर्ग संभाग के 5 निकाय शामिल हैं। एमा सड़क जल आपूर्ति ड्रेनेज परिवहन पार्क आवास ई गवर्नेंस स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्र समेत नागरिक सुविधा के विकास करे जाही। योजना के तहत काम के चुनई और निरीक्षण पर संभाग स्तरीय समिति के गठन करे गए है जौनमला 15 दिन में कार्य योजना तैयार करे के निर्देश दे गए है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई कहने की आदर्श शहर समृद्धि योजना प्रदेश के शहरी विकास ला नवा गति और नवा दिशा दे के काम करही। प्रदेश में हुआ खरीफ सीजन के तैयारी ला देखत मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है किसान मन के हित में निर्देश दे है। उमन कहने की ट्रैक्टर ले जुताई और सिंचाई पंप पर किसान मन ला जरूरत मुताबिक डीजल के

0: व्यवस्था सुनिश्चित करे जाए जेखर ले खेती किसानी के काम प्रभावित झन होवे। खबर के मुताबिक राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरुपयोग ला रोके बर ड्रम और जेरकिन में ईंधन वितरण में लगे रोक में किसान मन ला छूट दे गए है जेखर ले खरीफ काम बाधित झन होवे। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए। मिले खबर के मुताबिक श्री सिन्हा बिलासपुर में रखे गए भारतीय जनता पार्टी के दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होवर गए रहिन। ये दौरान उखर तबियत बिगड़े में ओमल्ला बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराए गईस जिहां डॉक्टर मन ओमल्ला मृत घोषित कर दिन। रूप नारायण सिन्हा लंबा बेरा ले भाजपा संगठन ले जुड़े रहिन। उखर निधन में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह समेत भाजपा के बड़का नेता माना शोक जताए। राज्य शासन ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के जम्मू कार्यालय विभाग और सरकारी संस्थान मन में अब 27 के जगह 28 मई के छुट्टी रही। ये फैसला चांद दिखे के संभावित तारीख और तिहार ला ध्यान में राखत ले गए है। राज्यपाल रमन डे का आज लोकभवन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के समीक्षा बैठक लेन। बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत 11 बिंदु पर चर्चा करेगी। राज्यपाल विशेष पिछड़ी जनजाति मन पर मंजूर करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के काम ला जल्दी पूरा करे के निर्देश दिन। ओमन जनजातीय क्षेत्र के रद्दा के खराब स्थिति में नाराजगी जतावत अधिकारी मन ला गुणवत्ता के संग सड़क बनाए बर कही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। राज्य शासन है नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग आधारित दूसर विशेष आर्थिक क्षेत्र ACZ स्थापित करे ला मंजूरी दे दे है। एकर तहत पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डहर ले 10 हेक्टेयर ले ज्यादा क्षेत्र में सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के निर्माण करे चाही। नवा रायपुर में बनैया ये विशेष आर्थिक क्षेत्र राज्य के निर्यात ला बढ़ावा दे के संगे संग नवा निवेश आकर्षित करे और छत्तीसगढ़ ला वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला ले जोड़े में विशेष भूमिका निभाही। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है कहिने कि सेमी कंडक्टर तकनीक भविष्य के जरूरत है। ओमन कहिने कि नवा रायपुर में राज्य के पहली सेमी कंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित होए ले छत्तीसगढ़ के तकनीकी भविष्य की नींव मजबूत होही संगे संग युवा मन ला रोजगार घलो मिलही। राज्य सरकार बस्तर संभाग के जिला में चलत बांचे 506 बिना भवन के आंगनबाड़ी केंद्र मन पर भवन मंजूरी के कामला तेज कर दे है। मुख्य सचिव स्तर में 516 मई के रखे गए समीक्षा बैठक में बस्तर संभाग के हरेक ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी भवन निर्माण ला शासन के प्राथमिकता बतावत संबंधित जिला कलेक्टर मल्ला निर्देश जारी करे गए है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर हरेक भवन पर 11,69,000 रूपया की राशि निर्धारित करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है कहने कि सरकार के लक्ष्य नक्सल मुक्त घोषित जिला मन में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण कराना है। ओमन अधिकारी मल्ला निर्माण कामला गुणवत्ता के संग करे के निर्देश दीन है। बीजापुर जिला के ईटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आगी लगे ले करीबन 10 करोड़ रूपया ले ज्यादा के तेंदुपत्ता जल के राख हो गए। ये घटना में गोदाम के स्ट्रक्चर ला करीबन 2-3 करोड़ रूपया के नुकसान हुए है। बस्तर वित्त के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी बताइन है कि गोदाम में 8 फड़ में राखे गए तेंदुपत्ता में काली आगी लग गई। उन्होंने बताइन है कि घटना की जानकारी मिलते ज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के संगे संग बड़का अधिकारी मौका में पहुंचे फिर अभी आगी लगे के कारण के पता नहीं चल पाए। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम मन जांच में जुट गए है। मिले खबर के मुताबिक करीबन 27,400 स्क्वायर फीट में फैले ये गोदाम में लगे आगी में 24 घंटा के बाद घलो काबू नहीं पाए गए है। बिलासपुर पुलिस है डिजिटल अरेस्ट के मामला में 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। दोनों आरोपी मन एक झीन सियान माइलोगिन आतंकवादी संगठन के आदमी बता के आने आने खाता में 1,04,00,000

0: रुपया ले ज्यादा के पैसा जमा करा ले। पुलिस दोनों आरोपी मला गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। आरोपी मंडार ले बउरे गए 900 आने आने बैंक खाता के पता चले है। ये जम्मो खाता में कुल मिला के 30 लाख रुपया जमा है। जिला होल्ड करवाए गए है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 ले 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। ये महोत्सव में कृषि मंत्री रामविचार नेताम किसान और आम उत्पादक मला संबोधित करही। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सामला तत्वाधान में राखे गए ये महोत्सव में आम के आने किस्म के प्रदर्शनी लगाई जाही। प्रदर्शनी हर दिन मझनिया 12 बजे ले रतिया 9 बजे तक लोगन मन पर खुला रही। और अब थोड़ी समाचार सार में पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमत में 2 रुपया प्रति किलोग्राम के बढ़ोतरी करेगी है। नवा कीमत आज ले लागू हो गए है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के टीम है मनेन्द्रगढ़ चिनमिरी में बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता और लाइन मेन ला 9,500 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। उन्हें बेमेतरा में एसीबी है जमीन के बटांकन और खाता विभाजन करके ऋण पुस्तिका बनाए के एवज में रिश्वत मांगे के आरोप में पटवारी ला गिरफ्तार करे है। अकलतरा पुलिस है पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक डाकपाल ला खाता धारक मन के खाता ले 19,21,000 रुपया के गबन के आरोप में गिरफ्तार करे है। और रायपुर पुलिस है कोलकाता और हरियाणा में दबिश दे की आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगैया 26 आरोपी मला गिरफ्तार करे है। इखर तीर ले 17 लाख रुपया नगद चार पहिया गाड़ी समेत आने आने सामान बरामद करे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 बछर पूरा हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है प्रधानमंत्री ला दीन बधाई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए। और राज्य शासन है ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। 27 के जगह अब 28 मई के रही छुट्टी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावा थे। जय जोहार।
1: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, धरदेई सरगांव से चंदुलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत, कृषि पटवा, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक, अर्चना, अनोज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, इनके साथ है शेख मूसा, राजकुमार बुडाना, आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा, दरबार कॉलोनी सनावद से किशोर कुमार सावले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारुवी और प्रणव सावले, ग्राम हिंगणी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई, युवराज, शिवांगी धाकड़, यवतमाड़ विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, शिवानी कुमारी, प्रियंका, अभय कुमार, गुड्डू कुमार गुप्ता, ये हमारे साथी हैं पिहरा बाजार झुमरी तिलैया से, और मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध, ये हमारे साथी हैं बाबू खदान कोठी बोरो पारा चौक बस बेरिया पश्चिम बंगाल से, बिरगांव तखतपुर से जयमुन कौल, दिलीप भुवनेश्वर, रामायणी कोल, नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, ग्राम पंचायत खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा सोमारसाय, कलेश्वर सिंह, सुखराम हीरामणि पैकरा, अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति सक्षम, डी के शाक्य, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई, प्रणय प्रसिद्धि, महेश रामटेके, हीरामन शेंडे, प्रतिभा गोंडाने, तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक, आयुषी श्रीवास, फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विश्व विशाल, आरबी तिवांशी, शालिनी खेरा, रायपुर से हमारे साथी हैं विनोद बंडलकर, वीणा, विविधा बंडलकर, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज, ऋषि कृष्णा घोड़के, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिश्का, तन्मय गजभिये, भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश, पायल जोशी, मिथिलेश यदु, विष्णु साहू, अंकिता जोशी और वैदेही, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा और डब्ल्यू अंसारी, भिलाई 3-14 छत्तीसगढ़ से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जीशान, शहनवाज, अहमद सिद्दीकी, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी, टोरोवाल, नवाशहर पंजाब से

गंदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार जो, यामिनी अरुमा तिवारी। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। मुंबई से अदिबनाज, फातिमनाज और सबा अंसारी। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारिणी सूरज, ज्योति और रेयांश ठाकुर। देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गनुलाल रजक, मुरली छत्रिय। लुतरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श और आतिका। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा, माही मलिक। सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और रहीम मुन्ना। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब। दिल्ली से हमारे साथी हैं आसमा परवीन, आमना और वली भाई अंसारी। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आड़ोकर। लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और यूसुफुद्दीन। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल भारती बघेल, ये हमारे साथी हैं लगान पंडरिया से। और जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, जिसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है एक नजर।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में एक नजर फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सुरेश वाडकर की आवाज में उत्सव फिल्म का गीत, जिसे लिखा है वसंत देव ने और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं: गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष पवार, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लल्लू, ऋतु सिंह, रैया रोड राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति, ख्याति और जगदीश सोनी, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, गांव खारियाढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया, देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम, बोड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू रजनी, प्रियंका देवांगन, जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से सरला मनवर, राहुल, रोशनी, विशाल, चेतन और प्रियांशी मनवर, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदनंद और कुमार गौरव मंदुरकर, रसेड़ा से मुरलधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश वासु, डॉली पूर्वेश साहू, छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम, सदनंद, विराज, अंशुमन और ओवी, ग्राम बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू, राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, सिद्धेश्वर नगर यवतमाड़ से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके, बिलासपुर से हमारे साथी हैं छनुलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल राय, जालंधर से रोशन जहां, नुसरत, महक जहां, हरियाणा से अंकित कागड़ा, मोनी, प्रिंस बोर्ड, साहिल कागड़ा, चमन पार्क दिल्ली से सोनम, सना, अदीबा, वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता, निखिल, तन्वी बोट, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा, निर्मा अजीम, ज्योति मक्कड़, मन्नत, संदीप, भरत, कमल साहनी, ये हमारे साथी हैं गौरैया चौक जालंधर से, सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशु, सुरेश, पथिक, कृषिव, उदयपुर से कांता देवी, फरीदा शबनम, किरण देवी, रंजना दवे, शांति वारी, सबिया खानम, रईसा खातून और भारती देवी, चांदनी चौक गंडी पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र, रौनक सेन, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबेराव,

मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु संस्कृति और पौरुष, पेपर पारा पालचुआ मुंगेली से उत्तर दिवाकर परमेश्वरी, भानुप्रिया योगिता, नितिन वंशिका दिवाकर, रेलवे रोड गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम, भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुल हसन, शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम, अशोक तोलानी, लाला सोनी, मोहन कसारा और बाबू भाई चांदीवाला ये हमारे साथी हैं। कलश मार्ग उदयपुर से गांधीबाग कुलो से रमेश कटनकर, वैशाली धनंजय कटरकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला और नसीम बेगम, जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल। आइए आप सब मिली जुली फरमाइश पर सुनते हैं उत्सव फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल करें। गीत सुने के इस अंक का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं अहमदपुर खैगांव खंडवा मध्य प्रदेश से कैलाश फूलमाली, दीपक समर और वेदिका फूलमाली, शाजीनगर बेंगलुरु जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, कनेरा मोहल्ला पटियाला से

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए हीरो हिंदुस्तानी फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। शाम के 6:45 हो रहे हैं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक।

0: हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बिलासपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने से छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का निधन। बीजापुर जिले के ईटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक। और राज्य में बकरीद का अवकाश कल के बजाय परसों 28 मई को रहेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी इस समिति में जनगणना आयुक्त के साथ सेवानिवृत्त आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर समीका रवि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को इस संबंध में घोषणा की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक तरीके से होने वाले डेमोग्राफिक बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बिगड़ी चुनौती होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी, निर्णायक और जन केंद्रित नेतृत्व में भारत ने सेवा, सुरक्षा, आत्मविश्वास और विकास के नए युग में प्रवेश किया है।
6: 12 वर्षों तक उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर गरीब कल्याण योजना चलाकर सारे गरीबों के लिए नए भारत का निर्माण उन्होंने किया है।
5: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंत्रालय में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद विमानतल से सीधे मंत्रालय पहुंचे और इस बैठक में शामिल हुए। राज्य शासन ने नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग आधारित दूसरे विषय आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर में बनने वाला यह विशेष आर्थिक क्षेत्र राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने और छत्तीसगढ़ को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इनमें बस्तर, सरगुजा और रायपुर संभाग के 6-6 तथा बिलासपुर संभाग के 9 और दुर्ग संभाग के 5 निकाय शामिल हैं। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

0: निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों से जुताई और सिंचाई पंपों के लिए किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि खेती किसानी के कार्य प्रभावित न हो। गौरतलब है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरूपयोग को रोकने के लिए ड्रम और जरीकेन में ईंधन वितरण पर लगे प्रतिबंध में किसानों को आवश्यक छूट दी गई है जिससे खरीफ कार्य बाधित न हो। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का आज निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार श्री सिन्हा बिलासपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रूप नारायण सिन्हा लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों की सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण कराने को कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन ने ईद उल अजहा यानी बकरी ईद के अवसर पर घोषित अवकाश में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में 27 मई की बजाय अब 28 मई को अवकाश रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरी ईद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। बीजापुर जिले के इटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया है। इस घटना में गोदाम के स्ट्रक्चर को करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बस्तर वित्त के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी ने बताया कि गोदाम में 8 फड़ में संग्रहित कर रखे गए तेंदुपत्ता में कल आग लग गई। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम जांच में जुट गई है।
1: 8 समिति के यहाँ पर लगभग 50,000 बोरे के आसपास यहाँ रखे जाने थे और अभी ट्रांसपोर्ट जो हुआ था लगभग 25,000 के आसपास तक हो पाया था। तो 25,000 बोरे के लिए हमारे सारे प्रभारी यहीं थे। यहाँ पे किसी तरह का कोई आग से खाना बनाने का कोई बिजली कनेक्शन, ये सारी चीजें नहीं रखी जाती यहाँ पर। तो ये पूरी एहतियात बरती गई है, लेकिन अब कारणों का पता लगाया जाएगा। इसकी हम जांच कर रहे हैं। तो आग बुझाने की कार्रवाई अभी ट्रकों से हो रहा है। इसके बाद हम लोग फिर पूरी तरह से इसमें जांच में लगेंगे।
0: जानकारी के अनुसार करीब 27,400 स्क्वायर फीट में फैले इस गोदाम में लगी आग पर 24 घंटे के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन का कल नई दिल्ली में विमोचन किया गया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री चौहान के सार्वजनिक जीवन, आत्मीय संबंधों और कार्य अनुभवों पर आधारित है। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री चौहान को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से समाज तक पहुंचाना एक प्रेरणादायी पहल है। बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला को आतंकवादी संगठन से संलिप्तता का डर दिखाकर अलग अलग खातों में 1,04,00,000 रुपए से अधिक जमा करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों द्वारा ठगी के लिए प्रयुक्त 900 अलग अलग बैंक खातों का पता चला है। इन सभी खातों में कुल मिलाकर 30 लाख रुपए जमा है जिसे होल्ड करवाया गया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाए।

की। वहीं प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान आम उत्पादन की नई तकनीकों, प्रसंस्करणों और विपणन संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 29 मई से प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके असर से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी

0: रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। नई दर आज से लागू हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा में नवनिर्मित मित्र मिलन चौपाटी का लोकार्पण किया और राज्य के विभिन्न जिलों में सीएम हेल्पलाइन योजना के संबंध में अधिकारियों को आज प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बिलासपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने से छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का निधन। बीजापुर जिले के इटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक। और राज्य में बकरीद का अवकाश कल के बजाय परसों 28 मई को रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। आइए जुड़ते हैं कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने के अगले और अंतिम भाग में। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का पहला फरमाइशी गीत है फिल्म साथिया से। ऋचा शर्मा और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें हैं। गुलजार ने इस गीत को लिखा है और संगीत है AR रहमान का। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम है। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप, गुरनूर अविराज, गुरलाल, शुभदीप, गुरमान सिंह, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखे लाल वर्मा, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता, डिम्पल देवांगन, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविक रानी, गजेंद्र कुमार, पार्थ और हेयांश चंदन, उमरखेड़ से शैलेंद्र पोपलवाड़, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, ग्राम कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर, बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तान्या नारंग, लोहारी डी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी खुशांत, निशांत साहू, सरगुजा मैनपाट से अजिता पॉल, लक्ष्मी, प्रियांशी शर्मा, छत्तीसगढ़ से अनुश्री प्रदीप, कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमाल कुमार और अफजाल मलिक, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, सलाम, उमरखेड़ से सिराज खान, शबाना बेगम और फरदीन खान, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति उत्कर्ष चौहान, पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल वसुंधरा चंदन और इनके साथ है प्रांजल, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन बेगम, अल्ताफ, नीलोफर कौसर, रायपुर से इमरान, इशरात परवीन, हसनैन रजा, गौसिया फातिमा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, गिर्रा पलारी से वीरेंद्र साहू, सोनू आशीष, कपिल साहू, ग्राम उचभट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद प्रदीप येमेकर, अंबई तालुका सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, गांव जाखोद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, पूजा परिहार, जलालाबाद पश्चिम से सूरज गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, कोलपोल उदयपुर से गोपाल नैनवाया, कांता, विवेक, मनीष, प्रांजल और लक्षिता नैनवाया, जवाहरनगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वर्य और विपुल कांबड़े, गांव हिपरसोगा तहसील जिला लातूर से

उस्मान शेख, फौजी सायरा बानो और करिश्मा शेख, नजमुल उदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम ये हमारे साथी हैं गुमला झारखंड से, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, आदर्श नगर मुलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, निवान, सौरव और शायना शर्मा, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। आइए सुनते हैं आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर ऋचा शर्मा और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में साथिया फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना ऋचा शर्मा और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में साथिया फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं चित्रा की आवाज में फैज अनवर का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है तुम बिन और इसे संगीत से सजाया है निखिल विनय ने। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी, सूरज और कुशल वर्मा। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार। ईरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। उमरखेड़ से आमिर खान और शबाना खान। पलारी जिला बलौदाबाजार से प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस, यशस्वी वर्मा। पलारी से नीतीश कुमार, लखनलाल देवांगन, सावित्रीबाई, ईशांत और तनुजा देवांगन। भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल, चंपा साहू। जेल रोड जालंधर से मीना कौर, नरेंद्र, संदीप कौर। बुलढाणा वर्चिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला, साधना और सुमेद। बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। पलारी से नितेश, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम और कृष्णा। वड़ाली देशमुख से राजेश, खोबरखेड़े, शिवसागर, इंद्रताई, सुनयना, तनुज। और खांडवी बुलढाणा से दीपावली रामधाड़े और स्वराज रामधाड़े। बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता, स्वाति, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी। जेल रोड शिमला से प्रमिला पॉल, सोनाली आशु और अजिता पॉल। रायगढ़ से उमा प्रवीण और प्रमिला सोनी। वेस्ट बंगाल से मेहर अरोड़ा, अभिजीत प्रसाद, अजिता कुमारी, मिथुन सांगा और दीपक दास। मेहर पटेल ये हमारे साथी राजकोट से हैं, अजिता पॉल, हेमा, प्रमिला। ग्राम गतौरा से बोधीराम, आर्यन, शंकर, अमन, सूरज राठौर, मुन्ना पाठक, कुलदीप प्रधान, विजय पांडे, संतोष यादव, जितेंद्र श्रीवास, चंद्र प्रकाश लहरे। झुमरी तिलैया से महेंद्र मोदी, विक्रांत, तस्नीम कौसर और सोनम। कोलकाता से अजिता जाधव, शिल्पी राज, हेमा, सरिता जाधव। राजनांदगांव से राजेश डौली, महेश, रमेश। खंडवा से दुर्गा कुमारी, द्वारकाबाई और अनिता कुमारी। महादेवपारा से मीरा, सिमरन, योगेश कुमार, राजवाड़े। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं तुम बिन फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के। इस अंक का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत है फिल्म युवराज से। अलका याग्निक और जावेद अली की आवाजें हैं। गुलजार ने इस गीत को लिखा है और संगीत है AR रहमान का। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं। ढानकी रोड उमरखेड़ महाराष्ट्र से रज्जा खान, शबाना बेगम, जावेद, आसमा परवीन, आसिया परवीन। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर। भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी शुभम, सौरभ रावत। भाटापारा से विष्णु साहू, पूरब, वीरा, हर्ष, कुमकुम, योगेश्वरी साहू। महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर। भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोबाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य, मेघा मस्कीन। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, नाजिया इब्राहिम। बेदला उदयपुर से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम, लावण्या तंबोली। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, ये हमारे साथी हैं। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या और अविरल सिंह। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया आयान। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू। करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, मरन, एकम, दमन और अभिजोत। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक और मंजू भाटिया। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और इनके साथ है राजेंद्र कटारे। भाटापारा से सोहन जोशी, पायल जोशी। मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर उत्तर प्रदेश से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान नवेद, अजरा तबस्सुम। जिला बनारस से अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन, आफिया परवीन। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता केसु, तासु अर्णवानंद, सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत।

अलका याग्निक और जावेद अली के गाय युवराज फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम ग्राम सभा का।

सबो संगवारी मन ला बैसाखू की जय जोहार। संगी हो, अभी जैसे बात करी अपन खेती किसानी के ना, तो खेती किसानी पर बढ़िया मौसम ही माटी ही जांच कराए के काबर के कई घाव हम सुरता आप मन का देवा थन। माटी के जांच कराबो ना संगी हो, तो पोषक तत्व के कौन मात्रा लगी एकर जानकारी हमन ला मिलथे। तो माटी निकाले के नियम घलव है अलग अलग, है ना, कैसे निकालना है अपन तीर के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, है ना, पुराना जिन ग्राम सेवक है इनकर से संपर्क करना चाहिए। और माटी जांच कराए में जिन अभी जिन खातू माटी के महंगाई है, है ना, बहुत कम खातू आप मन ला मिल ही आने जतका आप मन ला लगी, एकर संग में आप मन ला जिन है ना सरकारी जिन खातू है यू हर मिल ही। तो हमल उचित उपयोग घलो करना है, अक्तिहा नहीं डालना है। और संग में हम देखब तो जैविक हिसाब से गोबर खातु है, नाडेप कंपोस्ट है, और आप मन बना था ना कई प्रकार के जैविक विधि ले एकर उपयोग करिहा तो बढ़िया उत्पादन हो ही। और ये केबू के बीजा छाट डारे हुआ कि खेत में कौन बीजा ला हमला उपयोग करना है, काबर के सही चुनाव करिहा बीजा के तो उत्पादन बढ़िया होते। और अच्छा उत्पादन लेहे बर खातु है, है ना, पानी है और मेहनत ये सब लगते। तो बीजा के चुनाव करना है, किसान को सही बीजा चुनही तो फसल बढ़िया होते, बीमारी कम लगते, आमदनी घलो बढ़ते। हम जानत हन छत्तीसगढ़ ला धान की कटोरा कहे जाते, है ना, और हमारे प्रदेश के कई जी किसान संगवारी हीन धान की खेती करते और धान मंडी में बेच के बने पैसा घलो जोर थे। अपन नोनी बाबू के बिहाव अभी करी नहीं वही माना, तो कई रकम के बात के ध्यान रखे बर पड़ी, बढ़िया उत्पादन होए तेकर बर तो बीजा अच्छा होए। किसान मन के जिन होते कम उपज, रोग और मौसम के जिन समस्या के सामना करे बर पड़ते, ये सब में सही बीजा के चुनाव बहुत बड़ा जिन हवे, है ना, भूमिका निभाते। तो बीजा ला खेती के आधार माने गए है, जौन हर बीज ला स्वस्थ शुद्ध और उन्नत उपयोग करही ओकर फसल बढ़िया मिली। कहो कमजोर बीज, है ना, पोठ नहीं रही, पानी में कुपला जाते देखे हुआ,

तो यह नहीं जामाए। अब पौधा घलो जैसे जामिस कोनो में रथे जाम गे तो कमजोर हो जाते पौधा हर और उपज नहीं हुआ। एकरे सेती किसान मन ला हमेशा प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजा के उपयोग करना चाहिए। कृषि विभाग है, सहकारी समिति और कृषि विज्ञान केंद्र ले आप मन प्रमाणित बीज बिसा सका था है ना। और बीजा चुनई करा था ए बखत कई बात के ध्यान रखे बर पर थे। कौन बात के ध्यान रखे बर पर ही ये संदेशा ला सुन लेथन एकर बात बताबो।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ संगी हो, तो जैसे कि हम चर्चा करते हैं कौन कौन बात के ध्यान रखे पर ही बीजक चुनाव करत हैं, तो हमार भूया खेत के कौन हिसाब के है और पानी एमा कैसे लगते है ना, तो माटी के अनुसार जेन हवा बीजा लगते। जो पल्लो है तो वहाँ आने हैं है ना, और असिंचित जेमा पल्लो कम है और पानी जी हाँ ज़्यादा लगते, तो ऐसा जगह में हमला आने आने बीजा के जरूरत पड़ते। तो ऐसे बात करी संगी हो, बीजा खरीदत समय हमेशा पैकेट में देखा कि बीजा के जामे के प्रतिशत जेला कहथन अंकुरण प्रतिशत कतका है। कतको में 80% लिखाए रहते, ओकर ले ज़्यादा अंकुरण वाला बीज अच्छा माने जाते। आजकल देखिए धान में झुलसा हो जाते, ब्लास्ट हो जाते और सबले ज़्यादा देखे पर मिलते तना छेदक। पहली ऐसा नहीं रही से, तना छेदक आवत है तहाँ किसान संगवारी मन दुकान डहर उत्ता धूर रह जाते और जैन दुकान वाला दे दीस है ना, हाँ कृषि केंद्र लाए हैं इसे कि बने खुश रहें और लावा थीन स्पेयर में मारा थीन उत्ता धूर्रा एक दो घर छींच देवेगा तीन घर छींच देवे दुकान वाला उसने कह देते। और ये नहीं जाने कि कौन मात्रा कतका कन लगी और तना छेदक काकर कारण होते। अब जैसे बताए हैं कि अकरस जोताई करना चाहिए एमा नान नान जिन अड़वा रहते कीरवा के वही लुकाए रहते और वही हर समय आय में फूट के फिर पौधा के अंदर में घुसर के तना का काट देते। अब वो समय नियंत्रण करिया तो नहीं हुआ है, बहुत कम नियंत्रण होते, बाकी वो सब तना छेदक में धान हर पोष्टी पोष्टी निकल जाते। तो कई बात के ध्यान रखे पड़ते, एक सेती आप मन ला आकाशवाणी के माध्यम ले हमन कई रकम के बात बतातन। तो रोग सहन करे वाला जिन किस्म है एक चुनाव करना चाहिए, अच्छा बीजा बिसाना चाहिए, एक बारे में आप मन ला बतावत हन। बहुत दिन रखे वाला जिन बीजा रहते ये हर कम जाम थे, एमा काबर के कतको माँ फफूंद लग गए रही थे है ना। जैसे पल्लो वाला भुइया है एमा कई ठीक किस्म है, जैसे स्वर्णा है, MTU 1010 है, राजेश्वरी है, महामाया है, इंद्राणी है, IR 64 है, कर्मा मासूरी है, दुबराज है, बढ़िया उपज देते मन, बाजार में मांग घलो बने रही थे। और असिंचित क्षेत्र पर धान के जिन किस्म यानि जेमा पल्लो बहुत पल्लो के साधन नहीं है, ऐमा है समलेश्वरी, दंतेश्वरी, IR 36, हंसा, आदित्य, MTU 1001, जवा फूल, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। सुगंधित धान में ममहाय वाला किस्म है दुबराज, जवा फूल, विष्णु भोग, सोन मसूरी ज़्यादा मांग रही थी, बने पैसा में जाते। तो बीजा के उपचार जरूर आप मन कर ले, काबर के ट्राइको डरमा है, कार्बेंडा जिम है, असं कृषि विभाग द्वारा आप मन ला सुझाते है ना, वो हिसाब से आप मन उपचार करिहा। बीजा उपचार ले ज्यादे जिन है ना जामते, पौधा स्वस्थ रही थे, बीमारी कम लगते, उत्पादन बढ़ते। बीजा दर के हिसाब ले हम बात करी, धान बुआई करना है रोपा पद्धति पर लगभग 30-35 किलो बीजा प्रति हेक्टेयर लगते और सीधा बुआई करना है 50-60 किलो बीजा लगते। तो अलग अलग हिसाब में ए तरह के आप मन ध्यान रखिए ना, बढ़िया बीज के चुनाव करिए, समय में बुआई करिए, वैज्ञानिक तरीका अपना हाँ, तो निश्चित ले उत्पादन आप मन के बढ़ी और आप मन समृद्ध हो। हा तो अच्छा बीज सफल खेती के हम जाना थन पहली सीढ़ी आए, तो आओ संगी हो, हम सब मिल के उन्नत खेती अपनाई अपन गांव।

अपन किसान और अपन छत्तीसगढ़ ला समृद्ध बनाई। अब एक ठीक सूचना घलो सुन लेथन है ना फोन इन कार्यक्रम संबंधित। बृहस्पत 28 मई के हमारे स्टूडियो में है कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक। इनकर से बिहनिया 10:30 से 11 बजे तक आपमन सवाल पूछ सका था। विषय रही सुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण उपचार और रोकथाम। सुकर मतलब संगी हो बरहा। बरहा में स्वाइन जिन बुखार होते है ना स्वाइन फीवर एकर लक्षण का है उपचार और रोकथाम का है एकर संबंधित आप मन प्रश्न पूछिया। 11 से 11:30 बजे के जिन विषय रही छेरिया है ना और बकरा में पीपीआर बीमारी के लक्षण उपचार रोकथाम के उपाय सब अतका कन जिन हवा विषय रही आप मन फोन लगाए के पहली बिलासपुर के एसटीडी कोड लगा 07752 एक बाद नंबर है 2665592 है ना और फोन लगा के आप मन अपन समस्या के जिन समाधान है ना हेला पाहा और कार्यक्रम के प्रसारण बृहस्पत के होही यही बेरा और आप मन सुन सका था अगला दिन यही बेरा में। ये सूचना सिरावत है। अब आगू के कार्यक्रम में चला थन जेकर नाम है किसान वाणी।

संगी हो, बैसाखू के जय जोहार हे, है ना। आओ रेडियो के तीर में आ जा, जैसे हमन कही थन, रेडियो नहीं है आप मन के पास में तो नवा तकनीक आ गया है, मोबाइल घलो रथे, बड़का बड़का मोबाइल, एमा आप मन न्यूज ऑन AIR के माध्यम से AIR बिलासपुर करी है तब हो सुन सका था। गूगल ले AIR बिलासपुर सर्च करके वह टच कर दे हा, तब होले शुरू हो जा कार्यक्रम। आज बढ़िया बात बतावा थन, है ना, किसान वाणी माँ बकरी पालन के बारे में। आप मन जाना था जे नहीं, है ना, किसान मन के सबले बड़का फायदा वाला जिन जिनिस है पशुपालन में, तो कम खर्चा में ज्यादा फायदा आमदनी होते बकरी पालन। और कई घव कुछ लाते, है ना, और जल्दी बाढ़ जाते, बाजार में ऐसे नहीं बेचे जाए बर पर ही गावे में बिसा लेती, तो बढ़िया बढ़िया उन्नत नस्ल के रही, बढ़िया वजन रही, तो बढ़िया रेट घलव जाते। ऐसे ऐसे छेरिया है 50,000, 1,00,000 ऐसे ऐसे कीमत के जाते, है ना। तो इनका चारा पानी कैसे व्यवस्था है रखे के, टीकाकरण है, ये सब बात के ध्यान रखे पर पड़ते। और ये बात नहीं है कि भारी देख रेख करे पर पड़ते, माई लोगन मन घलव आजकल देख रेख कर सकथिन, चराए जाथिन, है ना, लैकन मन घलव एला संभाल लेथिन, तो कोनो प्रकार के फिकिर करे के जरूरत नहीं है। अब खेत खार के घास फूस है, पाना डारा झाड़ी, साग भाजी बोए हा तो एक पाना उना है ना, यू ल खवा के बकरी पालन कर सका था। कतको संगवारी मन तो चराए नहीं जावाए, सब्जी बाड़ी बोआ थीन वही रखे रहतीन, कांदी मुंदी खवा दे थीन, और संगे संग सब्जी के पाना है ना, और डेट रहे सब ला खवा के बढ़िया बढ़ो थीन। बाजार में बकरा बकरी की मांग बढ़िया रही थी। कई ठीक किस्म है, जैसे कि सिरोही नस्ल है, जमुनापारी है, ब्लैक बंगाल है, बरबरी है, ये हर छत्तीसगढ़ पर बढ़िया किस्म है संगी हो। सिरोही किस्म की बात करी तो जल्दी बाढ़ते, एक वजन हर ज्यादा होते, इमा बीमारी कम आते। जमुनापारी का जाना था आप मन, है ना, बड़का बड़का कान वाला जिन सरकारी घलव मिलते, और ये हर गोरस उत्पादन और मांस उत्पादन पर एक उद्देश्य ले एक पालन करे जाते। शरीर हर बढ़कर रही थे, वजन घलो ज्यादा होते। ब्लैक बंगाल किस्म हर जल्दी कुशला थे, और मांस एकर सेवाद भरे रही थे, ऐसे कही थे कम खर्चा में पालन कर सका था ब्लैक बंगाल ला। बरबरी किस्म है छेरिया के, कम जगह है तो बढ़िया पालन कर सका था, जल्दी बाढ़ थे बरबरी किस्म हर, और छोटे किसान बर बने रही थे। सबले बड़का बात बताबो आप मल्ला, डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, यानी पशु चिकित्सक के, है ना, जिकर से कौन प्रकार से मोको पालन

0: करना है, कौन जगह में रखना है, कैसे इनकर दाना की व्यवस्था करना है, ये सब बात के ध्यान रखिया टीकाकरण के व्यवस्था के बारे में, तो बढ़िया उत्पादन होते और बकरी पालन ले आप मल्ला रोजगार मिल सकत है। ये तो रही से आज के गोठ बात। अब चलत हन किसान मणि गामा, ग्राम तेलसरा विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर के किसान मन के बीच में रिकॉर्डिंग करे गए एक कार्यक्रम ला सुनत हवा था और जेकर संपादन करत हवा संपादन और रिकॉर्डिंग करी ही अभिनव गौरा हमन, कार्यक्रम के संयोजन और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। तो सुनी एक कार्यक्रम जेकर नाम है किसान वाणी गामा।
1: किसान भाई हो राम राम जय जोहार। किसान भाई हो किसान वाड़ी गाँव में कार्यक्रम अंतर्गत एदरी हम पहुँचे रहन ग्राम पंचायत तिलसरा जौन आथे विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर। वहाँ पहुँचन तो भाई अभी के समय में विकसित भारत संकल्प अभियान गाँव गाँव में किसान मनला शासकीय योजना मन के लाभ दिए बर हर गाँव में शिविर लगाया जाते। किसान भाई विकसित भारत संकल्प अभियान के आयोजन 5 मई से 20 मई तक करे गई। विकसित भारत संकल्प अभियान शिविर मन के मुख्य उद्देश्य रही से किसान मनला योजना मन के लाभ देना, कौन कौन किसान मन कौन कौन सा योजना बर लाभ लेते और कौन कौन किसान भाई मन योजना के लाभ नहीं लेते तो काबर नहीं लेते। मुख्य उद्देश्य रही से किसान सम्मान निधि, माटी परीक्षण, एग्रीस्टेक पोर्टल के व्यवस्था और फसल बीमा योजना। अभी के समय में विभाग डहर ले ऐसा व्यवस्था हो है कि भाई संतुलित मात्रा में उर्वरक मन के उपयोग करे जाए किसान मन के द्वारा, और सही में संतुलित ढंग से किसान भाई मन अगर उर्वरक मन के उपयोग कर ही तो उखर भूया भी स्वस्थ रही और पैसा कौड़ी घलो बाजी है। ए दरी कृषि विभाग के जन अधिकारी कर्मचारी मन रहे हैं वो मन किसान भाई मन ला आनी बानी जिनिस के जानकारी देते जैसे माटी परीक्षण काबर जरूरी है और हरियर खाद की व्यवस्था कैसे करी खेत में, ये सब ला लेके चलिन आज सुनबो किसानवाड़ी गांव ग्राम पंचायत तेलसरा विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर के दूसर भाग पहली भाग ला पाछू मंगलवार के हम सुने रहन। तो चला किसान भाई हो देरी नहीं करी चलत हन किसानवाड़ी गाँव कार्यक्रम। किसान भाई हो सबले पहले हमन बात करें शिविर में आए हुए अधिकारी कर्मचारी मन सो की भाई उमन कौन कौन सा अपन विभाग ले योजना ला लेके पहुंचे हैं, चला बात करबो।
2: अभी के समय देखत हन गर्मी के समय चलत है और अवैया समय है खरीफ सीजन के। खरीफ सीजन में किसान भाई मन धान पान के तैयारी में अभी ले

0: जैन माँ तेलसरा रहेंगी चकरभाटा और बोदरी।
1: तो आज जिन शिविर आप मन लगाए हैं मुख्य रूप से कौन कौन सा योजना लेके लगाए हैं, का चीज पर आज सब यहाँ जुटे हैं?
0: ये मेन फोकस है जिन किसानों का एग्री स्टेक में पंजीयन हुआ है और उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत उनको लाभ मिले, इसके अंतर्गत ये शिविर लगाया गया है। साथ ही उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीका से आप एग्री स्टेक में पंजीयन कराने के बाद आप इस पीएम सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं।
1: आगू के समय देखा था कि भाई किसान भाई मन

0: कराही।
1: हाँ, ये आने वाले टाइम में किसान भाइयों को खरीफ 2026 में थोड़ी खाद की दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण सरकार के द्वारा हरी खाद का उपयोग के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आता है बीजीए कल्चर, सन, ढेचा, इन लोगों का फायदा लेकर आप खाद का जो कमी है उनको पूरा कर सकते हैं।
0: कौन कारण से आप कहा था कि भाई इधर ही खाद की कमी हो सकती
1: है? जो विश्व युद्ध हो रहा है उनमें ट्रांसपोर्टिंग में जो बाहर से खाद आती है उनको आने में दिक्कत हो रहा है, इसके कारण से किसान भाइयों को खाद की कमी हो सकती है।
0: बीजीए कल्चर के बारे में बात कहे हा, ये का होते, किसान मन ल कतका मात्रा दिए जाते, कतका उपयोगी है, का उपयोगी है, बारे में बतावा।
1: बीजीए कल्चर काई खाद है, हरी खाद, जिसे किसान

0: अपने जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो उसमें 4x8 का आप एक गड्ढा सामान्य बना सकते हैं, ऊपर से पन्नी का ढकाव करके मिट्टी डालकर उसमें पानी डाल के आप उस 400 ग्राम बीजीय कल्चर डाल के उनका खाद बना सकते हैं।
1: फिर वो बन जाए तहां वाला कामा धान के खेत में उपयोग करना।
0: जी जी जी
1: चला मैडम, आपन बताए आनी बानी के।

0: है तो वावा उहा के दीदी मन सो जानबो के भाई उमन का व्यवस्था किसान मन बर लेके आए। दीदी राम राम।
1: राम राम।
0: का नाम है आपके?
1: मोर नाम दीपा सिंह चिलक।
0: आप कैसे आज शिविर में अपन विभाग के का योजनाओं का जानकारी ले

0: कै पैत लगवाना चाहिए?
1: साल में तो एक ही बार लगवाना चाहिए, एक ही बार लगते भी और।
0: अच्छा, और कै साल तक पशु ला लगवाना चाहिए?
1: जब तक जीवित, जब तक जीवित है तब तक, 4 महीने से लेके।
0: चार महीना के हो गए है बछिया बछरू बछुआ, तो ओला एकर टीकाकरण हम करवा सकते हैं। तो टीकाकरण शासन डहल का निशुल्क होते
1: हैं? हाँ, बिल्कुल निशुल्क है।
0: मतलब अपन पशु लेके जाना है या वहाँ के जेन भी मनखे आए वो आप मन के पशु टीकाकरण करके जाए। बहुत सुघर योजना है ताकि पशु ला बेसमय मरे से हमन बचा सकत हन। और पशु आजकल पशु की उपयोगिता किसान भाई मन के नजर में भले कम हो गए, लेकिन पहली से पुरातन समय से पशु की उपयोगिता खेती में बने हवा। आज जब हम आनी बानी के केमिकल ला उपयोग करत हन, गोबर से हम बढ़िया ढंग से खेती कर सकत हन। दीदी आप मन अतका सुघर जानकारी दी अपन विभाग के, आप मन बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हमर बीच उद्यान विभाग ले आए महोदय है, इखर सो जानबो कि कौन कौन सा जानकारी और कौन कौन सा योजना।

0: विभागीय मनखे मन से बात करे के बाद हमर गोठ होइस किसान भाई मनसो मन का का फसल लेथे, कौन कौन सा फसल कौन कौन समय में लगाते, आवा एक एक करके ई मनसो जानकारी लेथे।
1: भैया राम राम।
2: राम राम।
1: आप मन के का नाम है?
2: अश्वनी कुमार।
1: आप मन खुदे करता बढ़िया व्यवस्था? हाँ, सब ला है ना?
2: पूरा व्यवस्था।
1: तो आप मतलब तो बढ़िया अनुभव हो ही।
2: अनुभव है।
1: तो का कैसे है धान के खास कर फसल के बात करबो, जिसे अपन बतात रहा के भाई जिन आक्रमण होते कीट रोग के और जिन खातू माटी है एकर बीच कैसे व्यवस्था जमते ला बढ़िया बताओ।
2: एमा खातू माटी कम डाले से बीमारी पैदा नहीं हो और ज्यादा पानी भरे से ही बीमारी पैदा होते। मीडियम में रखना चाहिए पानी और यूरिया बहुत कम देना चाहिए, बहुत कम नहीं बताओ।
1: अच्छा।
2: तो ओमा बीमारी नहीं आवा बिल्कुल। यह 90% में बता देता हूँ, 90% सक्सेस रही कम यूरिया डाले से। यूरिया डाले से ज्यादा बीमारी होते, काबर पेड़ मुलायम होते, मुलायम माना जो कीड़ा है पूरा वो मुलायम के नाम से वो
1: रस को चूसते।
2: हाँ, और कड़ा होइस ना तो हम बीमारी नहीं आवा।
1: अच्छा।
2: वही नाम से यूरिया कम डाले के हम सलाह देता हूँ।
1: अच्छा।
2: बहुत कम नहीं बताओ।
1: हाँ। तो आप मन प्रति एकड़ भाई अतका कन अपनो खेती करता?
2: हाँ।
1: और यहाँ के मनखे मन के भी खेती?
2: हाँ,
1: करता।
2: हाँ, हाँ।
1: तो आप मन कतेक यूरिया के खपत करता प्रति एकड़?
2: एकड़ में एक बोरी के हिसाब से ज्यादा नहीं देवन।
1: अच्छा।
2: एक एकड़ में एक

0: एक बोरी, ज्यादा ज्यादा
1: एक बोरी ला अपन दो तीन पैत में डालता।
0: हाँ, तीन घामा पूरो के। हाँ, और दवा हुआ कुछ नहीं,
1: कुछ नहीं,
0: कुछ नहीं।
1: हाँ,
0: और अभी भी जाग चेक कर सका था, एक नंबर धान अभी।
1: अच्छा।
0: हाँ, बहुत सॉलिड है। दो साल में यहाँ ज्यादा ध्यान दिया ना, तो धान के पैदावार ज्यादा बढ़े के है।
1: तो धान के कौन सा किस्म लगा था?
0: महमाया। हाँ,
1: ये पुराना वेरायटी। हाँ, है ना। हाँ, के नवा रिसर्च लेता?
0: नहीं नहीं, वही
1: पुराने बीज जेन है,
0: ठीक है। और पैदावार भी अच्छा थे, वही ना से वो दोनों वाला चुने गए।
1: और यहाँ के माटी तो कन्हार है।
0: हाँ,
1: है ना।
0: हाँ,
1: तो कतेक उत्पादन मिल जाते?
0: वो होते
1: सरना महमाया दोनों बात।
0: हाँ, तो 60 कट्टी 1 एकड़ में।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: मतलब कतेक क्विंटल हो गए?
0: 60 के
1: लगभग 24-25 क्विंटल।
0: 24-25 क्विंटल।
1: भाई दूसर व्यवस्था दवाई ऊपर खर्चा करे से करे बिना अतका कन उत्पादन आ जाते?
0: बहुत ज्यादा आगे।
1: हाँ,
0: तो बिना दवा पानी के बहुत बढ़िया आगे।
1: अब भाई आप मन ले लिया 28 क्विंटल आनी बानी खर्चा करके और इतनी निकल गए, तो का मतलब?
0: कोई मतलब नहीं है।
1: तो और का नवा चीज देखे ले मिलते? अब भाई आप मन अतका दिन ले जुटे हा, बताओ।
0: गेहूं, गेहूं के फसल में ओनारी, ओनारी में ज्यादा पैदावार आते, अब ऐसे में नहीं आवे। और फिर पल्लो के साधन और यूरिया तो ज्यादा डाले के वो नहीं है, ओखर संग में DAP डाल कुछ दूसर वो होते, यूरिया में बीमारी आते ज्यादा।
1: तो DAP आप मन धान में प्रति एकड़ कतका डालता?
0: एक बोरी डालता।
1: एक बोरी मतलब एक बोरी DAP हो गई, एक बोरी यूरिया हो गया, है ना। कुल मिला के आपके कहना है कि भाई हमन ज्यादा अगर यूरिया DAP डालबो
0: तो बीमारी
1: बीमारी आए और खर्चा बढ़े।
0: खर्चा बढ़े।
1: चला भैया आप मन सुकुठियान, बहुत बढ़िया लगे। राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार।
1: आपके का नाम है जी?
2: इतवाड़ी।
1: आप मन राम राम। आप मन भी खेती किसानी करता है ना?
2: मोर में 4 एकड़ जमीन है।
1: अच्छा।
2: खेती में बोर भी कराए हूँ।
1: अच्छा।
2: फसल अच्छा होते हैं,
1: बढ़िया।
2: 24-25 क्विंटल हो जाते, पहुंच जाते। गर्मी फसल भी रखता थोड़ा से।
1: धान लगा था?
2: धान लगा था।
1: तो कौन सा लगा था?
2: महामाया।
1: महामाया के?
2: महामाया। हाँ, 30 क्विंटल तक पहुँच जाते गर्मी में। हाँ, फसल बढ़िया है।
1: हर होने है ना,
2: हर होना है।
1: तो लाइन मिलते?
2: हाँ, मिल जाते।
1: मिल जाते।
2: हाँ, थोड़ा से खेती में रहते, मिल जाते।
1: हाँ, तो बाद में आखिरी आखिरी पानी के समय कुछ परेशानी थोड़े आते?
2: नहीं, परेशानी नहीं।
1: पानी के लेवल नीचे चल दिस?
2: नहीं, हमारी है,
1: नहीं हुए।
2: 1.5 एकड़ मत लगाना है, गर्मी धान कोई ज्यादा मन नहीं लगाने।
1: नहीं लगाना। गाय गरुआ कैठी?
2: गाय गरुआ मोर पास 4 गाय है, 2 बछरू, 6 ठो जानवर है।
1: जानवर
2: घर में घुरवा रखे हैं, बढ़िया खाद अपन घुरवा से
1: हो जाते है ना। अच्छा।
2: तो 1 एकड़ में 1 बोरा यूरिया है और 2 एकड़ में 1 बोरा DAP आधा।
1: वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: पोटास 1 बोरा।
1: और रोग राई लगे तो भाई दवाई पानी?
2: और रोग राई लगी तो दवाई के काम करता, मकरी आ जाते, तनक छेद है, एक दवाई उपयोग करता।
1: क्या आप मन से गुड बात करें, बहुत बढ़िया लगे। धन्यवाद। राम राम।
2: राम
1: राम। राम भैया।
3: राम राम भैया।
1: का नाम है आपके?
3: मोर नाम हजारी राम।
1: आप मन कई एकड़ में खेती करता?
3: मैं तो लगभग 5 एकड़ घर के है और 3 एकड़ से अधिया उठा था।
1: हाँ। तो परिवार में कै सदस्य है, कै सदस्य खेती से जुड़े है?
3: अब लगभग हमन 6 सदस्य हैं।
1: सब बढ़िया भिड़े रही था।
3: हाँ।
1: है ना। मुख्य रूप से खेती किसानी करता तो कहा समस्या देखे मिलते?
3: समय के अनुसार बीमारी वगैरह आ जाते धान में ना, तो खर दवाई वगैरह लाते, तो सिंचाई करथन घरों के में भी अपन सिंचाई वगैरह करथन।
1: हाँ। कुल मिला के जिन रोग राय लगते है, बीमारी लगते है, ओकरे समस्या है ना। अभी का लगाया है आपने?
3: अभी लगभग 2 एकड़ में मोर गर्मी फसल के
1: धान।
3: धान।
1: चला आप मन से गुठियान, बहुत बढ़िया लगेस। राम राम।
3: राम राम सर।
4: तो संगी हो ये रही से ग्राम तेलसरा विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर के किसान मल्ले स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गामा। कार्यक्रम के संपादन और रिकॉर्डिंग रही से अभिनव गौराहा के, संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के।
1: राम राम, जय जोहार।
5: तो संगी हो सुने है ना आप मन किसान वाणी गामा। और आप मन ले कि बो संगी हो आज बिकट तापमान रही से है ना, तो लू ले बाँचे के उपाय हमन ला करना है। कोनो डहर निकलत हन घर ले तो गमछा बांध के है ना जाए बर पर ही था। और संगे संग बने पानी पी लेना चाहिए, खाली पेट नहीं निकलना चाहिए और ज़्यादा छाँव रहे की व्यवस्था होना चाहिए, काबर के बहुत तापमान है। तो आज के बिलासपुर के तापमान बता देथन, न्यूनतम तापमान रही से 29 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस। और सुनी गीत संगीत डहर चलत हन और सुनत हन आसाराम पूर्ति के स्वर माँ ये गीत ला।

हाँ संगी हो, संसो मगुया पियर पान हो गए। असंसो चिंता आने टेंशन ऐसे चीजे संगी हो जेन आने शरीर के घलो वजन कम हो जाते। तो कोनो प्रकार के चिंता टेंशन ले दूरिया रहना चाहिए। यही संदेशा ला गीत के माध्यम ले है ना आप मन सुनाइन आसाराम पोरते मन। और खेती किसानी के चिंता रहे चाहे कुछ रहे आप मन के बीच में हमन बैठे हैं। एक सेती फोनी कार्यक्रम घलो लेके आथन। तो एदार बृहस्पत के 28 मई के हमारे स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक मन हमारे बीच रहीन। बिहनिया 10:30 से ले 11 बजे तक आप मन प्रश्न पूछ सकत है। विषय रही बरहा में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण उपचार और रोकथाम। और 11 से 11:30 बजे के विषय रही छेरिया मन में PPR बीमारी के लक्षण उपचार रोकथाम के उपाय। ये सब विषय ले आप मन का जिन समस्या रथे है ना और जिज्ञासा रथे मन में तो एक समाधान पाना है। तो हमारे फोन नंबर है 2665 92। एकर पहली आप मन बिलासपुर के STD कोड 07752 खचित लगा हा। और ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण हो ही 28 मई के और 29 मई के 7:30 से 8 बजे के बीच आप मन सुन सका था। संगी हो खेती किसानी के काम बूता तो आप मन लग गए हो है ना। तो कई बात के हमला

करेबर पर ही मेड़ पार हे एला बरोबर कर लेहा। अउ कतको खेत म कांटा खूटी रथे है ना, एकरो सफाई कर लेना है। संगे संग जिन खरपतवार रथे नींदा रथे एला बढ़िया कोड़ के, अउ खेत जिन गड्ढा है ना अउ जिन उचका है एला बरोबर कर लेना है अभी ले, यानी खंती के बात करत हन। संगे संग कौन फसल हमन ला लगाना है अभी खरीफ फसल में, ये बात के ध्यान रखना है। दलहनी तिल

प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत का पहला गीत है अगम कुमार और तुलसी कुमार निगम की आवाजों में।

आगम कुमार की आवाज में अभी हमने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत का पहला गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आगम कुमार और तुलसी कुमार निगम की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत।

आगम कुमार और तुलसी कुमार निगम की आवाज़ों में कार्यक्रम सुगम संगीत का ये अगला और अंतिम गीत समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का।

श्रोताओं, ये जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस रिश्तों का एक खूबसूरत ताना बाना है। कुछ रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं तो कुछ को हम खुद चुनते हैं, लेकिन हर रिश्ता हमारी जिंदगी की किताब का एक अनमोल पन्ना होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। आइए रिश्तों के इसी एहसास को सलाम करते हुए आज के इस सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं हिंदी सिनेमा के इस सदाबहार तराने से, जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा नाता इंसानियत और प्यार का है। सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, सच ही तो है कि रिश्ते ही जिंदगी को मुस्कुराना सिखाते हैं, और जब रिश्तों की बात चली ही हो तो जहन में सबसे पहला नाम उस रिश्ते का आता है जिससे हमारी सांसें जुड़ी है, यानी माँ। माँ वो दरख्त है जिसकी छांव कभी कम नहीं होती। माँ अगर जमी है तो पिता वो आसमान है जो हमें हर धूप छांव से बचाता है। ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से मोम जैसा दिल रखने वाले पिता का रिश्ता हमारी जिंदगी की रीढ़ की हड्डी होता है। पिता के अनुशासन में ही हमारी कामयाबी छुपी होती है। माता पिता के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, अजीज भी वो है, नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है। उनकी दुआओं से ही चलती है जिंदगी, क्योंकि खुदा भी वो है और तकदीर भी वो है।

श्रोताओं, बचपन की यादें अधूरी है उस रिश्ते के बिना जिसमें झगड़ा भी है, प्यार भी है, कट्टी भी है और बट्टी भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई बहन या बहन बहन के उस खट्टे मीठे रिश्ते की, जहाँ एक पल में लड़ाई होती है तो दूसरे ही पल में दुनिया भर का लाड़ उमड़ पड़ता है। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता।

श्रोताओं, भाई बहन का रिश्ता तो खुदा तय करते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिसे चुनने का हक खुदा ने पूरी तरह हमें दिया है। वो रिश्ता है दोस्ती का। दोस्त वो नहीं जो सिर्फ खुशी में साथ दे, दोस्त वो है जो तब हाथ थामे जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे। दोस्ती के बिना तो जिंदगी का सफर ही अधूरा है। सच्ची है दोस्ती तो जताने की जरूरत क्या, अगर दिल में है जगह तो बताने की जरूरत क्या। दोस्त तो वो हंसी तोहफा है खुदा का, जो रूठे कभी तो उसे मनाने की जरूरत क्या। चलिए अपने अपने दोस्तों को याद कीजिए और सुनिए दोस्ती का ये मशहूर तराना।

श्रोताओं, जिंदगी के सफर में जब हम आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो एक ऐसा रिश्ता जुड़ता है जो सात फेरों और सात वचनों से बंधा होता है। जीवन साथी, जो सुख में आपकी हंसी और दुख में आपका आंसू बन जाता है। इस प्यार और विश्वास के रिश्ते के नाम ये शेर सुनिए। तुम मिले तो लगा कि जिंदगी मिल गई, जैसे पतझड़ के मौसम में कली खिल गई। नाता तुमसे कुछ ऐसा जुड़ा हमारा कि रूह को भी जीने की वजह मिल गई। आइए सुनते हैं दांपत्य और प्रेम के इस खूबसूरत रिश्ते को बयां करता ये सुरीला सा गीत।

0: श्रोताओं, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं हमारे ये प्यारे रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। हम दुनिया भर से तो कनेक्टेड है, लेकिन अपने ही घर से डिसकनेक्टेड हैं। रिश्तों को वक्त की जरूरत होती है, पैसों की नहीं। रिश्तों की ये दुनिया है निराली, सब रिश्ते नातों से ही है खुशहाली। पैसों से तो सिर्फ सहूलियतें मिलती हैं, अपनों के बिना तो हर त्योहार है खाली। मैं आशा करता हूं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो इसी आशा के साथ दीजिए अपने साथी अंशुल गुलकरी को कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली

0: दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
3: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
4: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
3: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें

0: से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार

अन्य घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580

0: Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold in men's freestyle event in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविक भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

उनके पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इस फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म

कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माय नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में

श्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

प्यार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो न हो। चलो इन्हें संजो लें अपनी जिंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख की कोपलें हरी हो उठती हैं मन में।

रात भर झड़ती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटकेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रहीं और कानाफूसी करती रहीं पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

यादों के रंग से सजाए हैं ख्वाब, मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं।

यादें हमारी जिंदगी का आईना होती हैं, उसमें नजर आते हैं बीते समय। यादों का एक सिरा पकड़ते हैं कि बस चलचित्र की

तरह जमाने भर की बातें हमारी आंखों के सामने ठहर जाती हैं। कई बार यादों का दामन थाम हम घंटों बैठे रहते हैं, खुद से गुफ्तगू करते भूल जाते हैं खुद को। वक्त का कौन सा सिरा आज है यही नहीं याद रहता, गुजरा जमाना है या है हकीकत। कुछ यादें हमें इतनी अजीज होती हैं कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

वही रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सूना सूना सा होगा। कहीं कुछ कमी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों

0: व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed